आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि तदनुसार 25 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आपने सुने। एफएम बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की। देश हमारा सबसे सुंदर, जिसकी आज़ादी के लिए वीर शहीदों के साथ साथ वीरांगनाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारा नमन उन सभी वीरों को और अपने देश की माटी को। आइए करते हैं माँ भारती का गुणगान समूह स्वर में इस देश वंदना के साथ।

मातृभूमि को नमन करते हुए देश वंदना आपने सुनी समूह स्वरों में, और आइए अब आरंभ करें आज की ईश वंदना। और प्रथम पूज्य श्री गणेश से निवेदन करें कि वे रिद्धि सिद्धि दे, परम सौभाग्य दे, रूप दे, जय दे, यश दे, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कलेशों को मिटाकर हमें द्वेष मुक्त बना दें। आराधना में आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गणपति भजन। स्वर है स्वरा शर्मा और साथियों के।

स्वरा शर्मा, मुकेश कुमार गुप्ता और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे, श्री गणेश को समर्पित। विमुख शिखर से बही धारा राधा दौड़ी जाए, सुनत सांवरे की बांसुरी राधा बेसुध हो जाए। आकर्षण का केंद्र है श्री कृष्ण, तो उनकी आह्लादनी शक्नी है राधा। आइए श्री राधा रानी को समर्पित ये भक्ति रचना सुनते हैं ब्रज सर्वेश्वरी और साथियों के स्वर में।

जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है वही ईश्वर भक्तों के मन में बसते हैं, और जो भक्त सच्चे हृदय से उनको याद करते हैं ईश्वर हमेशा उनका साथ देते हैं। तभी तो कहते हैं राम मेरे अंदर भी है और इस कण कण में ब्रह्मांड के भी। आइए सुनते हैं श्री राम को समर्पित ये भजन।

एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। कलयुग में ईश्वर का नाम लेना ही सबसे पुण्य का काम है। तो आइए अब गाते हैं शिव की महिमा आराधना के अंतिम भजन में।

0: लखबीर सिंह लक्का और साथियों के स्वर में इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना हम यहीं संपन्न करते हैं। देशवंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। पताल की खेती विषय पर सामिक सुझाव आज आप सुनेंगे। जानकारी का वाचन किया है रुपेश कंवर ने।
1: रंगवारी हो, राम राम, जय जोहार। खेती किसानी के माध्यम से ही हमारे पूरा घर के परिवार चलते, नेता हिकारी, फिर दवाई पानी और आए दिन साल भर में दो चाटक घर में छोटे बड़े बुता काम होते रहते। ऐसे बेरा में सबसे ज्यादा हमारे आवश्यकता होते पैसा के, रुपया के, जो हमारे कारण गठरी में बिल्कुल नहीं रहे। आए दिन अपना हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कथी ले यही कथन कि जितके ज्यादा होए हम खेती किसानी के संगे संग अक्तिहा बुता काम हमला करना चाहिए। संगवारी हो, अभी बेरा हमार बात करी तो अगर हम खेती किसानी के संगे संग बारी बकरी अगर चेत कर धन तो अवैया बेरा हम दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। आज अपन कर खेती की बात में गोड़ बात करी आज पताल के खेती के। किसान भाई, पताल की खेती हमारे बार नगदी फसल है। अब अपन जानते हवा बढ़िया सुचारू रूप से सीजन के हिसाब से पताल खेती पद्धति के हिसाब से करत हन तो कहीं न कहीं हमन पताल खेती में दोहरा से दोहरा आमदनी हमन कमा सकत हन। आज भी आप मन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कति ले सफल किसान भाई मन के अनुभव बतातन कि कैसे मन पताल खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमावत है। तो आवा संगवारी हो, आज हमने बात करी खेती के बाद में पताल की खेती के। संगवारी हो, पताल खेती बार हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु हो सबसे उपयुक्त हवा, जिसे गर्म मौसम, बारोई माटी, डुमांड माटी, जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संगवारी हो, ऐसे भूया के हमल चयन करना चाहिए जमा पानी की निकासी और सिंचाई आसानी रूप से हमन कर सके। जहाँ पानी के ठहराव हो ही वहाँ हमार जो पताल खेती है नुकसान होने के संभावना घलो रहते। किसान भाई वो अपन ला बता देते कि अभी के जो महीना हमें जुलाई से अगस्त तक

0: एकर अच्छे से पताल खेती कर सकत हन, काबर की अभी भुइयां ह कंचा कंचा हवा। ए बेर हमला पानी ज़्यादा छिड़काव करे के या सिंचाई करे के आवश्यकता बहुतेच कम रहते हैं। तो अभी अगर हम पताल खेती करत हन तो कहीं न कहीं अवैया बेर हम पताल के अच्छा कीमत पा सकत हन और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार कर सकत हन। रोपाई की बात करी संगवारी, नर मादा पौधा दोनों ला हमला लगाए पड़ते, 10 मादा और 1 नर पौधा हमला बिल्कुल लगाना चाहिए। दूरी की बात करी संगवारी, कतार कतार 2 मीटर पौधा की दूरी हमला 1 मीटर हमला रखना चाहिए। अगर हम ढेखरा या मचान के पद्धति की बात करी संगवारी, तो बेल चढ़ाए पर हमला बांस या मचान हमला बहुत ज्यादा लगाना चाहिए। गाँव में आज भी देखी तो जिसे छोटे छोटे हमारे किसान रहते हैं, काय करते कि ढेखरा के माध्यम से भी पताल खेती करते, उमा भी हमन पताल के हमन दोहरा से दोहरा आमदनी कमाथन। कोनो भी फसल अपनावतन किसान भाइयों, तो वहाँ विशेष करके हमला खातु के विशेष सावधानी हमला देना चाहिए। अभी सरकार भी चाहता हुआ कि जितके ज्यादा हो हमन रासायनिक खाद ला छोड़ के जैविक खाद प्राकृतिक खेती उपयोग करी, ताकि भूइया की उपजाऊ क्षमता ला हमन बढ़ा सकें। आज भी हमारे कतिक किसान भाई मन हवा जे मन जैविक खेती रासायनिक खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते। किसान भाइयों, पताल खेती में हमला 15 किलो प्रति एकड़ के पाछू में पहली बेरा में हमला देना चाहिए। खातू माटी की बात करें किसान भाइयों, तो पताल खेती में अगर हमन पहली जोताई घानी गोबर खाद डाला थन प्रति एकड़ पाछू, तो कहीं न कहीं हमला पताल खेती में दोहरा से दोहरा आमदनी हमन कमा सकत हन। एकर उपज की बात करें किसान भाइयों, 150 ले 200 क्विंटल प्रति एकड़ में हमन अच्छे से आमदनी कमा सकत हन। रोग की बात करें किसान भाइयों, तो पत्ती धब्बा रोग माइकोजेब 2.5 लीटर घोल मिला के अगर हम छिड़काव करते हैं, तो कहीं न कहीं हमन जो बीमारी फैले है ओकर से मन निदान पा सकत हन। संगवारी हो, आप मन बता देतन कि आज केंद्र सरकार राज्य सरकार कति ले अबड़कन ऐसे योजना संचालित हवे जेकर माध्यम से मन अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार कर सकत हन। पताल खेती आप मन अगर करना चाहता हवा तो आपके लखठा के जोन उद्यानी भाग हवा वहाँ के अधिकारी कर अपन संपर्क करके पताल खेती के बारे में जानकारी ले सकत है। संगे संग जौन राष्ट्रीय बागवानी मिशन हवा ओकर योजना के माध्यम से अपन पताल खेती में दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत है। किसान भाई वो आप मन बता देतन कि उद्यान विभाग कति ले आप मन ला एमा ड्रिप बर संगे संग बोर बर और आप मन ला जोन आपके बारी हवा ओकर रूंधा बांधा करे पर सरकार कति ले योजना घलो हवे जेकर माध्यम से आपके जो खेत है ओकर अच्छे से तैयारी कर सकत है और पताल खेती करके अपन दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत है।
1: कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण अभी किया जा रहा था। पताल की खेती विषय पर सामिक सुझाव आपने सुने, वाचन स्वर रुपेश कंवर का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर वाणी जयराम का है। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

वन गमन के लिए श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के

भंडार हैं। ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में वाणी जयराम के मुख्य गायन स्वर में श्री रामचरित मानस गान का आज का अंक आपने सुना। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रस्तुत है चिंतन, विषय है आदमी के प्रकार, वाचन और स्वर डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा का है।
1: आपसे आदमी के 12 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन साधारण आदमी आदमी के 2 प्रकार ही जानता है, अच्छा और बुरा। अधिक अच्छाइयों और कम बुराइयों वाले आदमियों को अच्छा आदमी कह दिया जाता है और अधिक बुराइयों और कम अच्छाइयों वाले आदमी को बुरा कह दिया जाता है। अधिक और कम के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। कई बार एक ही आदमी कभी अच्छा और कभी बुरा दिखाई पड़ता है, और अच्छे से बुरे में और बुरे से अच्छे में बदलना तो प्रायः होता ही रहता है। इसके अलावा बहुत कुछ परखने वाले के नजरिए और पारस्परिक संबंधों की भी बात रहती है, लेकिन फिर भी ज्यादा लोगों के लिए अच्छा होने और कम लोगों के लिए अच्छा होने में अंतर अवश्य विद्यमान है। पूर्णता अच्छा और पूर्णता बुरा आदमी कोई भी नहीं हुआ करता। बहुत अच्छा प्रेमी या बहुत अच्छा दोस्त भी इतना अधिक अच्छा नहीं हुआ करता कि उसके उससे ज्यादा अच्छा बनने की गुंजाइश ना हो। दूसरी ओर बुरे से बुरा आदमी भी किसी न किसी के लिए जरूर थोड़ा बहुत अच्छा होता है। यह किसी के लिए कम ज्यादा अच्छा और किसी के लिए कम ज्यादा बुरा होना ही स्वयं में इस बात को प्रमाणित करता है कि पूर्णता अच्छा एक दिशा है, अनंत दिशा। अच्छा आदमी और अधिक अच्छा बनने की निरंतर कोशिश करता रह सकता है।

0: अच्छाई का कोई अंत नहीं है। अच्छे और बुरे आदमी की परख का कोई नपा तुला आधार नहीं है, पर सामान्यतः अच्छे आदमी के हम जितने अधिक और जितने लंबे समय के लिए निकट जाते हैं, उसमें हमें उतनी ही अच्छाइयाँ दिखती जाती हैं। इसके विपरीत बुरे आदमी के अधिकाधिक निकट जाने से उसकी अधिकाधिक बुराइयाँ खुलकर सामने आती जाती हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि गुण भी प्रायः एक साथ चलते हैं और अवगुण भी, बुराई से बुराई पैदा होती है। यदि एक बार संकोच खुल गया तो बुरी बातों की आदत पड़ते देर नहीं लगती। झूठ, धोखाधड़ी, बेईमानी, ईर्ष्या, अंधस्वार्थ, चोरी, जुआ, शराबबाजी और दुष्चरित्रता की परस्पर दूरी अधिक नहीं रहा करती। इसी प्रकार सच्चाई, निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी, सेवा भाव, नैतिकता, आदर्शवाद, परमार्थ, सद्व्यवहार और सच्चरित्रता भी प्रायः एक दूसरे के समीप ही इकट्ठे होने वाले गुण हैं। अच्छा आदमी अधिकांशतः अच्छा पड़ोसी, अच्छा पिता, अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छा मालिक, अच्छा सेवक, अच्छा दोस्त, सभी कुछ अच्छा होता है। निष्ठा या वफादारी को यदि कोई व्यक्ति दुर्गुण कहे तो कहने वाले को इंसानियत पर ही शक होने लगेगा। अच्छाई बुराई को आपेक्षिक कहा जाता है। अब बात को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ें। कुछ लोग स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं, कुछ संपत्ति को और कुछ चरित्र को। इन तीनों में से अच्छे आदमी का संबंध चरित्र से है। जीवन में अच्छे और बुरे का टकराव अवश्यंभावी है। इसे चाहे सद्वृत्तियों और कुवृत्तियों के संदर्भ में सोचें और चाहे देवताओं और राक्षसों के संदर्भ में सोचें, बुरा आदमी अभी अभी गिनाई गई तीन चीजों स्वास्थ्य, संपत्ति और चरित्र में से किसी अन्य व्यक्ति के न तो स्वास्थ्य को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है और न संपत्ति को, पर चरित्र का हनन करना अपेक्षाकृत बहुत सरल रहता है, क्योंकि उसके लिए केवल जीभ हिलानी पड़ती है। उसके लिए न तो किसी खर्च की जरूरत है और न किसी प्रमाण की। जबान किसी की नहीं रोकी जा सकती। बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे आदमी के प्रति भी लगाए जाने वाले रुपया पैसा खाने, किसी से अवैध संबंध होने, अमुक से दुश्मनी निकालने और अपने स्वार्थ के लिए किसी को बदनाम करने आदि जैसे दुष्प्रचार पूर्ण जबानी आरोप आए दिन सुनने को मिलते हैं। भगवान तक के लिए कुछ भी कह दिया जाता है, आप एकदम साफ सुथरे हैं, पर भिन्न भिन्न प्रकार की गड़बड़ों में आपका नाम घसीटा जा रहा है। ऐसे में आप मानसिक अशांति से ग्रस्त हैं, जबकि ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। व्यापक अर्थ में चरित्र लांछन की पीठ पीछे की चर्चा से आज तक कोई नहीं बच पाया है। राजनैतिक और सामाजिक ही नहीं, धार्मिक नेता भी इसके शिकार होते रहे हैं, लेकिन इसका मुकाबला भावुकता से नहीं किया जाता। यदि आप अच्छे आदमी हैं तो फालतू की बदनामी की परवाह नहीं कीजिए। यदि आप आदर्शवादी हैं तो लोगों की आलोचनाओं से अपने मन को व्यथित मत होने दीजिए। यदि आप बुरे आदमी नहीं हैं तो बुराई करने वालों के बीच हाथी की चाल चलते रहिए। यदि आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो ऐसों से मत डरिए जो दूसरों के पैरों पर खड़े हैं। और अंत में यदि आप अस्थाई में आस्था रखते हैं तो विश्वास कीजिए कि भविष्य आपके साथ है।
1: आदमी के प्रकार, इस विषय पर आज का चिंतन आपने सुना। आलेख और वाचन स्वर डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:50 हो चुके हैं। समय आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का। हमारी इसी सभा में सुबह 8:30 समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। 9:00 बातों बातों में कार्यक्रम भी आकाशवाणी रायपुर से आप सुनेंगे। इसके बाद विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। हमारे केंद्र से रोज की तरह सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज सुबह, जिसमें वर्ल्ड आईवीएफ डे पर विशेष स्वास्थ्य वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। डॉक्टर शताक्षी कौशिक से सुनील चिपड़े की बातचीत इसमें आप सुनेंगे। सदाबहार नगमे लेकर हम आएंगे 7:30 से और नए तराने पेश करेंगे सुबह 10:30 से। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे आज सुबह 10:00, जिसमें साखन सिंह मरावी और सुख सागर सिंह कुसरो और उनके साथियों के गाए गीत आप सुन सकेंगे। 11:55 और 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से। इसके बाद 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। 8 बजे इस सप्ताह संसद में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ईमेल करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम आज आप सुन पाएंगे शाम 5:35, शाम 6:20 और इसका शेष भाग 7 बजे से। 7:20 पर हमारे साथ चलिएगा ग्राम सभा में। आज बेरा के गोट का विषय है राष्ट्रीय आजीविका मिशन ले होवत है आर्थिक विकास। 7:30 बजे से किसान बंधु के कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें गोट बात होगी सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में। साथ ही हम एक भेंट वार्ता प्रसारित करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसमें श्री रघुराज सिंह गौतम से नंदू भैया की बातचीत आप सुन पाएंगे। गीत संगीत और मौसम मंडी का हाल भी शामिल होंगे आज की किसान वाणी में। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:05 पर और रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 से।

0: आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्र प्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्र प्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेल सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रय

0: और बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
1: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मंत्रिमंडलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षा क्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः संबंध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने कालासागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की।

0: है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामेह को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अभी हम कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: लेकर अपनी बातों का पिटारा, गीतों का सहारा, हम हाजिर हैं आज सुबह का ये अंक लेकर। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: प्यार के दीप जले दिलों में हम सब के, दूर हों द्वेष और विश्वास बिना मतलब के। आइए मिलकर नन्हा सा वो पौधा रोपे जिसके फूलों से महकने लगे आंगन सबके। जी हाँ श्रोताओं, प्रकृति का श्रृंगार और उसकी मुस्कान है सुंदर सुंदर फूल और हरियाली, और हमारे परिवारों की मुस्कान की वजह बनते हैं नन्हे मन्ने सदस्य। तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं वर्ल्ड आईवीएफ डे पर एक विशेष स्वास्थ्य वार्ता। डॉक्टर शताक्षी कौशिक से सुनील चिपड़े की बातचीत सुनिए।
1: संतानता से संतान सुख तक का सफर अब होगा आसान। सही इलाज और आधुनिक तकनीक के साथ माता पिता बनने का अपना सपना पूरा करें। संपर्क करें पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। फोन नंबर है 9109115625।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज 25 जुलाई है और आज है वर्ल्ड आईवीएफ डे। आज के ही दिन इंग्लैंड में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था और उस दिन के हिसाब से ये दिन विशेष मनाया जाता है। आज हमारे साथ ही आज के इस खास दिन पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर शताक्षी कश्यप जी हैं। आपका आकाशवाणी के बिलासपुर स्टूडियो में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये आईवीएफ क्या है।
3: तो आईवीएफ एक बांझपन के इलाज की एक प्रक्रिया है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो महिला का अंडाशय होते हैं उसमें जो भी पोटेंशियल अंडे रहते हैं उनको हम इंजेक्शन के थ्रू हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, और अंडाशय में से अंडे हम बाहर निकाल के पुरुष के शुक्राणुओं को बाहर निकाल के लेबोरेटरी में एक आर्टिफिशियल वूम यानी कि एक लेबोरेटरी आर्टिफिशियल गर्भाशय में हम उन दोनों को ज्वाइन करते हैं, या फिर हम उनको साथ में रख के फर्टिलाइज यानी कि मिलाने की कोशिश करते हैं। फिर लैब में हम उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके 3 से 5 दिन तक हम भ्रूण को ग्रो करते हैं। तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए कहा जाता है कि अंडा और शुक्राणु मतलब महिला तत्व और पुरुष तत्व दोनों को हमने शरीर से बाहर निकाला और लैब में ज्वाइन करवाया। वो चाहे हम आईवीएफ की तकनीक बोलें या

0: उसके भी एडवांस्ड ICSI एक होता है जिसमें हम इंजेक्ट करते हैं पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे में. दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, तो वो बॉडी के बाहर हो रहा है इसीलिए टेस्ट ट्यूब उसका नाम पड़ा. और बॉडी के बाहर हम ग्रो करवा रहे हैं day 3 या day 5 तक, और उसके बाद उसको हम महिला के गर्भ के अंदर डाल देते हैं. तो बच्चा जो रहता है पूर्णतः बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियल बच्चा है. जस्ट भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शरीर के बाहर हो रही है, भ्रूण तैयार होने के बाद उसको गर्भाशय में ही स्थापित किया जाता है, और फिर गर्भाशय में 2 हफ्ता 3 हफ्ता में बच्चा ग्रो होके एक हार्ट बीट या पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देता है. उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो सेम है जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी है, सेम वैसा ही रहता. तो बच्चा आर्टिफिशियल नहीं है, प्रोसेस आर्टिफिशियल है.
1: और ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के कारण बहुत सारे घरों में जहाँ किलकारी नहीं होती थी वो उन्हें वो बच्चा मिलता है.
0: बिल्कुल.
1: तो किस तरह के लोग या किस किस तरह के प्रॉब्लम्स को लेके लोग आते हैं इस प्रक्रिया में?
0: तो देखिए, पहली बात तो ये कि बांझपन या निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है, ना ही किसी के दोष की वजह से हो रहा है. तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि इसके लिए हम इलाज के लिए जाएं. तो जिसको भी बेबी नहीं हो रहा है 35 साल की उम्र में, 6 महीने से ज्यादा ट्राई कर लिया, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है दिखाने. अब उनमें से कुछ एक लोगों को ही टेस्ट ट्यूब बेबी रेकमेंडेड है. हर 5-5 पेशेंट में हम टेस्ट ट्यूब बेबी में सीधा नहीं जाते हैं. तो किन किन कंडीशंस में जाते हैं? जिनमें एज फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि 40 साल की उम्र हो गई है, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, अंडों की बहुत ज्यादा कमी है, या फिर अंडे बन ही नहीं रहे हैं, और बन रहे हैं तो डिफेक्टिव बन रहे हैं, इतने डिफेक्टिव कि नेचुरल तरीके से हम अंडे को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हम IVF रेकमेंड करते हैं. दूसरा, अगर महिला की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, दोनों ट्यूब्स, एक नहीं दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में सामान्य तरीके से शुक्राणु और अंडे एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ट्रैक्ट या वो रास्ता जिसके थ्रू शुक्राणु जाता है अंडे के पास वही ब्लॉक्ड है, वो भी दोनों तरफ. तो ऐसी सिचुएशन में IVF ही एकमात्र ऑप्शन रहता है. बाकी सिवियर PCOD या सिवियर चॉकलेट सिस्ट नाम की एक बीमारी रहती है, जिसमें अंडों में कमजोरी रहती है, ट्यूब्स में कमजोरी रहती है, या फिर डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी, यानी कि जो गर्भाशय है, अंडाशय है, और उन दोनों का जो ज्वाइनिंग पार्ट ट्यूब्स हैं, उनके कनेक्शंस में ऐसी गड़बड़ी होती है कि नेचुरली प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती. चौथा है कि हाँ, कोई कंजनाइटल या जन्म से कोई ऐसा डिफेक्ट है बच्चादानी में या अंडादानी में जिसकी वजह से बेबी नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन में IVF का हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है. चौथा है, इसमें पुरुषों का भी बहुत बड़ा रोल है, जो ज्यादातर दर्शक नहीं जानते हैं कि ये फीमेल्स की ही प्रॉब्लम है. आजकल देखा जा रहा है कि पुरुषों में भी शुक्राणु की बहुत ज्यादा कमी है. बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं, मतलब निल शुक्राणु, जीरो काउंट रहता है. इतनी सिवियर प्रॉब्लम होती है तो उसमें IVF चाहिए. अगर शुक्राणु काउंट है पर इतना कम है, सामान्य से बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि 5 मिलियन या उससे भी ज्यादा कम है, जो कि 15 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, वो 5 मिलियन से भी ज्यादा कम है, या उसके स्ट्रक्चर या शेप में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नेचुरल या सामान्य प्रक्रिया से उसका इलाज नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को IVF हम रेकमेंड करते हैं पहले ही विजिट में. बाकी जिनका नेचुरल ट्रीटमेंट फेल हो गया है, साल 2 साल 3 साल तक ट्राई कर लिया, बार बार गर्भपात हो रहा है, नेचुरल ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में फिर हम IVF में जाते हैं.
1: जैसे कि आपने बताया कि अंडाणु और शुक्राणु ये कई बार नहीं बन पाते हैं या हेल्दी नहीं होते हैं, तो जो दैनंदिन जीवन है हमारा किस तरह के होते जा रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं?
0: जी बिल्कुल. आजकल जो हम फैट डाइट्स या फास्ट फूड डाइट्स जो फॉलो करते हैं, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है. हमारे अंडाणु, हमारे शुक्राणु, ये हमारे बॉडी में कैसे बन रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है उनको, तभी वो बन रहे हैं. बनने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है. अब उन 3 से 4 महीने, मतलब लॉन्ग टर्म आपने डाइट में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि आप हाई फैट डाइट ज्यादा ले रहे हैं या फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर या फिर बाहर के समोसे, ऐसे टाइप का फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, जैसे मैदा का सेवन करना, बहुत ज्यादा नॉनवेज का सेवन करना, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी में क्या रहता है कि इन्फ्लेमेशन टाइप का, यानी कि सूजन टाइप की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आपके अंडाणु और शुक्राणु को भी प्रभावित करता है. दूसरा, आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा धूम्रपान और तंबाकू और इन सब चीजों का सेवन बढ़ गया है, वो भी डायरेक्टली आपके शुक्राणु को या अंडाणुओं को भी प्रभावित करता है. तो ये 2 मुख्य कारण है. तीसरा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना. आजकल बैठ के फोन चलाना है ना, सिटिंग

0: जॉब्स और स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हम बाहर के जो खेल कूद पे ध्यान ही नहीं देते हैं, कोई एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं. तो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स अगर हम सिंपल फास्ट वॉकिंग भी करेंगे, सामान्य तरीके से हम चलेंगे, या फिर कोई हेल्दी एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग हो गया या कोई एक स्पोर्ट हो गया, तो वो सब के अभाव की वजह से भी बॉडी में सूजन या कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंडाणु और शुक्राणु में प्रभाव पड़ता है.
1: जी,
0: ये है
1: इस प्रक्रिया में इंजेक्शन देने का एक
0: करेक्ट.
1: बड़ा प्रोसेस है, वो क्यों है और क्या है?
0: तो इस प्रक्रिया में ज्यादातर हम इंजेक्शंस डेफिनेटली देते हैं. तो इंजेक्शंस हम इसीलिए देते हैं क्योंकि IVF के प्रोसेस में हम ट्राई करते हैं कि एक ही बार में बॉडी का जो पोटेंशियल है अंडा बनाने का, वो हम पूर्णतः उसको हम यूटिलाइज करें. तो उसी वजह से हमें कुछ इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, जिससे आपके अंडाशय में जितने भी पोटेंशियल अंडे हैं वो सब के सब एक ही बार में साइज में बड़े हो जाएं और एक मैच्योर एग हमें प्रोवाइड करें. इससे उन एग्स को हम यूज करके एक एक स्पर्म के साथ ज्वाइन करेंगे. तो इससे हमें फायदा ये होगा कि एक ही बार में हम बहुत सारे भ्रूण बनाने की तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी बेस्ट भ्रूण है वो हम आपके शरीर में डाल सकते हैं. नेचुरली इंजेक्शन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि नेचुरली हम हमारा जो मुख्य मकसद जो रहता है वो होता है कि एक बार में एक ही अंडा रिलीज हो. लेकिन IVF में हमें एक बार में कम से कम 7 से 12 अंडे अगर हमें मिलते हैं तो उसमें सक्सेस रेट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए हम अंडे को ग्रो करने के लिए इंजेक्शंस देते हैं लगभग 10 से 12 दिन तक. उसके बाद का प्रोसेस लगभग इंजेक्शन फ्री ही होता है. और जो इंजेक्शंस रहते हैं वो बहुत पतली नीडल होती है, हम पेट में लगाते हैं, वो मोस्टली पेनलेस रहते हैं.
1: डॉक्टर साहब, इस बातचीत के अंत में आज चूंकि वर्ल्ड IVF डे है,
0: जी,
1: उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगी?
0: हमारे श्रोताओं को बस यही कहूंगी कि सबसे पहले आप अपने अंदर से गिल्ट निकालिए कि आपको बेबी नहीं हो रहा है, इसमें किसी का दोष. दोष चीजों में ढूंढना बंद कीजिए. अगर आप एक महिला हैं और आप एक पुरुष हैं, सब ठीक है, तो आप माँ जरूर बन सकते हैं. पहला तो ये, आपको दृढ़ निश्चय करके रखना है कि हाँ, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है. प्रैक्टिकली सोचना है कि जो जो मेरे अंदर कमियां हैं उनका हम इलाज करने के लिए डॉक्टर की सही सलाह लेंगे. जो प्रोसेस है उस पे हम दृढ़ निश्चय करके उस पे चलेंगे और एक जर्नी की तरह इसको एंजॉय करेंगे. और बाद में बेबी, तो अगर हम प्रोसेस में लगातार बने रहें, मतलब हम पेशेंस ना लूज करें और जो जो हम नियमित आपको सलाह दे रहे हैं वो हम फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली ज्यादातर केसेस में आप एक किलकारी की आवाज जरूर सुनेंगे.
1: श्रोताओं, आज वर्ल्ड IVF डे पर हमारे साथ बातचीत की डॉक्टर सताक्षी कश्यप जी ने. हमारे स्टूडियो में आप आई, इस बातचीत के साथ लोगों तक ये स्वास्थ्य वार्ता आपने पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: निसंतानता से संतान सुख तक का सफर अब होगा आसान. सही इलाज और आधुनिक तकनीक के साथ माता पिता बनने का अपना सपना पूरा करें. संपर्क करें पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर. फोन नंबर है 9109115625.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता, और निश्चित रूप से परिवार की खुशियाँ बच्चों से है, और साथ ही साथ हमारे देश का भविष्य भी हमारे बच्चों पर ही निर्भर करता है. बच्चे जितने अच्छे शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, उतना ही हमारा देश प्रगति कर पाएगा. लेकिन परिवार की खुशियाँ सबसे पहले नन्हे मुन्ने बच्चों से ही है. तो चलिए आज सुबह कार्यक्रम में प्यारा सा एक गीत गुनगुनाते हैं, बाकी बातें आपसे फिर करेंगे.

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: जी हाँ श्रोताओं, हंसते हंसते हो या हंसते रोते, जिंदगी यूं ही कटती रहती है। वक्त बदलता रहता है, दिन महीने साल भी बदलते रहते हैं और ऐसे ही साल के 205 दिन हम बिता चुके हैं और 25 जुलाई यानी कि आज 206वां दिन आ चुका है। साल के तीनों मौसम भी हमने देख लिए हैं। बहुत सर्दी थी, उसके बाद में गर्मियां आईं और अब आषाढ़ आने के बाद धीरे धीरे सही, देर से ही सही, बरसात के बादल हमारे अंचल के साथ साथ पूरे देश को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति अपने सभी संतानों को उनके अनुरूप पूरा प्यार दुलार देती है। कुदरत के दिल में कभी पक्षपात नहीं होता। जी हाँ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव जंतु, पशु पक्षी या फिर पौधे, सबका भरण पोषण का इंतजाम करती है हमारी कुदरत। परंतु मानव श्रेष्ठ होने और बड़े होने के नाते उसका ज्यादा दोहन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। भले ही संख्या में, बुद्धिमत्ता में, साधनों और मशीनरी के उपयोग में हम अन्य जानवरों से बड़े हैं, आगे हैं, परंतु जब प्रकृति का रौद्र रूप या यूं कहें गुस्सा धरती पर निकलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारा होता है। आजकल छोटे बड़े शहरों में रहने वाले लोग, मोबाइल के बटनों पर काम करने वाले लोग, जिसपे वो अपनी फाइलें निपटा लेते हैं, दफ्तर का काम काज कर लेते हैं, खाना ऑर्डर कर लेते हैं, सामान घर पे मंगा लेते हैं, यहाँ तक कि ज्ञान अर्जन भी कर लेते हैं। और ऐसे बच्चे भले ही तकनीक में तो आगे हैं परंतु जीवन कौशल में पीछे हैं। जी हाँ, जीवन के मुश्किल दौर में, अचानक आई मुसीबतों में वे मात खा जाते हैं, क्योंकि जंगल में बाढ़ हो, आग हो जाए या फिर ऐसी कोई आफत आ जाए तो उसमें सारे जानवर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। परंतु हमारी गलियों में पानी भर जाए या फिर गांव शहर के कुछ इलाकों में बाढ़ ही आ जाए तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है क्या करें। बस मोबाइल से फोटोएं उतारते हैं और बताते हैं कि देखो हमारे घर के सामने पानी भर गया है, या फिर घर में बैठे बैठे पानी उतरने का, कहीं से सहायता का या फिर राहत का इंतजार करते रह जाते हैं लोग। इसलिए श्रोताओं, 25 जुलाई को विश्व भर में वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे यानी कि डूबने से बचाव दिवस को मनाने की जरूरत समझी गई थी। हालांकि 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र सभा के प्रस्ताव में इसे आधिकारिक मान्यता मिली थी, परंतु WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है ताकि पानी में डूबने से होने वाली मौतों के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, समुदायों को जीवन रक्षक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, बचपन से ही तैराकी और जल सुरक्षा के कौशल आम लोगों को सिखाने पर बल दिया जाता है आज होने वाले समारोहों में, कार्यक्रमों में, और उफनते नदी नालों के पास अवरोध यानी कि फेंसिंग लगाए जाने पर बल दिया जाता है। नौकायन या फिर पिकनिक पर आप जा रहे हैं, इस दौरान लाइफ जैकेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करना भी इसकी एक शर्त है और इसे इसके उद्देश्यों में शामिल भी किया गया है। श्रोताओं, देखा जाए तो पानी में डूबने से होने वाली अधिकांश घटनाएं रोकी जा सकती हैं अगर हम सजग, सतर्क और जागरूक रहेंगे। पिकनिक पर जा रहे हैं या फिर पर्यटन के लिए बड़े झरनों के आसपास आप जा रहे हैं, डैम देखने जा रहे हैं या फिर समंदर में नहाने ही क्यों ना जा रहे हैं, चाहे मानसून में ही घर बैठे ऐसी कोई आफत घर में आ जाए तो अपना और अपनों का ध्यान अवश्य रखना है। यदि आपके मोबाइल पर, रेडियो पर भारी वर्षा की चेतावनी दी जा रही है तो ऐसे समाचारों को सुनकर अनदेखा बिल्कुल ना करें, बल्कि तैयार रहें इस समय में आने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए। इसके साथ साथ श्रोताओं, पुराना जमाना जो था उसमें तो हमारे पूर्वज पशु पंछियों को देखकर भी ऐसा समझ लेते थे, यानी कि कुछ पशु पंछी ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार से, अपनी आवाज से चेतावनी देते हैं, क्योंकि आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं। तो क्यों ना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम भी जीवन को सहज और सरल रूप से जिए, अगर कोई मुसीबत आ भी जाए तो उसका डट कर सामना करें। बहरहाल कार्यक्रम में एक संदेश आप तक सुनवाते हैं और एक कार्यक्रम महिला सभा संबंधी सूचना भी आपको दे देते हैं। श्रोताओं, फोन करें, गीत सुने कर्म हर मंगलवार को, नहीं चौथे मंगलवार को प्रसारित किया जाता है कार्यक्रम महिला सभा के दौरान। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 को शाम 5:35 से किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई यानी कि सोमवार को सुबह 11:30 से 11:30 के बीच की जाएगी। और कार्यक्रम महिला सभा में चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं उनके नाम है आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। श्रोता बहने हमें फोन कर सकती हैं इन नंबरों पर 0775226592 और आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 28 जुलाई को मंगलवार को शाम 5:35 पर महिला सभा में।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

0: वेव्स ऐप।
1: और इस संदेश के बाद जल्दी से आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम में आज के ट्रैफिक अपडेट्स।
2: नमस्कार, प्रातःकालीन सभा में यातायात संबंधी जानकारी अर्थात ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज बिलासपुर शहर में प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ अनेकों प्रकार की यात्रा एवं प्रदर्शन आदि का कार्यक्रम रखा गया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा आज अंग्रेजी शीघ्र लेखन तथा सहायक ग्रेड 3 की प्रतियोगी परीक्षा ली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। सभी को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं तथा आप सभी से अनुरोध है, ये वर्षा के दिन है, घर से जल्दी निकलिए तथा परीक्षा समापन पर सड़क में धैर्य का परिचय देने बिना ओवरटेक किए क्रम से आगे बढ़ें। मित्रों, आज ही जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ का चुनाव भी हो रहा है, इसे लेकर न्यायालय के आसपास काफी चहल पहल होगी। इस मार्ग से गुजरने वाले धीरे चले तथा आज ही प्रातः 11 बजे भीम आर्मी एवं कांग्रेसजनों के द्वारा अंबेडकर चौक में एकत्र होकर रैली स्वरूप चलकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने का आह्वान किया गया है। वहीं शाम 5 बजे कांग्रेस भवन में कांग्रेस के लोग एकत्र हो कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। ये रैली कांग्रेस भवन से चलसगढ़ नेहरू चौक राजेंद्र नगर चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचकर संपन्न होगी। इसी क्रम में आज दोपहर बाद 3 बजे आम आदमी पार्टी के सदस्यों के द्वारा आक्रोश पैदल मार्च निकाले जाने की योजना है। ये रैली गांधी चौक से चलकर गोल बाजार सदर बाजार होते हुए देवी नंदन चौक आकर संपन्न होगी। इसके साथ ही आज राम मंदिर तिलक नगर समिति के द्वारा पालकी यात्रा निकाली जा रही है। यह पालकी यात्रा राम मंदिर से चलकर गोल बाजार कोतवाली चौक जूना बिलासपुर सन्नीचर बाजार से पुनः वापस राम मंदिर आकर संपन्न होगी। इस प्रकार आज से 3 दिनी श्री राम श्रद्धा यात्रा का भी आयोजन होने जा रहा है। इसके अंतर्गत आज दोपहर 12 बजे देवकी नंदन चौक स्थित हनुमान मंदिर से यह श्री राम श्रद्धा यात्रा प्रारंभ होगी, जो राम सेतु कपिल नगर मार्क हॉस्पिटल गायत्री मंदिर चाटीडी संतोषी मंदिर रामायण चौक अमरैया चौक प्रभात चौक अपोलो चौक से बजरंग मंदिर मोपका पहुंचकर संपन्न होगी। इस सभी रैली यात्रा में शामिल लोगों एवं किसी प्रकार के प्रदर्शनकर्ताओं से अनुरोध है, यह शहर हमारा है, यहाँ के सभी निवासी हमारे हैं, इसलिए ध्यान रहे आपके किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से हमारे शहर के हमारे अपने लोग परेशान न हो। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर को इन ट्रैफिक अपडेट्स के लिए। और बस आज का आज सुबह कार्यक्रम यहीं तक। आपके हंसते मुस्कुराते खुशनुमा दिन की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रस्तुत है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रंग फिल्म से। अलका याग्निक कुमार शानू की युगल स्वर है, समीर का लिखा हुआ ये गाना है, नदीम श्रवण का संगीत निर्देशन।

रंग फिल्म के लिए समीर का लिखा हुआ गाना नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। आइए अब एक और सदाबहार गीत सुनते हैं सौदागर फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम ने।

ओ सपनों के सौदागर, ये बोल थे गीत के। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। 2002 में ये फिल्म आई थी, जिसके गीत को आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में। चलिए सौदागर फिल्म का गीत हम आपको सुनवा देते हैं। इसमें युगल स्वर हैं कविता कृष्णमूर्ति और मनहर के। आनंद बख्शी ने सौदागर फिल्म के गीतों के लिए बोल लिखे थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
5: इन संदेशों के बाद सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है सत्या, गुलजार के लिखे हुए बोल हैं और संगीत निर्देशन विशाल।
6: सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
7: आज ही आयुष्मान।

0: आशा भोसले, सुरेश भटकर और साथियों के गाय सत्या फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, जिसे आपने ट्यून किया है एफ एम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
8: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
9: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
6: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद

0: राज्यपाल श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुए सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान

0: सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
1: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
2: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो, कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य।

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आजकल की जो जीवन शैली है इसमें मानसिक तनाव होना आम बात है। मानसिक तनाव देखें तो आजकल हर वर्ग इसकी चपेट में है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे एक वृद्ध व्यक्ति हो, सबको कुछ ना कुछ मानसिक रूप से तनाव परेशानियाँ होती रहती हैं। चूँकि आधुनिक दौर है, इस आधुनिक दौर में लोगों के पास प्रतिस्पर्धा काफ़ी होती है। हर व्यक्ति हर चीज पाना चाहता है, हर चीज पाना उतना आसान नहीं होता है, तो व्यक्ति की लालसा उसे हर वक्त दिमागी रूप से व्यस्त रखती है। और दिमागी रूप से व्यस्त रहने के कारण लोग चिंता, डिप्रेशन और घबराहट जैसी मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। और श्रोताओं, मानसिक विकारों से ग्रस्त होने के कारण कभी कभी ऐसी भी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। युवाओं की बात करें तो परीक्षाओं की तैयारी, अच्छे मार्क्स लाना। तो श्रोताओं, आधुनिक समय में अभी हम कौन कौन सी मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, और साथ ही हम आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है नशा, इस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, जो एक मनोरोग विशेषज्ञ हैं, सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल रायपुर में। तो अभिषेक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं।
1: देखिए, मानसिक रोग तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो मानसिक रोग हम यूजुअली दो टाइप से लेते हैं। एक तो कॉमन मेंटल इलनेसेस कहते हैं, जो आम मानसिक बीमारियां होती है, और एक सीवियर मेंटल इलनेसेस होती है, जो गंभीर मानसिक बीमारियां होती है। आम मानसिक बीमारियों में हम कहते हैं तो आपका जो आप लोग सुनते हैं कि डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी वगैरह होती है, ये सब हम आम मानसिक बीमारियों में गिनते हैं। कि एक तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा इंसिडेंस है इन बीमारियों का। दूसरा, और ये आमतौर पर लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है, दूसरा एक होता है कैटेगरी गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं, जिसमें हम स्किजोफ्रेनिया कहते हैं, ओसीडी कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इनमें भी अलग अलग लक्षण होते हैं। इन्हें गंभीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका थोड़ा सा जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, जो जितना बीमारी का समय है, थोड़ा ज्यादा होता है, और इन्हें ठीक होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है अगर हम तुलना करें आम मानसिक बीमारियों के हिसाब से।
0: तो डॉक्टर साहब, इन मानसिक बीमारियों के क्या कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, कारण तो ऐसा मानसिक बीमारियों के बहुत ज़्यादा कारण अभी तक नहीं पता लगे, लेकिन जितनी भी अभी तक रिसर्च और जितनी भी अभी स्टडीज़ हुई हैं उनमें 3-4 कारण मुख्य रूप से पता लगे हैं हमें। पहला तो ये है कि जेनेटिक कारण होता है। जिन परिवारों में मानसिक बीमारियों की पहले से हिस्ट्री होती है, जिन परिवार में सदस्य मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं, यूजुअली उन परिवार के बच्चों में फिर और उनके सगे परिवार के लोगों और रिश्तेदारों में मानसिक बीमारियों का जो इंसिडेंस है, जो हम कहते हैं जो उनका जब हमें उभर के आती बीमारियाँ, ज़्यादा थोड़ी सी आती हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, जो हमारे समाज में हमारी जो दिक्कत होती है, हमारे घर परिवार में, हमारे काम में, कभी बहुत कोई लोग कहते हैं कि बहुत प्रेशर लग रहा है काम में, या घर परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, घर में नशे की समस्या किसी और व्यक्ति को, या फिर आर्थिक रूप से प्रॉब्लम है, या और कुछ मानसिक रूप से प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को घर में, उसके कारण भी

0: व्यक्तियों को जब टेंशन होती है, कुछ और दिक्कत होती है, तो जो मानसिक बीमारी है, जो शायद अगर उनकी पारिवारिक स्थिति और काम की स्थिति या आर्थिक स्थिति ठीक होती तो वो नहीं होती, तो उस टेंशन के कारण उनकी बीमारी वो उभर के आ जाती है। तीसरा हम ये गिनते हैं कि एक जो लाइफस्टाइल हम कहते हैं कि जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा जो खान पान है, हमारा जो रूटीन एक्टिविटीज है, जैसे सोना, खाना, लोगों से मिलना जुलना, अपना काम करना, वो सब अगर कभी बिगड़ जाता है तो उससे भी मानसिक बीमारियां हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को नींद कम आती है, कोई व्यक्ति कम सोता है, तो वो कम सोने से जैसे ही वो अगले दिन उठता है, एक तो उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, याददाश्त की कमजोरी महसूस होने लग जाती है तुरंत तुरंत उसे अगले दिन से ही। दूसरा, व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है।
1: जी
0: अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अगर नींद कम ले रहा है, तो ये सब दिक्कतें तो होती ही होती हैं। साथ में अगर किसी के प्रीडिस्पोजिशन या रिस्क फैक्टर जो हम कहते हैं कि किसी को अगर रिस्क है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर हम कहते हैं, उसमें मेनिया होता है, इसमें बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा खर्चा करना, गुस्सा बहुत करना, तो ये भी कभी कभी प्रेसिपिटेट हो जाता है जिससे कम सोने से, तो वो व्यक्ति उस आम बीमारी को के हिसाब से भी वो फिर गंभीर बीमारी में भी बदल सकता है।
1: जी तो डॉक्टर अभिषेक जी, जब मानसिक रूप से व्यक्ति कोई बीमार होता है तो उसकी अब हम पहचान कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति खुद पहचान ये कर सकता है अपने में कि जो भी उसे काम करने में पहले मन लगता था, जो भी वो पहले काम करता था, अपने हॉबीज हो गई उसकी, या उसका अपना जो काम है, बिजनेस जो भी कर रहा हो, उसमें सबसे पहले तो रुचि कम हो जाती है उसकी।
1: जी
0: बहुत सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी वो पूरी नहीं कर पाता। जब घर परिवार वाले उससे कारण पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे मन नहीं लगता है, मुझे करने की इच्छा नहीं होती।
1: जी
0: दूसरा, आपके नींद में, आपके खान पान में ऊपर नीचे होने लगता है, जो आमतौर पर हम कहते हैं, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने लगता है, बहुत ज्यादा सोने लग जाता है, या फिर वो कम सोता है, बहुत कम खाने लग जाता है, जिससे उसे उसके वजन पर भी फर्क पड़ता है। तीसरा, व्यक्ति का बाकी अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या अपने कलीग से ऑफिस में व्यवहार उसका बहुत अलग हो जाता है। या तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है छोटी सी बात पे भी, जो पहले नहीं होता था, या फिर बिल्कुल बात करना बंद कर देता है, जो बाकी व्यक्तियों को उसके आसपास जो होते हैं उन्हें बहुत अजीब लगता है।
1: जी
0: ये तो व्यक्ति को खुद के समस्या है। अगर उनके, मैं कहूं कि उनके परिवार वाले, उनके या फिर दोस्त अगर कैसे पहचान सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, दूसरा अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, या फिर कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके नंबर एकदम से कम हो जाते हैं। अगर स्टूडेंट, उसके नंबर मान लीजिए अगर 60-70% आ रहे हैं एवरेज में, तो एकदम से उसके 50% हो जाएंगे, या हो सकता है वो कभी किसी एग्जाम में फेल भी हो जाए।
1: जी
0: तो एक जो आपकी पढ़ाई हो, जो एकेडमिक्स है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उसमें भी कमी आती है, तो उसके उसका कारण मानसिक रोग भी हो सकता है। और भी कारण होते हैं, लेकिन ये भी सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो शराब वगैरह नहीं पीता था पहले, वो शराब पीना उसने चालू कर दिया, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन करना चालू कर दिया, जो पहले व्यक्ति नहीं करता था, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हो सकता है इसे कोई मानसिक बीमारी हो, इसलिए इसने नशे करने अभी चालू कर दिए, जो पहले नहीं करता था।
1: जी
0: या कोई व्यक्ति अगर शराब आदि या फिर तंबाकू का सेवन पहले से कर रहा है, उसने एकदम से अपनी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो भी उसके परिवार वालों, दोस्तों को ये शक जरूर एक बार होना चाहिए कि व्यक्ति को अगर कोई कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम सुने।
0: मुझे एक गाना बहुत पसंद है, जो अरिजीत सिंह का गाया हुआ गाना है, तुम ही हो, जो कि आशिकी टू का गाना है, वो मैं सुनना चाहता हूँ।
1: जी, तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का आशिकी टू फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक जी से, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल रायपुर में। तो जैसा आपने कार्यक्रम में बताया कि नशा भी जो होता है मनोरोग के लिए काफी उत्तरदायी होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये नशा मनोरोग के लिए कितना कारक होता है, और यदि कोई मनोरोगी नशा करता है तो उस मनोरोगी के मनोरोग को बढ़ाने में नशा कितना उत्तरदायी होता है, और नशे की लत को कैसे छुड़ाया जा सकता है।
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों की एक भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि नशा करने से मनोरोग तो होता ही है, लेकिन नशा अपने में भी एक खुद मनोरोग है, वो खुद एक मानसिक बीमारी हम कहते हैं। तो अगर किसी को व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उनके परिवार में या दोस्त यार में नशा बहुत करता है, तो उसे ये ना कहिए कि तुम नशेड़ी हो, या जो आमतौर पर उनको तिरस्कार करने के लिए बातें कहते हैं, आप ये समझिए कि वो भी नशे की बीमारी का मरीज है, तो उसे भी बीमारी के तौर पर देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे ये पूछी कि नशा मानसिक रोगों के लिए कितना उत्तरदायी, एक तो नशे, मैंने बताया कि नशा चाहे शराब का हो चाहे तंबाकू का हो, सेवन बहुत बढ़ गया, तो उसके भी नशे के जो मरीज हैं बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। तो ये अपने में तीनों जो मैंने उदाहरण दिए आपको, और भी बहुत होते हैं, लेकिन ये तीन उदाहरण जो मैंने दिए अपने में ही एक मानसिक रोग है। जब बाकी नशा, अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो व्यक्ति नशा करता है और ज्यादा करता है, तो उसे ये सब बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है, उसे किसी काम में रुचि नहीं लगती, उसे बार बार अपने दिमाग में, अपने माइंड में मरने के ख्याल आते हैं, किसी को उसने शायद बताया नहीं होगा कभी, बहुत बार ऐसा होता जरूर है। तो अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा कर लेता है, कभी उसने ऐसे नशे का सेवन कर लिया, तो हो सकता है कि चाहे वो उस व्यक्ति की इच्छा ना हो मरने की, लेकिन कभी भी नशे में वो व्यक्ति ऐसा कदम उठा लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, जो कि उनके लिए तो हानिकारक होता है, परिवार के लिए भी बहुत दुखद चीज होती है। दूसरा, जो पहले से मानसिक रोगों से ग्रसित है, जैसे मैंने बताया कि सीवियर मेंटल इलनेस, जो गंभीर बीमारियां हैं, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हम ले लें, बाइपोलर डिसऑर्डर ले लें, अगर इसमें व्यक्ति नशा करते हैं, और तो इस कारण से क्या होता है, एक तो नशे के

0: कारण भी बीमारियां बढ़ती हैं। स्किजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जैसे कि बड़बड़ाना, अपने आप में हंसना, बिल्कुल लोगों से दूर हो जाना, बिल्कुल नहाना, साफ सफाई ना रखना अपना, बिल्कुल अजीब अजीब सी हरकतें करना, जैसे कचरा उठाना या फिर प्लास्टिक बीनना, ये सब जो लक्षण ये बीमारी के लक्षण हैं, तो ये और बढ़ जाते हैं। साथ में जो व्यक्ति दवाई खा रहा होता है, वह व्यक्ति नशा करने के बाद दवाई भी छोड़ देता है, तो उससे जो बीमारी एक स्तर पे ठीक चल रही थी, व्यक्ति अपना काम कर पा रहा था, अपना पारिवारिक और अपना सामाजिक रोल अदा कर पा रहा था, नशे के कारण वो दवाई छोड़ता है, दवाई छोड़ता है तो उसके लक्षण इतने गंभीर हो जाते हैं कि आम तौर पे उसे फिर अस्पताल में लाना पड़ता है।
1: जी
0: तो ये कुछ बहुत आम सी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए नशे के बारे में। नशा खुद एक मानसिक बीमारी ज़रूर
1: जी
0: है, उसे भी मानसिक बीमारी के तौर पे ही देखना चाहिए और उसका भी इलाज मानसिक रोग के हिसाब से ही कराना चाहिए। दूसरा, नशे के कारण भी अगर किसी को मानसिक रोग नहीं है तो मानसिक रोग होने का खतरा भी होता है, प्लस अगर किसी को मानसिक रोग है तो उस रोग का अगर वो ठीक भी चल रहा है तो उसका और खराब होने का खतरा रहता है, तो इसलिए नशा नहीं करना चाहिए लोगों
1: जी
0: को।
1: जी तो डॉक्टर साहब, एक जो भ्रांति है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसके लिए नशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो सही बात है या इसमें हम स्वयं के जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसके दृढ़ संकल्प से और कुछ दवाइयों की मदद से क्या नशा छुड़वाया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, हमारे पास आजकल बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं नशा छुड़वाने के लिए व्यक्ति के लिए। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखना ज़रूरी होता है कि व्यक्ति का खुद का मन कितना नशा छुड़वाने का। हमारे पास ऐसे भी इलाज है, अगर किसी व्यक्ति का मन नहीं है नशा छोड़ने का, उसे नहीं लगता कि उसे नशे की बीमारी है, तो ऐसे भी हमारे पास कुछ काउंसलिंग के तरीके हैं जिससे हम व्यक्ति से बात कर सकते हैं, एक थेरेपी सेशन जैसा हम करते हैं, जिसमें व्यक्ति को एक समय के बाद खुद अपने उनको रियलाइज़ होता है, उनको खुद लगता है कि हाँ मुझे दिक्कत तो है, ये सब परेशानियाँ जो डॉक्टर साहब ने बताई है, फिर जो हम काउंसलिंग में उनसे बात करते हैं, वो जब कहते हैं कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स मुझे सारी हैं, तब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उन्हें नशा, नशे की समस्या, नशे की लत की समस्या है।
1: जी
0: एक चीज़ तो, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर किसी को नशे की दिक्कत है और वो छोड़ना चाहता है और अगर हमारे पास अस्पताल में आता है, तो दो तरीके से हम इलाज करते हैं। एक तो ओपीडी बेसिस पे, जिसमें हमें मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, हम भर्ती करके भी इलाज करते हैं। भर्ती हम उन मरीजों को करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा समस्या हो नशे की, या फिर नशा छोड़ने के बाद जो समस्याएं ज़्यादा होती है, जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊं कि शराब छोड़ने के बाद लोगों को, लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे हाथ पैर कांपते हैं, मुझे पसीना आता है, घबराहट बेचैनी लगती है, और कई बार लोगों को झटके भी आते हैं, जो मिर्गी की समस्या हम कहते हैं,
1: जी
0: ये बहुत गंभीर कोई समस्या है, तो हम आमतौर पर उन्हें भर्ती करते हैं। और एक और साथ में ये भी, अगर कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता है और उसके पास वो इतना डरता है कि मैं बाहर रहूंगा तो मैं नशे का सेवन कर लूंगा, मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, तो भी हम उनको भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छा होती छोड़ने की। दूसरा, दवाइयां हमारे पास बहुत सारी हैं। हम स्टार्टिंग में जब हम नशे का इलाज करते हैं तो उस नशे को शरीर से बाहर निकलने के कारण जो दिक्कत होती है, जिसे आदत होती है, उसे बहुत सारी दिक्कतें होती है अगर वो नशा छोड़ता है, तो वो जो समय होता है आमतौर पे हफ्ते से 10 दिन का समय होता है, उसमें हम दवाइयाँ देते हैं ताकि व्यक्ति को जो नशा छोड़ने के बाद समस्या है वो ना हो। उसके बाद फिर हम, जब व्यक्ति एक बार सेटल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, व्यक्ति अपने आमतौर पे खाना पीना चालू कर देता है वापस, उसके बाद हम एंटी क्रेविंग एजेंट्स हम कहते हैं जो नशा रोकने के काम आते हैं, जिस दवाइयों को खाने से नशा करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है,
1: जी
0: और वो दवाइयों का अगर सेवन कर देगा तो व्यक्ति कभी नशा कर भी ले तो नशे से जो अच्छा लगता है, जो हम कहते हैं कि नशे से अच्छा लगता है लोगों को हाई लगता है, वो दवाइयों से वो भी नहीं लगता, इस कारण से फिर व्यक्ति आगे नशा भी नहीं करते हैं। तीसरा, जिन भी व्यक्ति को हम दवाई देते हैं, आमतौर पे हम उन्हें बार बार अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ हम बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं कि हम व्यक्ति से बार बार पूछते हैं कि आपने नशा तो नहीं कर लिया, नशा तो नहीं कर लिया। अगर इस यात्रा में अगर कभी व्यक्ति ने नशा कर भी लिया एक आध बार, तो हम उसे उसका फेलियर, उसका असफलता नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि ठीक है, व्यक्ति ने इतने दिन छोड़ दिया, एक दिन उससे गलती हो गई, तो हम उसे फिर बहुत बड़ी गलती ना समझ के फिर हम आगे वापस वैसे ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं, जिससे ताकि व्यक्ति का मनोबल भी बराबर रहे और इलाज में आगे बढ़ सकें उसके साथ।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया डिप्रेशन जो आजकल एक आम समस्या हो गई है, तो क्या कारण है कि आज समाज में डिप्रेशन की इतनी संख्या बढ़ गई है, डिप्रेशन से जूझते लोगों की, और इससे कैसे हम बच सकते हैं?
0: देखिए, डिप्रेशन पहले बात तो दो प्रकार का होता है। पुराना क्लासिफिकेशन था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो होता है कि बाहरी जो फैक्टर्स है, बाहरी जो अपने प्रॉब्लम है उनके कारण होता है, दूसरा एक आंतरिक तौर पे भी होता है, जिनका इसका इंसिडेंस या जिसकी जो हम कहते हैं होने का परसेंटेज कम होता है। आजकल इसलिए इतना बढ़ गया कि लोगों को परेशानियां बहुत हो गई हैं। आप जहां भी देखते हैं लोगों को आर्थिक परेशानियां हैं, या फिर परिवार में कोई दिक्कत है, या फिर पढ़ाई में कोई समस्या, काम में कोई समस्या है। और दूसरा, जो पहले के ज़माने में एक जो ज्वाइंट फैमिली का हम कंसेप्ट लेते थे, जब साथ में लोग रहते थे, तब अगर किसी व्यक्ति को भी उस परिवार में कोई भी परेशानी होती थी, तो वो व्यक्ति बाकी व्यक्तियों से शेयर करके, अपने घर परिवार वालों से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके

0: गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस असफलता के कारण जो फिर उसको प्रॉब्लम होती है, उसको वो एक तरह से अपने मन से निकाल लेता था। आजकल क्योंकि लोग अकेले हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, उसमें भी एक बच्चे हो गए,
1: जी
0: और साथ में आजकल क्योंकि समाज हमारा ऐसा हो गया है कि एक व्यक्ति के तनख्वाह से आमतौर पे लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती, तो
1: जी
0: दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं आजकल, माता पिता दोनों काम करते हैं, तो इससे एक तो उनमें और साथ में घर में बच्चा भी संभालना होता है, जिनके बच्चे होते हैं उनको साथ में घर में बच्चे भी संभालने होते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो बर्नआउट तरीके का हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि आपको बाहर भी काम करना है और घर में भी काम करना है, क्योंकि अकेले हो गए तो लोग आसपास दोस्त कम हो गए, काम में इतने लोग व्यस्त रहते हैं, तो लोगों से शेयर करना, लोगों से अपना दुख बांटना जो हम कहते थे पहले जमाने में, वो सब करना भी बहुत कम हो गया
1: जी
0: है,
1: जी
0: क्योंकि व्यक्ति को जो भी परेशानी है उसको कहीं ना कहीं तो अपना मन हल्का करना पड़ेगा, तो वो क्या आमतौर पर आजकल क्या होने लग गया है कि लोग नशे की तरफ ज्यादा रुझान हो गया लोगों का,
1: जी
0: उसके कारण भी जिन व्यक्ति को थोड़ी सी भी समस्या होती है और जो नशे की लत के लिए रिस्क, जिनका रिस्क फैक्टर होता है, जिन व्यक्तियों का ब्रेन नशे की लत के लिए ज्यादा वल्नरेबल होता है, वो व्यक्ति जाके जब नशा करते तो फिर उनको जो उनकी समस्या है वो तो ठीक नहीं होती, लेकिन साथ में उनको एक नई समस्या नशे की भी साथ में जुड़ जाती है, जिससे फिर उस व्यक्ति को, उसके परिवार को और समस्या झेलनी पड़ती हैं।
1: जी
0: आखिरी एक कारण मैं और बताना चाहूंगा कि लोगों को परेशानियां क्योंकि बहुत है तो लोग उसका सही समय में इलाज भी नहीं कराते, लोग
1: जी
0: किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ या फिर काउंसलर के पास आने से डरते हैं, तो जो समस्या बहुत ही कम स्टेज में, बहुत ही कम गंभीरता में ठीक हो जानी चाहिए थी किसी से बात करके, डॉक्टर से मिलके, वो क्योंकि आजकल लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फिर वो समस्या जब बड़ी हो जाती है तब फिर डॉक्टर के पास आते हैं, तब वो जब बड़ी होती है तो व्यक्ति का काम भी छूट जाता है, घर परिवार में भी दिक्कत होती है, जिससे उस समस्या में और बढ़ावा ही होता है, कम नहीं होती है वो।
1: जब हम मानसिक रोगों की बात करते हैं, और जैसा अभी आपने बताया कि डिप्रेशन जो आजकल लोगों को अकेलापन की वजह से डिप्रेशन की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, तो इसमें मानसिक रोगों के लिए कौन सी चिकित्सा जो है भी उपलब्ध है, और इन चिकित्सा से जो मानसिक रोगी है कितना ठीक हो सकता है?
0: देखिए, चाहे डिप्रेशन हो या चाहे और भी कोई आम हो, चाहे गंभीर बीमारियां हो, चिकित्सा आज बहुत भरपूर तरीके से उपलब्ध है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है इलाज करने के लिए, चाहे वो दवाई हो चाहे वो काउंसलिंग हो, बस व्यक्ति को जो भी मरीज आता है डॉक्टर के पास दिखाने या फिर किसी काउंसलर के पास जाता है, उन्हें बस दिमाग में एक बात जरूर रखनी है कि अगर मेरी समस्या दवाई से ठीक होती तो उन्हें दवाई लेना बहुत जरूरी है, अगर उनकी सिर्फ काउंसलिंग से ठीक होती तो सिर्फ काउंसलिंग लेंगे तो भी ठीक हो जाती है। कई बीमारियां हमारी ऐसी होती हैं, जैसे मैं कहूँ ओसीडी हम कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को बार बार हाथ धोने की इच्छा होती है, बार बार गंदगी से समस्या होती है, एक किसी चीज को बार बार एक तरीके से जमाने की समस्या होती है, ऐसे कुछ कुछ लक्षण होते हैं, इन इन टाइप की बीमारियों में हमें दवाइयां और काउंसलिंग दोनों की जरूरत होती है, तो जब भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाए पहले तो ये अपने दिमाग में एक विचार लेके जाए कि चाहे दवाइयां हो चाहे काउंसलिंग हो, मुझे बस ठीक होना है, तो मैं किसी भी प्रकार से मुझे ठीक होना है, तो वो डॉक्टर की सलाह पहले माने। दूसरा, दवाइयां हमारे पास बहुत सारी प्रकार की दवाइयां आ गई है, बहुत असरदार दवाइयां हैं, आमतौर पे जो नॉर्मल बीमारी है डिप्रेशन एंग्जाइटी हम कहते हैं, जो अगर हम दवाई कभी चालू करते हैं उन मरीजों की, तो आमतौर पे 4 से 6 हफ्ते में उन मरीजों को बहुत आराम मिल जाता है, लेकिन चूंकि वो परमानेंट आराम नहीं होता है, तो कुछ एक दवाई का कोर्स होता है हमारे फील्ड में भी, हमारे मनोरोग में भी, तो
1: जी
0: वो दवाई का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, आमतौर पर 6 से 12 महीने का होता है, बाकी बीमारियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा दवाई, लंबी दवाई खानी पड़ती है हमारी बीमारियों में, लेकिन वो जब एक बार आप 6 से 12 महीने कोई व्यक्ति अगर खा लेता है, आमतौर पे हम जिन जो व्यक्ति को कम समस्या होती है, तो वो एक हम परमानेंट तो नहीं कह सकते, पर एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि हम आगे ये समझते हैं कि भी उसे आगे दिक्कत अगर बहुत ज्यादा लाइफ में समस्या ना आए या लाइफ में कोई बहुत बड़ा तनाव ना आए तो व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे स्किजोफ्रेनिया हो गया, जैसे ओसीडी मैंने कहा, उसमें दवाइयां थोड़ी ज्यादा खानी पड़ती हैं, दवाइयां असरदार उसमें भी है, ठीक मरीज उसमें भी होते हैं, लेकिन दवाइयां उसमें थोड़ी सी लंबे समय के लिए खानी पड़ती है क्योंकि वो बीमारियां ही ऐसी हैं,
1: जी
0: तो उसके कारण फिर जब लोग आते हैं हमारे पास, हमसे पूछते हैं कि कितने समय के लिए दवाई खानी है, तो हम उन्हें एकदम क्लियरली बताते हैं कि ये समस्या है, ये बीमारी है, इतने समय दवाई चलेगी, तो आमतौर पर लोग अब पीछे हट जाते हैं कि मैं इतनी लंबी दवाई क्यों खाऊंगा,
1: जी
0: तो इलाज तो बहुत है हमारे पास, चाहे दवाई हो चाहे काउंसलिंग भी हो, जैसे हम डिप्रेशन में काउंसलिंग भी आप करा सकते हैं, एंग्जाइटी में आप काउंसलिंग भी करा सकते हैं, जिनको कम लेवल की डिप्रेशन या हम जो कहते हैं माइल्ड डिप्रेशन या माइल्ड एंग्जाइटी होती है, वो काउंसलिंग से भी ठीक हो जाती है, उसके लिए आमतौर पर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है,
1: जी
0: लेकिन उसमें भी काउंसलिंग में भी ऐसा नहीं कि आप एक या दो बार काउंसलर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जो खुद भी थेरेपीज करते हैं उनके पास आप जाएंगे तो एक या दो सेशन में या एक या दो बार मिलेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है,
1: जी
0: कुछ समय जरूर लगता है क्योंकि बीमारी जो मानसिक बीमारी हुई है उसको बढ़ने में भी समय लगा है, इसलिए उसे ठीक होने में भी समय लगता
1: जी
0: है,
1: जी
0: लोग ये ना सोचे कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, वो हमारे पास आज आए हमें दिखाने, हमने
1: जी
0: 4 दिन की दवाई लिखी और ठीक हो गया, ऐसा
1: जी
0: नहीं होता है हमारी
1: जी
0: बीमारियों में,
1: जी जी
0: लेकिन इलाज होता है, बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं।

0: बहुत सारे मरीज, मैं अपने अगर खुद की पर्सनली बात करूं कि मेरे बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो सरकारी पदों पे बहुत हाई पोजीशन से बैठे हुए हैं, वो आमतौर पे मुझे फ़ोन करते हैं, मैं जब उनको कहता भी हूं कि दवाई आपकी कम कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं सर हम ठीक चल रहे हैं, हमें दवाई खाने से कोई दिक्कत नहीं, हमारी दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको जब सही लगे आप तब कम करिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे।
1: जी
0: तो दवाइयाँ असरदार है, काम बहुत अच्छे से करती है, दवाई खाने के बाद काउंसलिंग के बाद व्यक्ति नॉर्मल अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी सकता है, किसी भी प्रकार की उसे कमी नहीं आती है। बस व्यक्ति को बस धारणा ये बनानी है दिमाग में, जब भी वो डॉक्टर के पास जाए वो एक ही विचार लेके जाए कि मुझे ठीक होना है, उसके बाद पूरा भरोसा आप डॉक्टर पे छोड़ दे, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि आपको कैसे ठीक करेंगे बस।
1: जी तो आपसे जानना चाहें कि मानसिक रोग हो ही ना, या हम मानसिक रोगों से कैसे बच सकते हैं?
0: देखिए, जैसे कि आपने हर बीमारी में सुना होगा कि अपना लाइफ स्टाइल ठीक करे, अपना खान पान, अपना नींद का जो शेड्यूल है, अपना सब कुछ रेगुलराइज करे, मैं भी स्टार्ट उसी से करूंगा, चालू उसी बात से करूंगा कि पहले तो अपनी नींद का एक रूटीन शेड्यूल बनाए, दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे, सब व्यक्तियों की अलग अलग ज़रूरतें डिपेंडिंग ऑन उनके काम में के कारण होती है, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटे हर व्यक्ति को सोना चाहिए, और उस व्यक्ति को जो टाइम है सोने का वो टाइम फिक्स रखना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति रात को 11 बजे सो कभी, या रात को 12 बजे सोए,
1: जी
0: उसको जो सुबह उठने का टाइम है वो उसे हमेशा फिक्स रखना चाहिए। क्यों? अगर कोई व्यक्ति लेट सो के लेट उठेगा तो उस रात को फिर उसे सोने में भी वापस से देरी होती है, क्योंकि
1: जी
0: दिमाग उस हिसाब से आपका सेट हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अपना खान पान, बाहर का जंक फूड बहुत कम खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। घर में बहुत सारे ऐसे पकवान हमारे घर में बनते हैं, सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बहुत सारे पकवान बनते हैं, आप वो घर में बना के खाइए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जो बाहर मार्केट में मिलते हैं, जो खाना मिलता है आपके रेस्टोरेंट्स में, जाएँ बिल्कुल जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करें, कम करें। तीसरा, जो नशीले पदार्थ हैं उनका भी कम सेवन करें, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती हैं। चौथा, कभी भी कोई समस्या होती है तो अपने कोई दोस्त, आपके कोई अच्छे दोस्त हो, आपके कोई परिवार में कोई सदस्य हो जिससे आपको लगे कि मैं इनसे ये बात शेयर कर सकता हूँ, या इनसे मैं अपनी दिल की बात कर सकता हूँ, तो बिल्कुल करें, क्योंकि अगर मन में आप अपनी बात भर के रखेंगे तो एक समय के बाद वो बातें एक साथ बाहर आती हैं, उसके कारण भी कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या रोना बहुत आता है, तो उस समय फिर व्यक्ति को समझ नहीं आता कि क्या करे। और ये चीज़ है कि व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है, एक्सरसाइज आप बिल्कुल करें दिन में, सुबह उठ के, जो हम पहले कहते थे कि सुबह 5 बजे
1: जी
0: उठना चाहिए नहा धो के, अगर पूजा पाठ करते तो अपना पूजा पाठ करिए, रूटीन का वर्क करिए, उसके बाद कम से कम आधे से 1.25 घंटा एक्सरसाइज करिए, जितनी जिसकी क्षमता है उतना, क्योंकि
1: जी
0: व्यायाम करने से दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन डोपामिन जो हम कहते हैं, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे व्यक्ति को खुद में अच्छा लगने लग जाता है,
1: जी
0: और जब वो अच्छा महसूस करने लगेगा मानसिक तौर पे, तो अगर कोई भी शारीरिक समस्या, कोई भी आगे कोई समस्या उस दिन में व्यक्ति को आएगी, तो कम से कम उसका दिमाग इस तरीके से सेट रहेगा कि कोई भी समस्या को मैं कैसे सुधार सकता हूँ या कैसे सॉल्व कर सकता हूँ,
1: सॉल्व
0: ना कि उस समस्या से वो व्यक्ति परेशान हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो हमारा स्क्रीन टाइम वो काफ़ी मैटर करता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, मोबाइल की लत जो होती है ये काफ़ी लोगों में देखी गई है कि एक बार जो मोबाइल पकड़ लिए तो काफ़ी देर तक, रात तक वो देखते रहते हैं, तो इसके क्या दुष्प्रभाव हैं?
0: देखिए, ये जो सवाल पूछा है मैं इसको बहुत ही कम उम्र से चालू करना चाहूँगा कि पहले तो बच्चों की हम बात करते हैं। आजकल मैंने आमतौर पे अपने जो हमारे पास अस्पताल में मरीज़ आते हैं, मैंने ये बहुत देखा है कि छोटे बच्चों को घर वाले ले कर आते हैं कि बच्चा, मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। जब हम माता पिता से ये पूछते हैं कि इसे मोबाइल खुद तो नहीं पकड़ा होगा तो किसने दिया घर में मोबाइल, तो उनका अक्सर ये जवाब होता है कि बच्चा खाना खाते समय हम मोबाइल दे देते ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे।
1: जी
0: सबसे पहले तो बच्चों को, माँ बाप से ये मेरा निवेदन है कि उनको मोबाइल देना बंद करिए,
1: जी
0: क्योंकि आप जब बड़े हो रहे थे आपके माँ बाप के पास मोबाइल नहीं था, उन्होंने आपको मोबाइल नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप बड़े हो गए, आप अच्छे स्तर पे हैं, अच्छे कंडीशन में हैं, तो आपके बच्चे भी रह सकते बिना मोबाइल के। एक सबसे पहले प्रॉब्लम तो पहले तो माँ बाप को समझाना जरूरी है ताकि बच्चों को बचपन से ही मोबाइल स्क्रीन टाइम की आदत ना लगे, मोबाइल की लत ना लगे,
1: जी
0: कि बच्चे बिना मोबाइल दिए, बिना मोबाइल लिए खाना भी नहीं खाते, बिना मोबाइल लिए कुछ बात नहीं मानते, तो एक सबसे पहले तो वो कम करना है।
1: जी
0: और छोटे बच्चों को मोबाइल देने का नुकसान ये होता है कि आप उनकी हर आदत को, हर अच्छी बुरी चीज़ को मोबाइल से जोड़ते हैं, तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में ये कनेक्शन नहीं बैठ पाता कि मैं ये करूंगा तो मोबाइल मेरे को मिलेगा, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है,
1: जी जी
0: अगर मैं बुरा काम भी करूँ या मैं बदमाशी भी करो तो भी मुझे मोबाइल मिल जाता है,
1: जी
0: मैं अगर कोई अच्छा काम करता तो भी मुझे मोबाइल मिल जाता है।
1: जी
0: तो बच्चों को सही गलत की पहचान छोटी उम्र से ही कम होने लग जाती है, जिसका रिजल्ट आपको बड़े होके मिलता है।
1: जी जी
0: ये तो छोटे बच्चों की बात रही, अब जो स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज या युवाओं की बात करें हम, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो आपकी आंखों में समस्या होती है, आपको चश्मा लगता है, जो आमतौर पे हम कहते हैं कई लोगों की आंखें सूजी भी देखी मैंने अपने अस्पताल में, तो सबसे पहले तो आंखों में समस्या होती है, जो शारीरिक समस्या जो सामने दिखती है। अब मानसिक समस्या क्या होती है, क्योंकि आप 30-30 सेकंड के, एक एक मिनट के रील्स देख रहे हैं, तो दिमाग हमारा जो होता है, दिमाग हमारा लंबे समय

0: रखने के लिए और लंबे समय पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए बना है। वो छोटे छोटे काम 30-30 सेकंड के काम करने के लिए बना जरूर कर जरूर सकता है, लेकिन उसमें अगर वो आम तौर पे रेगुलरली अगर ये बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे वीडियोस देखे, छोटे छोटे से काम करे, तो वो लंबे समय तक तो कोई काम करने की क्षमता दिमाग की कम हो जाती है।
1: जी
0: इसलिए हम आमतौर पे देखते हैं कि अगर बच्चे या युवा जो अभी तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो एक उनकी अक्सर शिकायत होती है आके हमारे ओपीडी में कि मुझे आजकल चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मुझे जितना मैं पहले याद कर पाता था, जितना मैं पढ़ाई कर पाता था पहले, वो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तो याददाश्त पे समस्या पड़ती है,
1: जी
0: जिससे आगे फिर फ्यूचर में समस्या होती है।
1: जी अच्छी जानकारी अभी दी है डॉक्टर साहब आपने। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी से, जो सहायक प्राध्यापक हैं मनोरोग विभाग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए, हमारे श्रोताओं को मानसिक रोगों के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही

0: सहायक प्राध्यापक हैं मनोरोग विभाग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए, हमारे श्रोताओं को मानसिक रोगों के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप मनोरोग कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक प्राध्यापक मनोरोग विभाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे रमाशंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है बातों बातों में। इसमें सुनिए बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों और बचाव पर एम्स रायपुर के डॉक्टर तुषार भगत जगजापे से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों मानसून सक्रिय है और बारिश का मौसम चल रहा है। यह मौसम स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। सतर्क नहीं रहने और लापरवाही करने पर तबीयत खराब होने की आशंका बनी रहती है। इस मौसम में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानेंगे हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर तुषार भरत जगजापे से। डॉक्टर तुषार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: सर, ये मानसून के मौसम को स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। मतलब आमतौर पर गर्मी और ठंड के मौसम में आदमी उतना बीमार नहीं पड़ता है जितना कि इस बारिश के मौसम में पड़ता है, क्या वजह है इसकी?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जैसे बारिश होने के बाद प्रकृति में चेंज आती है, हरियाली बढ़ जाती है, उसी तरह बीमारियां भी बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन होता है। गर्मी के बाद तुरंत थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है।
1: हाँ।
2: उसके बाद बारिश में जो ह्यूमिडिटी होती है
1: जी,
2: ह्यूमिडिटी की वजह से और गर्मी की वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये एक अच्छा वातावरण बन जाता है
1: जी,
2: और इसलिए ये ही ये बीमारियां होती है। इसी के साथ पानी में भी कंटेमिनेशन हो जाता है, जो बारिश में जो पानी आता है और जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें भी कंटेमिनेशन होने से उसमें भी बीमारियां।
1: क्या वजह होती है कंटेमिनेशन होने की इसकी?
2: जैसे पानी पीने का सोर्स है उसके अंदर गंदा पानी मिक्स हो गया और जो नालियों का ओवरफ्लो हो रहा है वो पानी मिक्स हो रहा है, तो इससे भी कंटेमिनेशन हो जाता है, उससे बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं और इसीलिए इस सीजन में डायरियल इलनेसेस जो हम दस्त से रिलेटेड बीमारियां होती है वो काफी हो जाती है
1: जी। जैसा आपने बताया, किस तरह के मुख्य रूप से बीमारियों का खतरा इस मौसम में ज्यादा होता है और इन बीमारियों का जो संक्रमण है उसके फैलने के क्या कारण होते हैं?
2: तो मोस्टली ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होता है
1: जी।
2: तो इसमें जो है कि हमें सर्दी खांसी या जो हम जिसे कॉमन फ्लू कहते हैं, इस तरह की बीमारियां, दस्त रिलेटेड बीमारियां और कुछ और संक्रमण जो पानी से हो जाते हैं। तो मेन तीन सोर्सेस है, पहला है पानी, अगर पानी इन्फेक्ट हो गया या कंटामिनेट हो गया, दूसरा है एयर और तीसरा है दूषित फूड। ओके, तो पानी का संक्रमण मैंने बताया कि अगर जो वाटर सोर्स है हमारा और जो सीवेज है उसमें कंटेमिनेशन हो गया तो उसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया हो गए तो वो जैसे कि हमारा टाइफॉइड का बैक्टीरिया है या दस्त रिलेटेड बीमारियां हैं, इसके बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और अगर हम अशुद्ध पानी पी लिया या अशुद्ध खाना, कई गलत जगह से खाना खा लिया, हाथ ठीक से नहीं धोए, तो इसमें फिर दस्त की बीमारियां हो जाती है।
1: अच्छा।
2: दूसरा होता है कि इसमें वायरसेस बढ़ते हैं, तो जिसको हम सर्दी खांसी या फ्लू कहते हैं वैसे टाइप की बीमारियां हो जाती है, बहुत सारे वायरसेस, और लोग साथ में एक कमरे में ज्यादातर रहते हैं उससे भी होता है। और जब कोई व्यक्ति छींकता है तो वो जो कण है, जो वायरसेस के कण है, वो हवा में फैल जाते हैं और वो फिर हमारे इसमें आते हैं। जैसे हमने कोविड में देखा है कि कैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ना, तो वायरसेस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं और इस तरह की बीमारियां होती है। और तीसरा, जैसे फूड बताया, अगर सही तरीके से अगर थोड़ा मतलब फ्रेश फूड नहीं है तो वो गल जाती है, जो सब्जियां वगैरह है वो गल जाती है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ भी होता है, और अगर वो ठीक से पकाकर या क्लीन करके नहीं खाया जाए तो उससे भी हमें बीमारियां।

0: होती है।
1: आपने सब्जियों की बात की तो पर ये कहते हैं कि कुछ सब्जियां नहीं खानी चाहिए इस मौसम में, परहेज करना चाहिए, जैसे भाजी है क्योंकि उसमें कीड़े लगने की इसकी ज्यादा संभावना होती है, पत्ता गोभी है, ये किस किस सब्जियों से परहेज करना चाहिए और कौन किस सी सब्जियां प्रेफर करनी चाहिए कि हम खा सकते हैं उनको?
0: बेसिकली देखिए, जो सीजनल है
1: जी
0: सब्जियां वो तो हमें खानी ही है,
1: जी
0: ठीक है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि खाने में हमेशा हमें फ्रेश चीजें यूज करनी है, खास
1: जी
0: करके इस मौसम में।
1: जी
0: इस मौसम में जो पत्ती वाली, जिसको हम लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, उसमें ज्यादा कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया और उनकी सड़ने की क्रिया भी फास्ट हो जाती है, तो इनको
1: अच्छा
0: हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें यूज करना है तो वो फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी तरह से धुली होनी चाहिए और उनको हमें उबाल के यूज कर सकते हैं।
1: जी
0: उसके अलावा हमें फ्रूट्स यूज करने हैं, और हमें जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जो हम जिनको कड़धान्य कहते हैं,
1: जी
0: उनको भी
1: जी
0: हम अच्छे तरह
1: अंकुरित
0: यूज कर
1: जो,
0: सकते हैं।
1: हाँ
0: हाइड्रेशन, पानी का ध्यान हमें बहुत, भले ही बारिश बहुत हो रही है
1: जी
0: लेकिन हमें इस मौसम में उतनी प्यास नहीं लगती,
1: जी
0: लेकिन इसमें पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी पीने से हमारा हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: जी सर, मानसून का जो मौसम होता है उसमें डेंगू और मलेरिया का भी काफी खतरा रहता है, इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे हो सकता है?
0: मौसम बरसात के बाद जो हम ये जो मलेरिया डेंगू है, इनका एक तरह का एपिडेमिक सा आता है। इसके
1: जी
0: प्रमुख कारण ये है कि जो डेंगी है या मलेरिया है वो मच्छरों से फैलता है। अलग अलग प्रकार के मच्छर होते हैं। जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो बहते हुए पानी में रहते हैं और
1: जी
0: वो आपको कभी भी काट सकते हैं,
1: जी
0: और जो डेंगी के मच्छर है वो जैसे जो रुका हुआ पानी है, जो
1: जी
0: आजकल हमारे घरों में कूलर है, कोई
1: जी
0: कंटेनर है,
1: जी
0: गमले है, वहां पर जो मच्छर बढ़ जाते हैं वो मच्छर की वजह से उसका इन्फेक्शन होता है।
1: जी
0: ह्यूमिडिटी और कम टेम्परेचर, ये मतलब ये अभी जो टेम्परेचर है ये इन मच्छरों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
1: जी
0: तो इस वजह से बारिश के बाद इनका संसर्ग बढ़ जाता है। और खास करके डेंगी जो अभी हमारे शहरों में बहुत कॉमनली मिलता है और इसकी बहुत केसेस बढ़ती है।
1: जी सर, क्योंकि आपको काफी अनुभव है लोगों को ट्रीट करने का, आप एम्स में हैं, तो ये क्या पाते हैं आपकी, जैसे कई बार बहुत खराब केस भी आते होंगे, मतलब आदमी काफी ज्यादा गंभीर उसकी स्थिति हो गई है तब वो पहुंचा, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे? जैसे अभी आपने जो भी बीमारियों के नाम बताए, चाहे डायरिया हो, डेंगू हो या मलेरिया हो, तो इनके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आदमी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करे ताकि उसको सीरियस कंडीशन उसकी ना आए?
0: इसमें मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे कॉमनली जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार या हम फ्लू जिसको कहते हैं,
1: जी
0: ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और बहुत बार ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो इसके लिए हमें सिम्टोमेटिक थेरेपी, मतलब बुखार आया तो बुखार की दवा पैरासीटामोल ही लेना है।
1: जी
0: जो कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, बहुत से कॉम्बिनेशन बैन है, इन्हें हमें नहीं लेना चाहिए।
1: जी
0: लोग ज़्यादातर इधर उधर की, मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं, मतलब क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि इसका दवा दे दो,
1: जी
0: और वो लोग जनरली एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिए जाते हैं, तो हमें एंटीबायोटिक्स को इसमें अवॉइड करना है।
1: अच्छा
0: नॉर्मल कोर्स इनका 2 से 3 दिन का होता है,
1: जी
0: जिसमें सर्दी हो गया, बुखार हो गया, हाथ पैर दर्द, तो इसमें आपको पैरासीटामोल, हाइड्रेशन मतलब पानी एंड रेस्ट, ये 3 चीज़ें, और अपना डाइट ये अच्छा रखना है।
1: जी
0: 2 4 दिन में अगर ठीक नहीं होता है, इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बढ़ रही है, ऐसा होता है तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाके अपना जांच कराना है कि भाई कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया या इसका प्रोग्रेस तो नहीं हो गया,
1: जी
0: और उनके सलाह के बाद हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दूसरा है डेंगू या मलेरिया, इसमें भी शुरुआत में आपको बुखार, हाथ पैर दर्द होना,
1: जी
0: ठंड लग के बुखार आना,
1: जी
0: डेंगू में कुछ तरह के रैश आना,
1: जी
0: ठीक है, ये होते हैं। मलेरिया के लिए डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेना है,
1: जी
0: और मलेरिया में बुखार हाई ग्रेड हो सकता है, उसमें हाथ पैर में दर्द हो सकता है, ठंड लग के बुखार आना है, कभी पीलिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
1: जी
0: डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपके हिस्ट्री लेंगे, आपको थोड़ा सा जांच करेंगे, और अगर लगता है कि भाई मलेरिया का चांस है तो तुरंत ब्लड टेस्ट करके आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा।
1: जी
0: डेंगी भी वायरल इन्फेक्शन है, शुरुआत ऐसी होगी, बुखार होगा, हाथ पैर दर्द होंगे, बहुत सीवियर हेडेक होगा, इसलिए उसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं,
1: जी
0: और फिर बाद में उसका रैश रैश आना शुरू होगा।
1: जी
0: डेंगी अगर जैसे 100 लोगों को हो जाए तो 100 में से सिर्फ 1 या 2% लोग सीरियस सीरियस डेंगी, या जिसको हम डेंगी विथ वार्निंग साइंस बोलते हैं।
1: जी
0: तो कौन कौन से लक्षण हैं जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना है या सीरियस मानना चाहिए डेंगी को?
1: जी
0: अगर पेट में बहुत दर्द है, बहुत उल्टियाँ हो रही है, पैरों पर सूजन आ गई, दाने आ गए, ब्लीडिंग हो रहा है किसी तरह का, या
1: जी
0: कभी कभी पीलिया या सांस लेने में दिक्कत, ये

0: डेंगू के लक्षण होते हैं। कभी कभी इसमें ब्लड प्रेशर, मतलब डेंगू शॉक जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है।
1: जी
0: ऐसे टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे।
1: जी
0: पर बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि लोगों को, क्योंकि एक बार न्यूज़ में आ जाता है कि डेंगू की सांस चल रही है, लोग टेस्ट करवा लेते हैं, तो सारे डेंगू सीरियस नहीं होते। भले ही
1: जी
0: आपका टेस्ट पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है कि आपको भर्ती की जरूरत पड़ेगी। इसमें बुखार के लिए पैरासीटामोल और गुड हाइड्रेशन, जिसको हम बोलेंगे पानी अच्छा पीना है और आराम करना है, यही ट्रीटमेंट है।
1: जी ये जो बीमारियां आपने बताई हैं, इनसे बचाव के लिए मतलब कि हो ही ना, क्या कोई टीके वगैरह भी उपलब्ध हैं?
0: डेंगू और मलेरिया जैसे आप जानते हैं कि मच्छरों से होते हैं, तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट यह है कि आप मच्छरों से कैसे बचें। पहला,
1: जी
0: मच्छर जहां पैदा होते हैं उसे कंट्रोल करना,
1: मतलब जो
0: यानी
1: सोर्स है उसका, उसे ही
0: उसे
1: हम
0: कंट्रोल करें।
1: जी
0: तो उसके लिए आपका पानी जमा नहीं होना चाहिए, जो आपके ड्रेन्स वगैरह है वो कवर्ड होने चाहिए, घर
1: जी
0: में पानी नहीं जमा होना चाहिए।
1: जी
0: उसके बाद अगर मच्छरों से बचे कैसे, तो मच्छरों से बचने के लिए आपको कपड़े हैं वो ठीक तरह से पहनने हैं,
1: मतलब
0: जैसे
1: फुल बाह का यदि
0: हाँ फुल
1: शर्ट
0: बाह
1: वगैरह
0: का।
1: पहने।
0: हाँ,
1: जी
0: तो जनरली जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो अंधेरे में रहते हैं, डेस्क वगैरह के नीचे होते हैं।
1: जी
0: बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो बैठने के पहले उनको थोड़ा सा उसको क्लीन करना है, वहाँ के मच्छर भगाना है।
1: जी
0: तीसरा, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि क्रीम्स वगैरह है, वो
1: जी
0: हम लगा सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन मैं जो हमारे जैसे जो मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल्स आते हैं या अगरबत्तियाँ आती है, उसको
1: जी
0: प्रमोट नहीं करूँगा,
1: जी
0: क्योंकि वो इंडोर एयर पोल्यूशन के बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि जो एक कॉइल होती है
1: हाँ
0: मच्छर की, वो
1: हाँ
0: लगभग 100 सिगरेट के बराबर आपका PM2.5 पार्टिकल देती है।
1: ओफो
0: और सिर्फ कॉइल ही नहीं, जो लिक्विड रेपेलेंट होता है वो भी
1: हाँ
0: लगभग 75 सिगरेट्स के बराबर आपको PM2.5 पार्टिकल देता है। तो ये हमारी
1: अच्छा
0: लंग्स के लिए बहुत खराब है, इसलिए
1: अच्छा
0: उन्हें यूज नहीं करना है, मच्छरदानी का यूज करना है।
1: जी
0: इसी तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी टीके जो है वो उतने इफेक्टिव नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात और है, जैसे अभी आपने टीके के बारे में तो बताया और डेंगू और मलेरिया से क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में बताया, पीलिया का भी काफी प्रकोप इस समय देखा जाता है, तो कैसे उससे बचाव करें, क्या कोई उसका टीका वगैरह भी उपलब्ध है?
0: ये जनरली बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का संसर्ग होता है,
1: जी
0: जिसे हम पीलिया कहते हैं।
1: जी
0: ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, गंदा पानी और अनहाइजेनिक फूड से ये जनरली होता है।
1: जी
0: और अभी हमारे पास इसके लगभग काफ़ी पेशेंट्स आए हैं हेपेटाइटिस ए के, और जिसमें हमें बुखार होगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टी होगी और आंखों में पीलापन, पेशाब पीली, ये हो सकती है।
1: जी
0: इसमें भी अगर जैसे हम कहेंगे कि बहुत से पेशेंट तो उतने सिक नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये बहुत डेंजरस हो सकता है, उसमें एक्यूट लिवर फेलियर भी हो सकता है। तो
1: जी
0: इससे बचने के लिए क्लीन वाटर, एंड हमारे पास हेपेटाइटिस ए के टीके भी है। तो
1: जी
0: हेपेटाइटिस ए का जो टीका है वो हम जनरली 1 साल के आसपास के बच्चों को एडवाइस करते हैं। इसका दो प्रकार के टीके हैं, किल्ड वायरस टीका है जिसके 2 डोजेस लगते हैं, और एक जो है वो लाइफ होता है, उसका सिंगल डोज लगता है।
1: जी
0: इसी के अलावा जो हम बोलते हैं टाइफॉइड, ये भी गंदे खाने और पानी से होता है, उसके भी टीके उपलब्ध है। वो भी जनरली 9 से 6 महीने के बाद के बच्चों को हम दे सकते हैं, और आजकल के जो नए टीके हैं वो सिंगल डोज से काफी इफेक्टिव होते
1: जी
0: हैं।
1: अब मतलब जैसा आपने बताया कि यदि इनसे बचना है तो दूषित पानी और दूषित खाने का उपयोग ना करें। एक अंतिम सवाल, मतलब मुख्य रूप से जो है आदमी को इस मौसम में, यदि हम आपसे कहें कि बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताएं, जो श्रोता इस समय हमारे बड़ी तादाद में सुन रहे हैं, कि हमें बीमार नहीं पड़ना है और स्वस्थ बने रहना है, तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां बरतें?
0: इसके लिए, ये इसी मौसम के लिए नहीं, हर समय
1: जी
0: के लिए यही आपको फॉलो करना है। अच्छा डाइट, डाइट में आपको मतलब अलग अलग फ्रेश, घर में बना हुआ गरम और ताज़ा खाना खाए,
1: जी
0: स्वच्छ साफ पानी पिए,
1: जी
0: थोड़ी बहुत कसरत करे, बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही कुछ योगा या कुछ एक्टिविटी जरूर करे,
1: जी
0: और अच्छा हाइड्रेशन रखे, पानी
1: जी
0: अच्छा पिए, और
1: जी
0: लास्टली सैनिटेशन, हाथों को और मतलब साफ सफाई का ध्यान रखे। ये चीजों से हम हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी डॉक्टर साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इसका काफी फायदा पहुंचेगा। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित बातों बातों में कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 9:15 हुए हैं, आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किस्मत कनेक्शन फिल्म का नाम था। शबीर अहमद ने इसे लिखा। प्रीतम का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार ने इसे लिखा और शारिब तोशी का संगीत।

0: का चित्रलोक प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: तुझको।
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह।

0: कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
1: कुछ समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जी एस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है।

0: जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जी एस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जी एस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जी एस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जी एस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए। साल
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर या आकाशवाणी बिलासपुर है। 9:55 होने वाले हैं। कुछ क्षणों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बलौदाबाजार जिले के ग्राम सकरी के पास बीती रात हुए सड़क हादसे में 16 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। नेशनल परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से 21 अगस्त तक किए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर तय की गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सकरी के पास कल रात रायपुर से बलौदाबाजार जा रही यात्री बस और तेज रफ्तार ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद तथा एम्बुलेंस से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार के सीक्रेट चैम्बर से करीब 38 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में बिहार के कैमूर निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा तस्करी में उपयोग की गई कार और एक मोबाइल फोन समेत 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बस्तर गोंचा महापर्व के तहत कल बहुड़ा गोंचा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 22 विग्रहों को 3 रथों में आरूढ़ कर गुंडीचा से श्री मंदिर ले जाया गया। इस दौरान तुपकी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ श्रद्धालु नाचते गाते तीनों रथों को खींच रहे थे। प्रदेश में कलाकारों और साहित्यकारों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए संस्कृति विभाग ने कलाकार कल्याण कोष योजना और अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकार छात्रवृत्ति योजना के तहत सहायता राशि और छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर तीजनबाई सहित 8 दिवंगत कलाकारों और साहित्यकारों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर होनहार युवा कलाकारों और विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को जिले के 52 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बलौदाबाजार जिले के ग्राम सकरी के पास बीती रात हुए सड़क हादसे में 16 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

10 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं साखन सिंह मरावी और साथियों के स्वर में ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे साखन सी मरावी और साथियों के स्वर में। आइए कार्यक्रम का अगला लोक गीत सुनते हैं सुख सागर सिंह कुसरो और साथियों की आवाज़ में।

दूजन लईका और रुखवा हजार, ये पर्यावरण बचाओ संदेश देता प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे सुख सागर सिंह कुसरो और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को एक सूचना दे दें। महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करें गीत सुने क्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को

0: किया जाता है। इस बहस का प्रसारण 28 जुलाई 2026 को शाम 5:35 से किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 सोमवार सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच की जाएगी। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। जिन फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं उनके नाम है आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। श्रोता बहने हमें फोन कर सकती हैं इन नंबरों पर 07752-266-592। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप।
0: आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमराई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत साखन सीमा रावी और साथियों के स्वर में।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुख सागर सिंह कुसरो और साथियों की स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अमराई FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें गोठ बात होगी राष्ट्रीय आजीविका मिशन ले होवत है आर्थिक विकास। इसके बाद 7:30 से रात्रि 8 तक किसान बंधुओं के कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई योजना, इस विषय पर गोठ बात के अलावा एक भेंटवार्ता हम प्रसारित करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में श्री रघुराज सिंह गौतम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा से आएंगे, आपसे बात करेंगे नंदू भैया। गीत संगीत मौसम मंडी।

का हाल, सामूहिक सुझाव भी आज सुनेंगे आप कार्यक्रम किसान वाणी में। रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 से। इसके बाद समाचार संध्या और विविध भारती के अलावा समाचारों के अनुप्रसारण के बाद हमारी सभा का समापन होता है।

ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10:30 हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नए तराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत कुछ ना कहो फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति की युगल आवाजों में।

इरशाद कामिल की लिखी हुई रचना आपने सुनी, प्रीतम के संगीत निर्देशन में कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था कुछ ना कहो। और आइए अब सुनते हैं नया तराना श्रेया घोषाल की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म एक्शन रिप्ले से। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है और संगीत प्रीतम का ही है।

0: एक्शन रिप्ले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
1: नमस्कार, प्रातःकालीन सभा में यातायात संबंधी जानकारी अर्थात ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूँ उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज बिलासपुर शहर में प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ अनेकों प्रकार की यात्रा एवं प्रदर्शन आदि का कार्यक्रम रखा गया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा आज अंग्रेजी शीघ्र लेखन तथा सहायक ग्रेड 3 की प्रतियोगी परीक्षा ली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। सभी को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं तथा आप सभी से अनुरोध है, ये वर्षा के दिन है, घर से जल्दी निकलिए तथा परीक्षा समापन पर सड़क में धैर्य का परिचय दे रहे बिना ओवरटेक किए क्रम से आगे बढ़े। मित्रों, आज ही जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ का चुनाव भी हो रहा है, इसे लेकर न्यायालय के आसपास काफी चहल पहल होगी। इस मार्ग से गुजरने वाले धीरे चले तथा आज ही प्रातः 11 बजे भीम आर्मी एवं कांग्रेसजनों के द्वारा अंबेडकर चौक में एकत्र होकर रैली स्वरूप चलकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने का आह्वान किया गया है। वहीं शाम 5 बजे कांग्रेस भवन में कांग्रेस के लोग एकत्र हो कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। ये रैली कांग्रेस भवन से जलसगढ़ नेहरू चौक राजेंद्र नगर चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचकर संपन्न होगी। इसी क्रम में आज दोपहर बाद 3 बजे आम आदमी पार्टी के सदस्यों के द्वारा आक्रोश पैदल मार्च निकाले जाने की योजना है। ये रैली गांधी चौक से चलकर गोल बाजार सदर बाजार होते हुए देवी नंदन चौक आकर संपन्न होगी। इसके साथ ही आज राम मंदिर तिलक नगर समिति के द्वारा पालकी यात्रा निकाली जा रही है। यह पालकी यात्रा राम मंदिर से चलकर गोल बाजार कोतवाली चौक जूना बिलासपुर सन्नीचे बाजार से पुनः वापस राम मंदिर आकर संपन्न होगी। इस प्रकार आज से 3 दिनी श्री राम श्रद्धा यात्रा का भी आयोजन होने जा रहा है। इसके अंतर्गत आज दोपहर 12 बजे देवकी नंदन चौक स्थित हनुमान मंदिर से यह श्री राम श्रद्धा यात्रा प्रारंभ होगी, जो राम सेतु कपिल नगर मार्ग हॉस्पिटल गायत्री मंदिर चाटीडी संतोषी मंदिर रमैया चौक अमरैया चौक प्रभात चौक अपोलो चौक से बजरंग मंदिर मोपका पहुंचकर संपन्न होगी। इस सभी रैली यात्रा में शामिल लोगों एवं किसी प्रकार के प्रदर्शनकर्ताओं से अनुरोध है, यह शहर हमारा है, यहाँ के सभी निवासी हमारे हैं, इसलिए ध्यान रहे आपके किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से हमारे शहर के हमारे अपने लोग परेशान ना हो। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स और अब कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत आइए सुन लेते हैं अरिजीत सिंह की मीठी आवाज में फिल्म वन नाइट स्टैंड से, जिसे शब्बीर अहमद ने लिखा है। मीट ब्रदर्स ने इस फिल्म के लिए संगीत निर्देशन किया था।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला नया तराना, जिसे हमने लिया है फिल्म आयशा से। तोशी रैना और साथियों की आवाज़ों में इस गीत को आप सुनेंगे। जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को एक सूचना दे दें, महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करें गीत सुने क्रम का प्रसारण महीने के हर चौथे मंगलवार को होता है। इस बार इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 सोमवार को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच की जाएगी, जिसमें बहनों से चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। जिन फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे उनके नाम है आया सावन झूम की, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा और हमारा फोन नंबर है 266592, बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752। फोन नंबर से पहले लगाना नहीं भूलिएगा। सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं आखिरी गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म पटियाला हाउस से। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे ट्विंकल खन्ना, मुकेश तलरेजा और साथियों की, साथ ही साथ

0: अनविता दत्त का लिखा हुआ ये गाना शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पटियाला हाउस से। बहुत सारी आवाज़ें इस गीत में हमने सुनी और इसी के साथ आज का नए तराने कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, दिन के 11 बजे हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रपट संगीत लेकर

0: पाखा पासे
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आ

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें आपने सुनी बुढ़ा मिल गया फिल्म के इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत, और अब आपको कारवां फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।

0: कारवां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता।

0: बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। और आपको ये भी बताते चलें कि आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे से फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अभी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान। और मैटिनी शो प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बातें की थी जल है तो कल है, सुभजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। और उन्होंने बीते हफ्ते बताया था कि कैसे जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने शुरू किया था वृक्षारोपण से और तब उन्हें समझ में आया कि पेड़ तो तभी जिंदा रह सकते हैं जब पानी उनको जरूरत भर का मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं
1: जी
2: वो नेचर लवर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड है, वो
1: बिल्कुल
2: बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, जो होते हैं कर्मयोगी हैं सब
1: जी।
2: उनके साथ मिलके जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, जिस हिसाब से कॉल्स आते हैं, पिछले हफ्ते जब बात हुई कई कई लोगों ने मुझे मेल किया है, इनफैक्ट मेरे इनबॉक्स लगभग भरने वाला था
1: जी जी, तो
2: बहुत अच्छा लगा इस बात
1: बिल्कुल, क्योंकि विविध भारती को पूरे देश में और बल्कि दुनिया के तमाम

0: तमाम देशों में लोग सुनते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने तई बदलाव करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने बातें की थी तो आपने जल तारा के बारे में बताया था। मैं ये जो बातचीत है इसको गांव की दिशा में मोड़ना चाहता हूं।
1: बिल्कुल जी,
0: गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसका जमीन पर घर है और गांव में कुछ दूर पर उसके खेत हैं, या तो उसके खेत हैं या किसी और के खेत हैं जहां वो काम करता है। ऐसे लोग जो विविध भारती सुन रहे हैं उनको वाटर कंजर्वेशन या जल संचय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं अपने तई, ये बताइए।
1: बिल्कुल जी। इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि किसानों का विषय आपने लिया है, क्योंकि जो मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं, ज़्यादातर किसान हैं उसमें। मैं तो बोलूँगा 100 में से 80 किसान भाई बहन हैं जिनका मेल आ रहा है, एंड सब पानी से परेशान हैं।
0: जी
1: क्यों? कि उन लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे पास कम से कम 10 महीना पानी होता था, आज हमारे पास 8 महीना पानी है, बाकी हम लोग 4 महीना खाली बैठे रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें, खर्चा नहीं पूरा होता है, इसलिए शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है। एंड आजकल के न्यू जनरेशन अवॉइड कर रहे हैं खेती करना, क्योंकि ये पानी की कमी है। इसलिए वो हमें ये बोलने, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कुछ बताइए हमारे पास 12 महीना पानी हो, ताकि हम 12 महीना काम करेंगे। एंड बात सही है, क्योंकि अगर हम 150 करोड़ आबादी है हमारे देश का, और इनको अगर हमें खाना खिलाना है, तो हमारे किसान तो 12 महीना काम करना ही पड़ेगा ना उनको। अगर वो बोलेंगे कि 6 महीना पानी नहीं है, 4 महीना पानी नहीं है, हम काम नहीं करेंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एंड थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक लिया।
0: जी
1: एंड और भी बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट यस, किसानों को पानी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है उनका खेती के लिए। एंड खेती में पानी उपयुक्त मिले, क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए, पानी का गुण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों को माइंड में रखते हुए स्पेशल खेत में जल संचय करने का थोड़ा डिफरेंट विधि है, लेकिन है यही सिस्टम। हमें शोष खड्डा बनाना है, हमें परकुलेशन पिट बनाना है, जल तारा बनाना है, बट उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। फ्री तरीका है, इसमें उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत है। देश भर में आज भी जो खेती हो रहा है, हम लोग बोरवेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर
0: और इस वजह
1: करते
0: से
1: हैं
0: वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा
1: जी।
0: है।
1: देखिए, एक है जब बारिश हो रही है उस समय हम लोग ऐसी ऐसी चीजें ग्रो करते हैं, जैसे चावल है, शुगर केन है, कॉटन है, कपास की खेती बहुत होती है, गेहूं की भी खेती होती है। जब पानी है तब हम लोग ये खेती कर लेते हैं, जब पानी खत्म हो जाता है तो हम लोग सब्जियों पे आ जाते हैं, हरी सब्जियों पे आ जाते हैं। तो इसलिए पहला तो हमें ऐसी चीज़ों को ग्रो करना है जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत पड़े, या जब पानी बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारा 70% पानी बह के समुंदर में और नदी में चला जा रहा है,
0: जी
1: तो बारिश के समय जिन सब्जियों में और जिन चीज़ों में ज़्यादा पानी लगता है, तो हमें उस समय ग्रो करना है, क्योंकि पानी बहुत होता है। जैसे ही पानी कम होने लगता है, हमारा पूरा फोकस चला जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि 6 महीना सोच लीजिए आपने बारिश का पानी खींच लिया, बाकी का 6 महीना हमें अगर काम करना है, तो बहुत ज़्यादा हमारे किसान ज़मीन से पानी निकालने लगते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है सब्जियों का, लेकिन ज़मीन का पानी ख़त्म हो जा रहा है,
0: ये जो
1: इसलिए
0: 70% पानी चला जा रहा है समुद्र में, इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या एक आम आदमी इसे बचा सकता है?
1: बस वही सोच है।
0: जी
1: यहाँ हम जब एक किसान की बात कर रहे हैं, या किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, या किसान को माइंड में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, खेत का पानी खेत में रहना ज़रूरी है।
0: जी
1: एक तो हम लोग मेड़ बनाते हैं खेत में ताकि पानी रोक के रख सकें, दूसरा जब खेत में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बोरवेल सूख चुका है, बोरवेल में पानी नहीं है, तो वापस डालना भी ज़रूरी है। ये तो वही बात होगी, ज़मीन के अंदर एक पानी को आप अगर आप मान के चलिए, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, हज़ारों साल लगे हैं पैसा जमा करने में, मे भी आपके दादाजी पर दादाजी ने पैसा जमा किया था, और अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वही हुआ है
0: पानी के साथ भी ऐसे ही है।
1: बस। तो पानी ख़त्म हो चुका है, अब उसको हम लोग दोबारा वापस डालना जरूरी है। मैं सबको यही, ये जो जल संचय और जन भागीदारी का ही प्रेरणा है, कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हर बोरवेल के बगल में एक माइक्रो पॉन्ड कहते हैं इसको, जल कुंड कहते हैं हम लोग, जल तारा ही कहते हैं, जिसमें वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, 15 फुट बाई 15 फुट और 2.5 फुट गहरा, एक छोटा
0: अच्छा
1: सा जल कुंड बनाना है, ताकि बारिश का पानी आपके बोरवेल का जो पाइप है, बोरिंग का जो पाइप है, उसके बगल में जमा रहे। एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बोलूंगा, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा, कि जब भी हम बोरवेल खोदते हैं, 6 इंच का पाइप अगर जमीन में जा रहा है, तो

0: 8 इंच की खुदाई होती है, जो मशीन होता है ना उसका मुंह बड़ा होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है वो तो ग्राइंड हो चुका है, वो तो पाउडर बन चुका है। अब अगर आप बोरवेल के आसपास पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का, तो धीरे धीरे नॉन स्टॉप जमीन में पानी जाता रहेगा,
1: क्योंकि वो पिट जो है वो बड़ा बना है।
0: बड़ा बना हुआ है। बोरवेल क्या होता है, 200 300 400 1000 फीट नीचे से पानी निकाल रहा है, नीचे पत्थर है, पत्थरों के बीच में गैप है, उसको एक्वाफर कहते हैं, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। जिस गैप से हमने पानी निकाला है, और बोरवेल का पाइप मतलब एक स्ट्रॉ मान के चलिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी स्ट्रॉ को यूज करके अगर हम पानी वापस डाल दें तो हमारे पास पानी दोबारा भर जाएगा कम से कम लागत में। और कम से कम लागत क्या, आपको सिर्फ श्रमदान करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
1: अच्छा, कोई किसान या कोई गांव वाला अपने घर में, खेत में या अपने आंगन में जल संचय की कोई विधा बनाना चाहता है, कोई सिस्टम बनाना चाहता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम और
0: साइज
1: ज्यादा से ज्यादा?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये
1: जी
0: सर। सबसे पहला जरूरी है, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि पानी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है।
1: जी
0: अगर एक पानी को आप संचय कर रहे हैं कि खेत में इस्तेमाल करना है, और खेत का पानी है, तो याद रखिएगा खेत में हमने पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, टॉप सॉइल का पानी है, तो वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिफ्रेंशिएशन हम मेंटेन रखें। जिस बोरवेल में आपने खेत का पानी डाला है, तो 1 किलोमीटर दूर भी अगर आप उस पानी को निकालेंगे तो वो जहरीला हो सकता है, आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए घर में जो आप पानी जमा कर रहे हैं, वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ होना ज़रूरी है। छत का पानी आप उसमें डाइवर्ट करवाइए, छत का पानी साफ होता है, पहले बारिश का पानी बह जाने दीजिए, फिर छत एकदम साफ हो जाता है। उस पानी को आप बोरवेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कीजिए। एक दो टेक्निक है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज। तो छत का पानी बहुत साफ होता है, उसको आप बोरवेल के अंदर डालिए, साफ रहेगा, आप पी सकते हैं। खेत का पानी खेत में इस्तेमाल करेंगे, उसको पीने में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। एंड जल संचय उतना कीजिए जितनी आपकी जरूरत। बहुत इजी फॉर्मूला है, किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है, कितना बारिश हो रहा है, कितने समय के लिए बारिश हो रहा है, आपको बता देगा कि कितना आपके पास छत है, उस हिसाब से कितना पानी आप कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप एक टंकी बना के सेव कीजिए, या परमानेंटली भूजल ग्राउंड वाटर में उसको जमीन में समाने दीजिए, जितना सोख हो जाएगा, आप जैसे कि मैं कह रहा हूँ उसमें इवेपोरेशन नहीं है, निकाल के इस्तेमाल करते रहिए, 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे, वो जमीन के अंदर मिलेगा। बाकी अगर आप खेत है, आपको पानी ज़्यादा चाहिए, तो आपको सिस्टम ज़्यादा बनाना पड़ेगा। साइंस ये कहता है हर एकड़ में एक जल संचय होना चाहिए, हर एकड़ में एक जल तारा इंस्टॉल होना चाहिए, हर एकड़ में अगर आपके पास बोरवेल है, देखा जाता है हर एकड़ में एक बोरवेल मिल जाता है। आजकल तो बोरवेल इतना ज़्यादा लोगों ने बना दिया है, बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे देश में। एंड बोरवेल भी 4 वैरायटी के होते हैं, ये लोग आइडेंटिफाई अक्सर भूल जाते हैं ये चीज़। एक होता है फेल्ड बोरवेल, हमने एक जगह ड्रिल मशीन से 300 400 500 फीट खड्डा किया और पानी मिला ही नहीं,
1: ओ,
0: हम तो भूल ही जाते हैं कि ये भी तो बोरवेल है,
1: और उसके बाद उसको छोड़ दिया ऐसे।
0: छोड़ दिया आपने, लाख रुपए खर्चा कर दिया एक खड्डा बनाने में और उसको छोड़ दिया। इसको आप जलतारा बना दीजिए, इसके ऊपर पानी कलेक्ट कीजिए, पानी जाने लगेगा, बहुत सिंपल। सेकेंड, डेड बोरवेल एक होता है,
1: जहां का पानी सूख चुका है।
0: जो पहले आता था, पिछले 5 साल से वहां पानी ही नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं पानी आता था, अभी नहीं आ रहा है, मतलब पानी डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा।
1: यस,
0: तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, डेड बोरवेल को अलाइव कर देना है, मुर्दा को हम लोग जान डाल सकते हैं,
1: जी,
0: वहां पे भी आप जलतारा लगा दीजिए। फिर मैं आ जाता हूँ ड्राई बोरवेल, मतलब पिछले साल यहाँ पे पानी था, आज पानी नहीं है,
1: इसका क्या मतलब है?
0: मतलब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ज्यादा
1: वो तो
0: एक्सट्रैक्शन हो गया
1: डेड
0: है।
1: बोरवेल में भी तो ग्राउंड टेबल वाटर
0: डेड
1: नीचे गया।
0: बोरवेल आना बंद ही हो गया है 5 सालों से, 5 साल
1: अच्छा,
0: का रिकॉर्ड बताता है पानी ही नहीं है। बट ये है ड्राई बोरवेल, जो पिछले साल पानी था आज नहीं है,
1: ओके।
0: ये फ्रेश फ्रेश अभी अभी मरा है ये।
1: तो इसको जिंदा जल्दी किया जा
0: तुरंत
1: सकता है।
0: इस प्रायोरिटी है।
1: जी
0: एंड चौथा कैरेक्टर मैं बोलता हूँ पार्शियली ड्राई, मतलब अक्सर लोग फोन करते हैं, भाई साहब मेरा 3 घंटा पानी देता था, अभी सिर्फ 15 मिनट पानी दे रहा है, पिछले साल इसी समय 2 घंटा पानी देता था, आज सिर्फ आधा घंटा पानी दे रहा है, तो ये पार्शियली ड्राई हो चुका है। या पिछले महीने तक पानी देता था, अभी पानी नहीं दे रहा है। मैंने मेरे पास अभी जैसे किसान भाइयों का जो मेल आया है, जैसे पिछले हफ्ते आपने मेरा ये इंटरव्यू लोगों को दिखाया, ज्यादातर यही बोल रहे थे कि हमारा पिछले साल जून महीने में पानी था, इस बार जून महीने में पानी नहीं है।

0: पिछले साल मई महीने में पानी था, अभी भी बारिश नहीं आई है तो हमारा पानी नहीं है। तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश उनको साल भर पानी मिल रहा है, बट कई ऐसे बोरवेल हैं जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब सूखने लग जाते हैं। उनको भी हम लोग ये चार कैटेगरी को माइंड में रखते हुए जल तारा बना सकते हैं, 15 फीट बाय 15 फीट, 2.5 फीट गहरा खड्डा, बस
1: ये
0: इतना
1: तो
0: ही
1: कोई
0: है,
1: बहुत बड़ी बात नहीं है।
0: बस श्रमदान हो
1: अच्छा
0: रहा है। एंड थैंक
1: जी
0: यू एनएसएस, थैंक यू एनसीसी,
1: जी
0: ग्रीन क्लब,
1: जी
0: जो हमारे कॉलेज के बच्चे जा जाके ये बना रहे हैं। पालघर में हमने 750 से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं पिछले
1: वाह,
0: 1 सालों
1: और
0: में,
1: इससे बड़ा भारी बदलाव आया होगा।
0: और सब अलाइव हो गए हैं, सारे मरे हुए बोरवेल जिंदा हो गए हैं, और क्या, पानी ही भरा हुआ है, सब खुश हो गए हैं।
1: अच्छा, जो देश के सुदूर इलाकों के स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, मोहल्ले इस मामले में क्या कर सकते हैं? खासतौर पर अब ये हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस की जगह पर अपार्टमेंट आ गए हैं,
0: बिल्कुल,
1: और अपार्टमेंट में ये होता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं क्यों करूं वो करे, तो सब मिलकर करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना आसान है कि एक बिल्डिंग के लोग भी एक साथ आ जाएं और इस काम में जुट जाएं?
0: देखिए ये दो अलग अलग पहलू हैं, मैं बताना चाहूँगा। मैंने जो कुछ 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया है जल संचय के ऊपर,
1: जी
0: क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जुड़ गए इसलिए हो पाया। जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक एक जल तारा इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में 500 हज़ार बच्चे होते हैं, वो सीख जाते हैं ये चीज़, और वो घर जाके माता पिताओं को बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमारे स्कूल में दिखाया गया है, और हमने ये बनाया है, हम अपने घर में भी बनाएंगे, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और सबको मैं यही बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा काम मत कीजिए, 4 फुट बाय 4 फुट और 3 फुट खड्डा बनाइए, और छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर दीजिए। हमारा काम शुरू हो गया जल संचय का। तो ये जहाँ यूथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यूथ इसमें जुड़ चुका है। तो वही मेरी कोशिश कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान का इंस्पिरेशन लेके कि हम लोग इसमें यूथ को जोड़ें। तो स्कूल, कॉलेज, एनएसएस, एनसीसी, ग्रीन क्लब, सबको इसमें जोड़ने की कोशिश है, जिसने बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है, बिकॉज इन लोग जुड़ चुके हैं। बाकी शहरों में जल संचय करना आसान है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन करना आसान है। खेतों में हमारे पास छत नहीं होते। अगर मैं मुंबई की बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, हर शहर में इतना कॉन्क्रीट बन चुका है, इतने छत बन चुके हैं कि छत का पानी बहने ना दें। छत का पानी एक बारिश के बाद एकदम साफ पानी आता है, वो पीने लायक पानी है। हम उस पानी को तुरंत हर घर जल संचय जो अभियान चल रहा है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, छत का पानी है, मेरा छत मेरा पानी, मेरा स्कूल मेरा पानी है, वही मैं सबको बोल रहा हूँ, और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप अपने हिस्से का, आपके पास जो पानी आ रहा है आप रोक के रखिए, आपका छत नीचे पानी जाएगा तुरंत। इसमें खर्चा कम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम 10 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बड़े से बड़ा। और बोरवेल तो हर घर में है आज के ज़माने में, ट्यूबवेल, बोरवेल, हैंडपम्प भी उसी कैटेगरी में आता है। कुएं को लोग अक्सर बुझा देते हैं, कुएं में पत्थर डाल के बंद कर देते हैं, कुओं को आप लोग बिल्कुल बंद मत कीजिए। छत का पानी एक बारिश के बाद जो दूसरा पानी आ रहा है उसको कुएं में बिल्कुल, बस पाइप को तो आपको बस जो गटर में बाहर जा रहा था उसको आपने इधर कर दिया, पानी कुएं
1: सिर्फ
0: में
1: डाइवर्ट करना है।
0: डाइवर्ट करना है।
1: आपने कुओं की बात की तो मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई, और वो है कि एक जमाने में तमाम छोटे शहर और गांव में कुएं, बावड़ियां, छोटे छोटे तालाब और इस तरह की वाटर बॉडीज हुआ करती थीं, जो अब खत्म होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, बावड़ियों को बुझा दिया गया, सुखा दिया गया, पत्थर भर दिए गए, कुएं खत्म हो गए, झीलें, तालाब। क्या महत्व है इनका? पुराने जमाने से लोगों ने इस बात को समझा था, तभी तो इन्हें बनाया था।
0: मैं आपको क्या बताऊं, इसका जवाब दूंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं हम सबकी गलती है।
1: जी
0: एंड मैं कुछ इस बारे में जरूर बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को उंगली नहीं बता रहा हूँ किसी की गलती। पहले हम लोग तालाबों से पानी लेते थे, तालाब छोटे पड़ने लगे, आबादी बढ़ गई, तो हम लोग कुआं खोदना शुरू किए। कुआं छोटा पड़ने लग गया, आबादी बढ़ गई, हम लोग बोरवेल पे आ गए। बोरवेल कम पड़ने लग गया, म्यूनसिपल्टी बोली कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में पानी पहुँचा दूंगा। अब वो भी कम पड़ने लग गया है, क्योंकि हम लोग बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये अलग अलग एलनीनो और अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, जो तालाबें थी वो नेगलेक्ट होने लग गई है, जो कुएं थे वो ऑब्सलीट हो चुका है। आज मैं किसी को भी बोलूं कि चलो कुएं का पानी पिलाऊं, बोलेगा भैया मरना क्यों चाहते हो। अरे हाथ में एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाता है।

0: भैया इसी से पी लो। आप बताइए, मैं मुंबई में हूं, कोई कुएं का पानी पीने लायक है? कोई नहीं है।
1: कुएं कहाँ हैं
0: अब जो कुएं हैं प्राइवेट है कुएं,
1: जी?
0: अब जिस चीज का कोई उपयोग ही नहीं है हम उसको रख के क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विंटेज कार पड़ी हुई है, चलती भी नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको कबाड़ में ही डालना पड़ेगा ना।
1: जी
0: तो कुएं का मतलब हो गया ये तो कबाड़ है हमारे लिए, जिसका उपयोग नहीं है। हम 10 फीट बाय 10 फीट का खड्डा है, पड़ा हुआ है, कोई गिर के मर सकता है, उसका पानी खराब हो गया, कुएं का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है 10 सालों से, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, क्योंकि पार्किंग लॉट सोसाइटी में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं सोसाइटी को। तो कुआं रख के फायदा क्या है? जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि कुएं का फायदा है, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी या कोई बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा या हम आप इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कुआं बेकार है। वही हुआ तालाब का सिचुएशन। मैं बंगाल गया था अभी, मैं बेंगलुरु गया था, चेन्नई गया था, जो सिटी ऑफ लेक्स बेंगलोर को बोला जाता था, अब लेक्स तो नजर ही नहीं आता है मुझे। बंगाल में आपको पता है मेरे दादाजी की शादी दादी के साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास एक तालाब था।
1: ओ हो,
0: मेरी दादी की जो मम्मी थी उससे मिली थी, उन्होंने कहा था उस समय पहले जमाने में जिस लड़के के पास तालाब है मतलब वो क्वालिफाइड है। तुम डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, तुम्हारे पास तालाब है मतलब पानी है, तुम्हारे पास तालाब है मतलब मच्छी है, तुम जिंदा रहोगे,
1: क्या बात है।
0: बाकी पढ़ाई लिखाई अपने जगह। तो वो कल्चर कहाँ गया है? तालाब इतना महत्व होता था। आज के जमाने में लोग गाड़ी खरीदते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बैंक बैलेंस दिखाते थे। उस समय बैंक बैलेंस और FD यही होता था।
1: तालाब होता था जो
0: तालाब है भाई इसके आदमी के पास।
1: हमारे शहरों के तालाब, कुएं, हमारी झीलें, बावड़ियां, ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई हैं।
0: बहुत ज्यादा। और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये भी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ नदी। नदी बचाने के लिए नदी के किनारे जो घाट बनाने से नदी नहीं बचेगा। नदी होता है नदी के पानी से, नदी होता है नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, वो नदी होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर पानी पीने लायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पियो पानी, बट कम से कम अगर इंसान पी सकता है तो बाकी जीव जंतु भी उसमें रह सकते हैं। नदियों में जो लाइफ आसपास होता था, नदियों के पानी में जो मछलियां होती थी, अलग अलग तरीके के जानवर होते थे, वो सब मरने लग गए क्योंकि नदी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है।
1: जी
0: तो बहुत जरूरी है, जब मैं नदी की बात कर रहा हूँ, तालाबों की बात कर रहा हूँ, दीघी की बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लेक हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं अक्सर मैंने देखा है अलग अलग म्यूनसिपलिटी के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के लोग, अलग अलग NGOs लोग, तालाब तो गंदा पड़ा हुआ है, तालाब में मतलब एक मछली नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन चारों तरफ बेंच लगा दिया, लाइट लगा दिया और वॉकिंग स्ट्रिप बना दिया है, वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, वो लेक रिजुनोवेशन नहीं होता है।
1: जी जी
0: जल
1: बिल्कुल
0: शक्ति मंत्रालय ने जो रूल बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है, उसको पढ़िए, उसका पहला पॉइंट ही है क्वालिटी ऑफ वाटर, उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज किया जा रहा है। जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जल शक्ति मंत्रालय में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमारे देश के सारे धुरंधर वहीं बैठे हुए हैं। सच बताओ, मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का, वो बहुत अच्छे सोच है उनका, वो सोच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सोचा आपके माध्यम से ये बात लोगों को बताऊं कि
1: बिल्कुल
0: आप, आपके पास अगर तालाब है, तालाब से आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं। मैनग्रोव की कोई इम्पोर्टेंस नहीं करता है,
1: जी जी
0: मैनग्रोव से कितना केकड़ा बनता है, कितने टाइप के खाना आता है, आज भी करोड़ों लोग दुनिया में मैनग्रोव से चीजें ऐसी आती हैं जिससे लोग खाते हैं, खा के जिंदा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनग्रोव कंजर्व करना जरूरी है क्योंकि वो भी एक वाटर बॉडी में से आता है, उसी तरह हर तालाब को कंजर्व करना जरूरी है ताकि उसमें से मछलियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं खाने की चीजें उसमें से मिलती है। वाटर बेस्ड बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स आ गए हैं आजकल, तो फ्लोटिंग फार्म भी शुरू हो गया है, और तालाबों का रक्षा करना हर किसान के लिए तो पहला धर्म होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी लाया है, वो पॉली पॉन्ड बना के देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, हर किसान को बोला गया है कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है उसमें से आधा एकड़ में आप पॉली पॉन्ड बनाइए, बारिश का पानी उसमें संचय कीजिए, उसके अंदर जमा कीजिए। और न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल, टेक्निक्स हैं, लोग उसका बहुत फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट करोड़ों पॉली पॉन्ड बनाए हैं देश ने।
1: जी।
0: मैं तो बोलूंगा कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक इंसानों का जो हिस्ट्री है, इतना बड़ा जल संरक्षण का अभियान कभी किसी ने न किया न कभी होने वाला है, जो इस समय हमारे भारत देश में चल रहा है।
1: जी, जल संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है कि आपके काम के कुछ और दिलचस्प हिस्सों की बात करें। एक आपके काम का हिस्सा है जो आम से जुड़ा

0: ये क्या मामला है भाई, आम आदमी से आम तक?
1: बिल्कुल आम आम नहीं, खास है
0: अच्छा, आम के बीजों का संरक्षण, वो क्या मामला है?
1: जी। ये किसानों का लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है कि आज किसान इतना पानी के ऊपर निर्भर करता है, कभी ज़्यादा पानी आ गया हमारा खेत बह गया, कम पानी आ गया तो खेत जल गया हम ये बोलते हैं। इसलिए पैडी बेस्ड कल्टीवेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो कहीं पे गलती कर रहे हैं। एक फार्मर पूरा निर्भर हो जाता है कि हम चावल का खेती करेंगे या ऐसा खेती करेंगे जो सिर्फ टॉप सॉइल से आता है और जिसमें इतना इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूरिया फर्टिलाइजर क्या क्या डालना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, हमारा पेड़ कभी मरता नहीं है। एंड टॉप सॉइल ऊपर का जो मट्टी है 1-1.5 फुट का, इतना मैं बोलूँगा इतना डेंजरस हो चुका है, जहरीला हो चुका है कि ऐसा कुछ खेती किया जाए जो ज़मीन के सब सॉइल से आए। तो फल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो जड़ उसका नीचे तक जाता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहे हैं। और फल रोटी खाने से अच्छा है कि आप फल खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं एंड बातचीत चल रही थी, जब बात हो रही थी कि हम लोग फल मिशन फ्रूट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात में लोगों को ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप फल खाइए ज़्यादा,
0: जी,
1: आप चावल क्यों खाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, हम लोगों ने हमारा खेत जितना जंगल था काट दिया है, जंगल काट काट के हम लोगों ने सीधा जमीन कर दिया और उसमें सिर्फ चावल बो रहे हैं, शुगर केन बो रहे हैं, जितने फल के पेड़ काट दिए हैं, जंगल खत्म कर दिया है। अगर आप किसी को हमें तो इमली का पेड़ दे रहे हैं फल के नाम पे, सिर्फ आंवला का पेड़ दे रहे हैं, हमें तो आम दीजिए तो मजा आए। तब मुझे समझ में आया आम आम नहीं है, खास है।
0: क्या बात
1: किसी
0: है
1: भी किसान को बोलिए आम का पेड़, बोले हाँ तुरंत, कभी नहीं मना करेगा।
0: जी,
1: आम हम लोग खुद भी खा लेते हैं, इतना ज्यादा कि एक्सपोर्ट ही नहीं करते,
0: जी,
1: इतना
0: बिल्कुल।
1: बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। एंड आम एवरग्रीन पेड़ है, पतझड़ नहीं होता है आम।
0: बिल्कुल,
1: और मैं लोगों को बोलता हूँ आम का पेड़ एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें हर टाइप का जंगली जानवर रहता है। एक चिड़ियों का घोंसला भी दिखेगा, उसमें लेपर्ड भी बैठा होगा, उसमें शेर भी बैठा होगा, उसमें एक बंदर भी बैठा होगा और सांप भी रह रहा होगा। तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है।
0: इसलिए आपने ये मुहिम शुरू की।
1: इसलिए मुहिम मेरी कोशिश ये है कि फार्मर्स को आम का पेड़ दिया जाए, और सिर्फ आम का पेड़ तो एक बहाना है। जब हम आम का पेड़ देते हैं तो उसके साथ 15 अलग अलग वैरायटी के पेड़ भी दिए जाते हैं, फल के हैं, पॉलिनेशन के लिए, इमली के, वहाँ नीम का भी पेड़ दिया जाता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं ताकि आम जो और बड़ा हो सके और नेचुरल तरीके से हो सके।
0: क्या बात है।
1: ये है इसका टेक्निक।
0: अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहता हूँ कि जो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो जरूर दीजिए, ताकि ये तमाम बातें सुनने के बाद जो लोग प्रेरित हों, जो लोग इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहें या किसी और को जुड़ना चाहें, वो आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं?
1: बिल्कुल। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल कीजिए waterheroofindia@gmail.com पे।
0: जी
1: एंड पिछले बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए कि आपका समस्या पूरे डिटेल में, सिर्फ हेलो लिख के भेजेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय जाता है। आपको जल संचय करना है तो कितना ज़मीन है, किस शहर से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में लिखिए।
0: जमीन का क्या साइज है,
1: बिल्कुल।
0: जमीन का क्या मिजाज
2: ये
0: है?
2: आकाशवाणी का रायपुर और सरायवाली केंद्र है। 11:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और महासमुंद जिले में पुलिस ने कार के सीक्रेट चैम्बर से करीब 38 किलो गांजा बरामद किया है। अब समाचार विस्तार से। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुधारों के सुझाव भी दिए हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिले लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से 21 अगस्त तक किए जा सकते हैं। संविलियन सेवा सुरक्षा समान कार्य के लिए समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले करीब 24 दिनों से हड़ताल कर रहे अतिथि शिक्षकों ने कल अपने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की मुलाकात शिक्षा सचिव से हुई। इस दौरान कुछ मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल का भरोसा दिए जाने पर अतिथि शिक्षक संघ ने फिलहाल अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 5 सितम्बर तक का समय दिया है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने कल प्रदेश के 3 जिलों के विभिन्न स्थानों में छापे मारे हैं। ईओडब्ल्यू की टीमों ने धमतरी, बिलासपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिलों में कुल 7 ठिकानों पर छापे मारकर कई दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए हैं। इस दौरान कुछ दवा व्यापारियों से पूछताछ भी की गई है। ये घोटाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुए जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार के सीक्रेट चैम्बर से करीब 38 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में बिहार के कैमूर निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा तस्करी में उपयोग की गई कार और एक मोबाइल फोन समेत 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार की कल शाम एक कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार कल शाम विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गीत प्रस्तुत कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और महासमुंद जिले में पुलिस ने एक कार के सीक्रेट चैम्बर से करीब 38 किलो गांजा बरामद किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक

अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपरली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ

0: ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफ्रीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

अनजान के बोल आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। डॉन फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। और आपको ये बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया, कौन लाया?
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और आवाजें किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ

0: हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और
0: गया
1: आ गई।
0: एक और आ गया।
1: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
4: विविध भारती पर, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

असद जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम यादों की महफिल, और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत।

भास्कर की आवाज में। राहुल देव बर्मन का संगीत गोलमाल फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। घर फिल्म से ये गीत सुनिए।

किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कर माफ कीजिएगा यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम रोज एक टेक्स्ट या इबारत फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और इनमें वो शब्द शामिल होते हैं जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आज की इबारत या टेक्स्ट क्या है ये आपको पढ़कर सुना देते हैं और हमारे बहुत से साथी जो फेसबुक पेज पर हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने तो इसे पढ़ ही लिया है और अपने कमेंट्स भी देने लगे हैं। अगर आपके कमेंट्स आप कैसे भेजें ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फेसबुक पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की पेज पर जाना है, जिसके लिए आप www.facebook.com/vbsmumbai पर जा सकते हैं, या अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और देवनागरी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देंगी जो विविध भारती के कार्यक्रमों से संबंधित सारी पोस्ट यहाँ आती है और रोज

राष्ट्रीय सेवा की पेज पर जाना है, इसके लिए आप www.facebook.com/vbsmumbai पर जा सकते हैं, या अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, और देवनागरी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देंगी जो विविध भारती के कार्यक्रमों से संबंधित सारी पोस्ट यहाँ आती है, और रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट भी यहाँ आती है जिससे जिसमें कमेंट करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आज की इस कार्यक्रम की इबारत है कि कभी कभी जिंदगी निराशा की जमीन पर चलती है, कभी खुद पर रोना आता है तो कभी हालात ही ऐसे होते हैं। मन नकारात्मकता से यूं जुड़ता है, या कहें कि यूं जूझता है कि ऐसा लगता है मानो ये नहीं होता तो कोई और गम होता। आंखों के आंसू सपनों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, भूली हुई यादों की परछाई भी हमारे आज को डराती है, पर क्या यही है सच्चाई? क्या इस नकारात्मकता से बाहर निकलने की नहीं है कोई राह? एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मिलेंगे कई हाथ तुम्हें थामने को, ये साथ मांग कर तो देखो। तो ये है हमारी आज की इबारत, और कई बार जीवन में ऐसे वक्त आता है जब हमें लगता है कि

हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, और हमने आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा ऐसा दुख भरा गीत है जो आपको बहुत पसंद है। भले ही आप निराश हों, दुखी हों या ना हों, कभी कभी हमें ये दुख भरे गीत भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे साथियों ने भेज दिया है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंसू भरी हैं जीवन की राहें, और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म दूर गगन की छाओं में के गीत के बोल हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिलवाले फिल्म में मुझे एक गीत बहुत पसंद है, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, एक बेहतरीन गीत है, तो इनकी पसंद ये गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सरल शब्दों में कहें तो सकारात्मकता जीवन को आगे बढ़ाती है और नकारात्मकता इंसान को पीछे की ओर खींचती है। सकारात्मक सोच में हमेशा आशावादी रवैया, समाधान पर ध्यान और दूसरों की मदद करने पर होता है, जबकि नकारात्मक सोच में निराशावादी रवैया, शिकायत करने और ईर्ष्या की भावना रखना और हिम्मत हारना ये होता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक साथी ने कहा कि निगेटिविटी, निराशा

से हरदम दूर रहना चाहिए। खुद को पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं, समय संजोग की बात है। खुश रहना चाहिए, जो पल खुशियां दे उसे याद रखना चाहिए और उस पल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। गीत वो कह रहे हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। हमारे एक और साथी हैं, कह रहे हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इस तरह का रवैया हमें रखना चाहिए। एक और साथी कहते हैं कि आज गद्यांश में गम, आंसू, यादें, निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से मन को सकारात्मकता की ओर कैसे ले जाया जाए, यही बात कही गई है। गम, निराशा, उदासी और अकेलापन जीवन के अनचाहे मेहमान जरूर हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। निराशा के क्षणों में कृतज्ञता मन के अंधकार को मिटाने वाला सबसे अचूक दीपक है। सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो आपके भीतर सोई हुई रचनात्मकता को जगा दे और अपनी जीवन ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। तो बहुत सी बातें हमारे साथी भेज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि नकारात्मकता या निराशा की भावना अक्सर आ सकती है हमारे मन में। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आ सकती हैं, कभी कुछ परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं जो इस तरह की नकारात्मकता हमारे मन में ला देती हैं। कभी कभी कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी इस तरह का भाव हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो इसलिए भी इन सारी चीजों का भी ध्यान देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर कभी कभी निराशा या ऐसा नकारात्मकता लगे तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा लगता रहे एक लंबे समय तक तो इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है। और ये भी हमें जांचना जरूरी है कि क्या आपको पता है कि ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है और कौन है इसके संगीतकार, तो बताइए गीत सुनकर।

माई लव फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत। तो संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे

साथियों ने तो ये भी बताया कि शशि कपूर पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारी एक और साथी कहती है कि मैं बहुत खुश मिजाज नेचर की हूँ, हर समय हंसती बोलती रहती हूँ, पर गीत मुझे सभी दुखी वाले ही पसंद हैं। भाई ये बात तो एक अलग ही चीज है कि भाई दुखी गीत पसंद है लेकिन दुखी रहना पसंद नहीं है, तो फिर चलाया जा सकता है। वैसे हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई मन की बात तो सबसे कहना मुश्किल होता है, और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं दुख के बारे में बातें जब कर रहे हैं तो अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई दुखी होना तो सभी के लिए स्वाभाविक है, सब हमेशा खुश तो नहीं रह सकते, लेकिन दुखी ही बने रहना ये एक प्रवृत्ति है जिसे हम बदल सकते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से गीत पसंद है। वैसे एक साथी ने कहा कि भाई आज की भारत में सभी गाने बहुत दुख वाले हो सकते हैं, पर कभी कभी सैड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जीवन सुख दुख का मेला है आज के शब्द उन्होंने चुने हैं, और कहा है कि भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, कोई हमदम न रहा वो तेरे प्यार का गम, ये भी इनकी लिस्ट में शामिल गीत था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, और मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह ये गीत इन्हें पसंद है। तो जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, इस गीत के बोल को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमेशा क्या किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जिससे मिलने के बाद हम उदास हो जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या वो हमें बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं हमारी, या किस तरह से हमारे साथ उनका व्यवहार होता है जिसकी वजह से हम इस तरह से उदास हो जाते हैं, या उनकी उदास प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उदास होते हैं, तो इस बात पर भी गौर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मित्रों की तरह मिलते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उन्हें आलोचना करने की इतना आदत होती है कि वो जब आलोचना करते रहते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो सामने वाले को दुख दे रहे हैं, और हम उनकी बातें उनके विचार अपने मन में ले आते हैं और दुखी रहने लगते हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत गीत पसंद है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और हमारे एक और साथी कौन रोता है किसी की बात पर, इस गीत के बारे में उन्होंने गीत को ही लिख भेजा। हमारे एक और साथी यूँ कह रहे हैं कि कभी खुद पर कभी हालात पे रोना आया, और सही कहा है गीतकार ने कि कभी कभी अपनी ही नादानियां बेवकूफियां अपनी गलतियां और किसी के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा लगाव पर उनके व्यवहार से मन आहत होता है, तो ये गाना बहुत

रिया कारवां, ये गीत इन्हें पसंद है। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार जब नकारात्मकता या दुख हावी होने लगता है तो इस तरह के गीत और भी ज्यादा निराश कर देते हैं। तब कुछ सकारात्मकता से भरे मन को सुकून देने वाले गीत उस स्थिति से निकलने में मदद करते हैं। तो एक ऐसा ही गीत क्यों ना आपको सुनवा दिया जाए, क्योंकि भाई आपको दुखी करना तो हमारा इरादा नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको दुख होता है और मन निराश होता है। क्या कभी ऐसा लगता है? बहुत से साथी कहते हैं कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखने की वजह से हमारा मन कई बार दुखी होता है। क्या सच में ऐसा होता है कि दूसरों से ज्यादा लगाव रखना या दूसरों से ज्यादा उम्मीदें करना, ऐसी उम्मीदें जो हमारी उम्मीदें हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं? तो जरा सोचिए और इस बारे में बताइए। तब तक हम आपको गाना सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला, और इसके बारे में आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और आवाज किसकी है।

चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हालांकि जो चीजें नहीं पूछी थी उसका भी सही जवाब दिया है। और इस बात से खुशी तो हुई ही जाती है कि हमने जो पूछा, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जानकारियां हमसे बांटते हैं और साथ ही अपने जीवन की बातें भी हमसे साझा करते हैं। हमारे साथी ने कहा कि आज की भारत में जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, जीवन की राह बहुत कठिन है, खुशी कम, दर्द बेशुमार है, दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि आंसू बहाने का समय नहीं, कोई भी कदम उठा, रास्ता बना, कोई साथ चले ना चले, कहीं तो मंजिल मिलेगी, जैसे नदियां कल कल बहती रास्ता बना लेती हैं। गीत उन्होंने बताया है, किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये गाना उन्होंने अपनी पसंद का इसमें शामिल किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब जिंदगी की जमीन बंजर और निराशा से भरी लगने लगती है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि तकलीफों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं।

0: नहीं होगा, लेकिन रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों ना हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह की सकारात्मकता जब हम अपने अंदर रखते हैं, तो वो सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी कॉल साथी कह रहे हैं कि आज गम और आंसू की बातें और गाने, इंसान अपने मनोभावों को कभी व्यक्त कर पाता है तो कभी नहीं, खासकर जब बात गमों की हो। वो मन ही मन अपने हालात से जूझता रहता है और तब तन्हाइयों में वो दर्द आंसू बनकर बहता है। किसी को पाने के बाद खोना और मिलने के बाद बिछड़ना। कहते हैं कि जब दर्द आंसू से छलकता है, मतलब इंसान जब रो लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। दर्द भरी यादें कभी तो ताउम्र सताती हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने मनपसंद कार्य में मन को लगाए। समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा या गीत संगीत सीखे, गुने सुने, गाएं, व्यक्त होने से उस दर्द को कम कर सकते हैं। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि राहें बंद नहीं होती, बस नजर का दायरा कभी कभी छोटा पड़ जाता है। एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत हो जिंदगी का पासा पलट देती है ये हिम्मत। जिंदगी के कैनवास पर अगर आज काला रंग गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रंग खत्म हो गए, उस ब्रश को उठाने और एक नया रंग भरने की देर है। तो सकारात्मकता से भरी ये संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं और हम आपसे यही जानना चाहते हैं किस तरह से आप सकारात्मकता से सामना करते हैं अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कहने की भी दुख ही होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं वो भी चलिए कोई बात नहीं, अगर ये काम एक आध दिन हो रहा है, लेकिन लगातार अगर यही हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि बाहर निकलें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपकी आपका साथ नहीं देगा या आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से, किस परिस्थिति में हैं, किस निराशा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो बात सुनते हैं। और सुख दुख की बात अगर हम कहें तो भाई, सुख दुख से संबंधित ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत आपको सकारात्मकता का संदेश तो देगा ही। और फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताने वाले हैं।
1: दुख हो या सुख, जब सदा

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और बात हो रही है कि जब निराशा हमें घेरती है तो हम क्या करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए किसी प्यारे से दोस्त या किसी अपने का थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा सहयोग, तो हमें लगता है शायद कोई इंसान इस परेशानी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें दौलत से नहीं बात करने से भी संभल जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभार मन किसी जाने अनजाने दुख से या यूं ही निराश होकर उसी में डूबता चला जाता है, कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में उस जगह से उठकर थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी चहलकदमी करें, एक दो लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातें करके मन को बहलाएं, मन को कहीं और लगाएं तो कुछ मन हल्का हो जाता है, वरना जितना डूबोगे मन इतना ही डूबता जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कभी कभी वो बात हमारे मन से निकलती ही नहीं, तो जरूरी है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें, या उठकर बस एक चार पांच कदम भी अगर हम चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस विचार से निकल पाते हैं और कुछ और भी सोच पाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत हमें जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं के साथ ही सकारात्मक सोच की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय कर रही, किंतु सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई सकारात्मक पहलुओं के करीब अवश्य ही है, और जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमें सकारात्मक सोच की तरफ इशारा किया करती है, हम उससे ही उसकी सहायता से ही अपनी सकारात्मक सोच की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह हमें सकारात्मक सोच से भी बचते हुए उस अद्वैत आनंद की इबादत से ही ओतप्रोत रहते हुए संदेश देते हुए स्पष्ट करता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी जो भी वस्तु है वो गोविंद यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और उन्हें ही हम समर्पित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही जीवन के एक पहलू हैं और इन्हें बदलते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह मन के विचारों को भी एक ही तरफ एक ही जगह पर बचाकर या जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि निराशा हर किसी के जीवन में आती है, अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा, उस निराशा, उस नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए, और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

सीमा फिल्म का ये गीत सुना। और इस फिल्म में और इस गीत में नजर आती हैं नूतन शुभा खोटे के साथ। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म चित्रलेखा के गीत के बारे में उन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की भारत का सारांश है कोई क्या जाने पीर पराई। और हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये गीत जब दिल टूटता है तो आशिक लोग गाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और गीत के बारे में ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मात्राधिक आशा ही कष्ट का कारण है, सबसे कष्ट और निराशा अपने कार्यरत आत्मनिर्भर बच्चों के फिजूल खर्ची से होता है। 8,000 के जूते क्या मुकुट है जो सिर पर पहनना है। भाई देखिए, ये भी एक कारण हो जाता है कभी कभी, जब हम ये सोचते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी। हो सकता है किसी और के नजरिए में उस चीज की उन्हें जरूरत हो सकता है, वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों या कुछ बातें हों, उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी है। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है जिसका निवारण हमारे हाथ में ही होता है। हमारे को साथी कह रहे हैं कि जब मन दुखी उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुख्य

राकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहना है कि अपने से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देख कर मेरा दिल गहराई से भर उठता है। जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है। मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की एक गहरी परत सी छाई रहती है। सोचता हूँ कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता। आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई, हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज कर लेना हमारे बस की बात नहीं है, और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसलिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कहने कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं, मुझे गले लगा लो। जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है। जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर सिंह फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम, जुबिन नौटियाल ने सिखाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि निराशावादी लोगों की जगह हंसमुख स्वभाव वाले लोगों के साथ समय गुजारना चाहिए। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छी संगति हो या खुश मिजाज लोगों के साथ अगर जब हम होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी जो ये हम सोचते हैं कि निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये जो दिन भर ये उदास रहते हैं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वक्त में ही उस व्यक्ति को ये लगता है कि जब हम निराश हैं या हम उदास हैं तो लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं और उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ हैं उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक ऐसा ही गीत। आपको ये बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हमें, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाहे दुख हो या खुशी, एक गीत तो हम हर समय सुनते हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और ये गीत इन्हें बहुत पसंद है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लाखों तारे आसमान में ये गाना उन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी का कहना है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये गीत उन्हें पसंद है। हमारे एक साथी ने तलत महमूद के गीत उन्हें पसंद है ऐसा कहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। एक साथी कहते हैं मेरे महबूब कयामत होगी, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे और साथियों ने गीत कौन सा बताया बताएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धूप बहुत है राहों में, परछाओं भी कभी मुस्कुराएगी, गम का मरुस्थल लंबा सही पर हरियाली लौट कर आएगी। तारे सुन सुनकर थके पैर अब ताने सुन सुनकर थके पैर अब मंजिलों की ओर बढ़ेंगे, सुख दुख के ताने बाने में सहयोग के धागे बुन लेंगे। ये इन्होंने लिख भेजा है सकारात्मक लघु काव्य आज की भारत से संबंधित। और उन्होंने कहा कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। इस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निराशा या नेगेटिविटी इंसान को जब आती है, उसके मन को यह एहसास होता है कि अब मुझे हर कोशिश कार्य में असफलता मिल रही है। पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से मिलती है, तो वह पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मंदे तो काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो, तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल, ए आर रहमान का संगीत, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे एक साथी कहने कि वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है। जब भी कभी उदास या दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूँ, तो शादी से पहले मेरी माता जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्म पत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती, और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती कि पापा जी हमें बेटियां ना समझ कर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना। तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, सुख और दुख तो दुख छाव धूप छाव की तरह है जो जीवन में आते ही रहते हैं, जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूँ और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा, ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे को और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुखांत फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द दिया का एक गाना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें, लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है? हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और जाने तू या जाने ना फिल्म का जो गीत हमने सुनवाया था, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज है। वही हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही, तो मुकेश के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है। इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तू या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

छिछोरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। और सुरीला सफर कार्यक्रम से बस लेते हैं इजाजत।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है। लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में

0: तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: सीआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो

0: पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
1: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे

0: कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे फारूक कैसर के बोल। शिकारी फिल्म के इस गीत में आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आपको बता दें कि शाम 4 बजे आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकेंगे फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

एस कोहली का संगीतबद्ध ये गीत आपने सुना। नमस्ते जी फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया और अनजान के बोल थे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म से ये गीत। मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

दिल दे के देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में ये अगला गीत। छोटी बहन फिल्म के इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया।

छोटी बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुबीर सेन और लता मंगेशकर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो कार्यक्रम मन चाहे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे।

नहीं, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और दतरंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर फिल्म से गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

है गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू अजय कुमार साहू किशन साहू जय कुमार श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी माया साहू आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत सुनिए आवाज तलत महमूद की राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।

माफ कीरे माफ कीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे माफ कीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया ए साला मैं तो साहब बन गया Attention! साला मैं तो साहब बन गया ए साहब बन के कैसा तन

0: तेली
1: क्या गंगू तेली
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा हमसा ना बदलेगा सीना देखो कर

सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा के आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ, महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंगिस किंग फिल्म का ये गीत, मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान, सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धा नंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है। चोरी चोरी ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: मनचाहे गीत
2: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? डियर सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आपके सिंहासन पर बैठाने वाले हैं जनाब चंद्रा साहेब। हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
4: वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
4: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
3: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन।
4: हाँ?
3: मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीशचंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
4: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
3: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया है। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
5: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
3: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों अख्तर? होगी।
5: ओह जनाब अख्तर साहब, 100 टाइम
4: आधा वर्ष मियाँ।
5: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
4: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातमपुरसी करने चला आया था।
5: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
4: तो और करता भी क्या है?
5: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
3: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं, तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
5: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलोसफी की चर्चा नहीं कर रहा,

0: मैं ये कहना चाहता हूँ, हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है, ये मेरी अपनी राय।
1: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
0: जी हाँ, पर अकेले नहीं बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
2: सचिन, तुम्हारे विचार मैं जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा।
1: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
0: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो, तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
2: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
1: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
0: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
1: करेक्ट।
2: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। अरे चलो चलो बाहर चलो
0: चलो चलो।
3: रितु, क्या मंगवाए?
4: बस कॉफी।
3: बैरा?
5: जी सर।
3: दो कोल्ड कॉफी।
5: बहुत सर।
4: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
3: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
4: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
3: जरूर मिलती है।
4: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
3: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली हैं।
4: अच्छा
3: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती हैं? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
4: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
3: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
4: तुम मजाक कर रहे हो।
3: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
4: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है, ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
3: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
4: फिर वही बात।
3: रितु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
4: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
3: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
4: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
3: साल दो साल, ये सजा क्यों?
4: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
3: तब तक मैं क्या करूं?
5: सर बिल।
4: तब तक बिल चुका।
6: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
7: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
6: आसान होता तो तुम्हें ये नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
7: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
6: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
7: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है, गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
6: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश

0: दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
1: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे, अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
0: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
1: जी।
0: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
1: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत के लगाम नहीं लगी है मेजर।
0: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम मिलाओ।
1: वो क्या मेजर?
0: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंती लाल को वही तो दल में लाई थी।
1: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
0: यू आर राइट एंड दैट मीन्स मनी।
1: ऑफ कोर्स।
0: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
1: जी।
0: सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
1: आप फिक्र मत करें मेजर।
0: ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
2: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
3: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
2: अरे यही था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
3: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
2: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे, अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
3: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
2: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं, बेकरारी के हैं।
3: मैं समझा नहीं।
2: बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
3: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
2: वो कैसे?
3: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा, रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
2: अच्छा,
3: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
2: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
3: यही तो समझ में नहीं आता, जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
2: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ, क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब ना कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती?
3: छोड़ो इस बात को।
2: पर हरीश, तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
3: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता।
2: लेकिन वही रीता अब तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
3: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो, उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
2: ये कारण अख्तर तो नहीं?
3: अख्तर?
2: हाँ, नहीं। उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता
3: हूं। नहीं, वो नहीं हो सकता, रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
2: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी, नारी इतनी सरल नहीं होती।
3: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है, स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
2: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
3: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
2: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
3: अच्छा चलो
2: चलो।
4: हरीश?
3: नहीं नहीं सचिन।
4: हेलो हरीश। हाय सचिन।
3: हेलो हेलो।

0: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं?
1: अरे मैं तो भूल ही गया,
0: आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
2: हाउ डू यू डू।
3: आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अक्ता साहब, से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
0: कॉफी? श्योर श्योर, क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है
2: भाई। आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
3: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
4: मैं
0: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
3: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
4: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
0: दैट्स गुड,
3: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र,
0: बैठिए। बेरा बेरा
5: जी साहब,
0: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
3: जी नहीं।
0: तुम कुछ लोगे हरीश?
4: मैं कुछ नहीं लूंगा।
0: ओके बस तीन गरम कॉफी लाओ। बेरा
5: अभी लाया सर।
0: हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है, गाना नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
4: That's a rare combination.
3: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
0: भाई ऐसी बात नहीं है।
5: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
0: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
4: क्या हुआ?
0: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
4: चलो चलो हम भी चलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
3: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
4: मैं छोड़ाऊंगा।
0: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
4: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
0: ओके
6: रितु, हरीश आखिर गायब कहां हो गया?
3: क्यों, क्या हुआ पापा?
6: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं, थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
3: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
6: हाँ साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
3: लड़की खराब होगी पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
6: हरीश कितना बहक सकता है यो शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
3: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
6: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा। और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका, वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
3: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
6: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन DSP मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है, कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
7: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी अगली कहीं की।
3: मैं रो कर रही हूं,
7: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
3: पापा मैं आपको दोष नहीं देती।
7: दोष मेरा है, मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये फूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
3: पापा पापा हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं, आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा, अपनी मंजिल वो जानता है।

0: जानते हैं जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था।
1: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
0: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
1: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कहाँ तक कुंडों के गिरोह से बच सकता है कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुम में करवाहट पैदा कर रहा है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौरतलब है कि इंकलाब खाने से ज्यादा नई भुक्तियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से ये इंकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाते हैं।
3: देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते
0: हो। लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: जहन्नुम में ले आए हो।
1: इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत है। हुरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
2: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
1: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
2: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
0: अरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पहले एक्शन में तुम्हारा यह हाल है?
2: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच बुजदिल हूं।
0: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
2: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
0: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
2: शट अप,
0: जबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर गोला बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
2: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
0: हरीश,
3: ये सब क्या है?
0: हरीश गद्दार।

0: मेजर।
1: क्यों हरीश, क्या बात है?
2: मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
1: तुम्हें यह समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
2: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
0: ये बनता है मेजर।
1: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
2: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए।
0: हरीश,
2: आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
1: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
0: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
1: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे
0: मेजर।
1: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की
0: मेजर।
1: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
2: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
0: हाँ, मैं जलील हूँ, मैं जलील हूँ, लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे जान से मार

0: कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ? खून? अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चल

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशा को तो जल्दी चली आओ। अच्छा
0: अच्छा अच्छा मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता तो सब मंजिलें मिल जाएंगी, और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूं। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ, वापिस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल।
3: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू जी।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारतीय आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी,
2: जी
3: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक डफ मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
2: जी, जी।
3: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से
2: जी।
3: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कसूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए
2: जी।
3: 2006 में मेरा पोता सोहेल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
2: जी।
3: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
3: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवी पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है
2: जी, जी।
3: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
2: जी,
3: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक
2: जी।
3: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा। जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
2: बिल्कुल।
3: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे, फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर सिंगर एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे, फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे, छठा मैं छठी मतलब छठा मैं था दिलीप सेन। तो करते करते निकला और एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
2: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने वाले संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है
3: जी।
2: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग

0: निकला, एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन
1: जी
0: गए।
1: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
0: जी,
1: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो
0: अभी
1: कहेंगे
0: छठी हो
1: छठी
0: जाएगी।
1: पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा
0: जी
1: योगदान
0: हाँ
1: रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहाँ
0: जी,
1: से हुए?
0: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की कलकत्ता रेडियो से। वहाँ पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ
1: अच्छा,
0: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
1: मतलब टैगोर साहब, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर
0: रविंद्रनाथ
1: साहब।
0: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में कुछ
1: अच्छा।
0: साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923 24 25 में वो चले गए लाहौर, वहाँ पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे,
1: जी।
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मूछें होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का,
1: जी।
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था।
1: हाँ
0: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी,
1: खेमचंद प्रकाश
0: वो
1: जी।
0: भी हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से।
1: जी
0: और एक हमारे कवि, बहुत बड़े कवि हुए, कन्हैयालाल सेठिया जी,
1: बिल्कुल
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर हैं ये राजस्थान
1: बिल्कुल।
0: की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास, चूरू से थोड़ा पास बीकानेर शहर से जो है पंडित
0: हाँ,
1: भरत व्यास,
0: भरत व्यास जी है, गुलाम
1: गुलाम
0: गुलाम मोहम्मद जी हैं,
1: मोहम्मद साहब।
0: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि
1: हाँ,
0: अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो वो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही
1: संगीत
0: है।
1: है। जी,
0: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी,
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना,
0: एक
1: अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत। और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना, तो मेरी मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा
0: जी
1: कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं
0: जी
1: और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद
0: जी
1: आया, आज भी लोग
0: बिल्कुल
1: देखते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब
0: आसानी रही।
1: आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं
0: अच्छा
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली। क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई से, भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक धिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक। अब ये दिन ताक धिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक धिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लेंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर जोर शोर अर अर अर ओरे, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये एक गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारी दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, वसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ। क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपिन अय्यर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एच डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी। जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
0: जी,
1: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है, तो वो बनने से पहले अपने गुणी जनों को सुनो कि हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है, वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
0: वो वही
1: जो हमारी

0: रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति आ गई,
0: क्रांति आई और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म मिली?
0: फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था।
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो, बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे।
1: हाँ।
0: या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी,
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते 3-4 साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीज़ें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपया का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक लेने जाएंगे या पैसे दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल,
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये प्रकर्शन में नंबर 1 है इंडिया के, एक माने हुए प्रकर्शन हैं, जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो
0: क्योंकि जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोला क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? तो मैं बोला यार अपन संगीतकार बन जाएं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: अस्सी के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150-200-300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो 3-4 गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था। बोले ये खामोखा म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मर्तबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे,
1: अच्छा गीतकार,
0: गीतकार। तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का।

0: कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे, यार तेरे में जम से तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वाली साहब के काफी नजदीक में थे वो।
1: जी
0: तो मैं असद वो वाली साहब को बोला, मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम पर 2 दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा, मुझे बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है, बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला, यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें, बोले यही बच्चे, बोले ये बच्चे सुनाएंगे, ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर, और वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए, हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त मैं जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन किया करवाया, हमको एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई। तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़ी की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी,
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: मगर
0: कंपोजिशन में बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुराना माने तो सुनाना चाहूंगा,
1: बिल्कुल।
0: हमने ये दिल्ली के सारे गाने कंपोज कर लिए थे।
1: हाँ।
0: तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते, बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोले ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोले ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कु आई लव यू तू नाक धुन तू धुन तू नाक धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे, और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे, क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या,
1: क्या है,
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है, ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए, ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे

0: ज़्यादा फॉलो करता हूँ इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका, ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन लें।
0: जी
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर
0: जी
1: बड़े भाई साहब को जानते थे, तो
0: जी
1: वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लेगा, तो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अभी इसको सब में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं, ये 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है
0: अच्छा,
1: ये, जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को
0: हाँ
1: सिखाया
0: हाँ
1: जाता है,
0: हाँ हाँ
1: तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है, ये
0: जी
1: 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो
0: हाँ
1: इस तरीके से वो रहा, तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
0: कि एक नई बात है।
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है, तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और
0: जी
1: मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
0: जी
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया,
0: जी
1: आईना और ये दिल लगे में।
0: जी तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर
1: बैनर
0: मिला यश
1: मिला
0: चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला,
0: मौका मिला, बहुत बड़ी बात थी आपके
1: बहुत
0: लिए।
1: बड़ी नहीं है,
0: तो
1: ड्रीम था, सपना
0: ड्रीम
1: था।
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहले पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी,
0: अच्छा
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी, फिर
0: अच्छा
1: ऊपर करके कैसा बड़ा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी।
0: जी
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक दिना के दिन दिन तिन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया।
0: जी
1: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था,
0: अच्छा
1: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में
0: जाते ही
1: जहां पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया? बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई? क्या जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रहेगी। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद के ले जा तक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था? मैं बोले सजना वे मेरे नींद के ले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा
0: क्या
1: तक, अच्छा हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना, मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
0: नम्रता, इतनी
1: नम्रता के
0: विनम्रता,
1: अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का
0: नया।
1: लौंडा हूं, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ,
0: लेकिन एक महान
1: मगर
0: कलाकार।
1: उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है, अरे ये जगह उसने सही बनाई है।

0: तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला, आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ।
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल
1: ये
0: लगी,
1: दिल लगी।
0: तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजना।
1: वाह बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी आफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं नहीं ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था। लगी

0: से दिल की सुना उन्होंने, मैं बोला इस तरीके से, तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा है गहलोत से, मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं। तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप, वो कैसा है? मैं बोला नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो, दिल
1: दिल
0: है तुम्हारा,
1: तुम्हारा।
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है, अच्छा है, नया स्टाइल है, गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग
0: था।
1: गया। हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए, एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल के करीब है।
1: जी
0: बोला अच्छा, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब कोई गाने उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था, हो तुम पे बस।

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: 2 मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, बोला अच्छा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटे। बोले नहीं ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया,
1: क्या बात।
0: गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे। तो
1: जी
0: यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही
1: गाने,
0: समय में 4 गाने गाए हूं।
1: क्या
0: ये मेरे लिए
1: बात,
0: बहुत
1: ये
0: नसीब
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। और
1: जी
0: मैं समझ रहा हूं शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए।
1: जी

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है,
1: अच्छा
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर

0: हैं, तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं। तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाने गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन।
1: बिल्कुल,
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा, लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे, अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा
1: क्या
0: है,
1: बात
0: कि
1: है,
0: खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा
1: बहुत
0: है, कि
1: सुंदर।
0: रेतों में। तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे।
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है एक कलाकार को, एक सिंगर को, एक
0: जी वो
1: संगीतकार को।
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं
1: और
0: जाता था
1: गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप
0: गीत,
1: से जब
0: नहीं नहीं
1: गीत लिखता
0: डेफिनेटली
1: है।
0: हमको सबको जाना पड़ता है
1: हाँ
0: उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी, चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं।
1: चित्रा
0: तो
1: जी,
0: चित्रा जी मद्रास के, साउथ की जो
1: चित्रा
0: हैं,
1: केएस।
0: हम चित्रा जी बोलते हैं
1: जी
0: उनको,
1: जी
0: उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह
1: क्या बात।
0: पाए।

0: से है
1: क्या
0: ना।
1: बात है, बहुत
0: तो ये
1: सुंदर
0: गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी जी
0: जब सैम दोनू सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुल पची जिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, तो उसका एक गाना था,

0: दिल।
1: बहुत गहरा गाना
0: अब
1: था
0: ये
1: ये।
0: गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते,
1: जी
0: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है,
1: उसको भी रखना है।
0: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ? नहीं, मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है,
1: जी
0: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में मैं बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू। फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाज ऐसे ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं लोग? हाँ हाँ सर कर सकते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तुझे मैं छुपा लूं, ओ, तो ये मुर्गी रिमेन ये भी आ सकती है शायद। हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते
1: जी,
0: हैं,
1: साइकोलॉजिकल।
0: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो फिर अटक गए, तो अटक गए,
1: अटक गए
0: तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और
1: थे बिल्कुल।
0: काबिल हैं।
1: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का।
0: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है,
1: जी

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सही परांजपे की।
5: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। पेश है CA वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और घुई में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये पकनी, अंजनी, जजावल, खरसोता, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, गर्जंडी, सिंघरा, गर्सी, नवाडी, पेंडारी, मकनपुर, पोड़िपा, मसगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज धमनी में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अस्कला, दोरना, जरहाडी, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, महेशपुर, मानपुर, जगन्नाथपुर, झिरमिटी, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, ढोढ़ा गांव, चोरकी पानी, बैडाण, बरवाली, कंडराजा, रानीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये गड़ाकटा, पंडरीपानी, फरसकानी, चेटबा, मड़ियाझरिया, सोनाजोरी, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये सिंघी छाप, बोजिया, इंचपारा, बायसी, गेरसा, नागदरहा, पोटिया, आमगांव, आमापाली, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसरखेत और करतला में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मदनपुर, चचिया, धौरा भाटा, पतरापाली, बगधरी डांड, साजा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा, केंदई और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, कापानवापारा, परला, चोटिया, लमना, कोयलार गडरा, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझ

खगड़िया, पंडरीपानी, भटूरा कछार, अमलीडीह, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तेंदुचुआ, हरदी, कौहा बहरा, छताल, बोरिद के वन

0: ये ताल दादर गुड़ागढ़ फुरफुंदी तेंदुचुआ हरदी कौहा बहरा छताल बोरिद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार ताराझर कुरवा पानी खोला पारा छिंदौला लूठा पारा फरसरा बोडा पाला जारन डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोठ।

सीए वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए पहला गीत। फिल्म का नाम है सर। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। गीत के बोल लिखे हैं कातल शफई ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सर का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे कातल शफई ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत, फिल्म है गुलाम। आवाज़ें कुमार शानू और अलका याग्निक की हैं, शब्द रचना समीर के हैं और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

और प्यार हो गया। लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और संगीतकार हैं नुसरत फ़तेह अली खां।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का। आवाजें अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास की हैं। बोल लिखे हैं मछरू ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आपने सुना चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। ईमेल करें, गीत सुने में लीजिए सुनिए पहला गीत अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने और धुन बनाई है आनंद मिलन ने। फिल्म है संगीत। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांश और खेमू ध्रुव, जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा अनस और रेहान, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन वर्मा, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, हांसी से राजू मिगलानी, बबिता, सुभाष, योगी और डब्बू बब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, बेगरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और सौर्य नामदेव, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा, नवाज चाहत और सादिया, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभीजे, राधिका, अनिष्का और तन्मय, नरगोड़ा से कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्तान, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजल मलिक, गोगांव से शादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकामा खत्री, मोहम्मद अलतमाश खत्री और रमेश गौड़, रिंगनी से दिनेश वर्मा, अरुण वर्मा, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली क्षत्रिय, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, नूर महल

सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया साहिन नाज और नाजिया नूर नाज। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं फिल्म संगीत का ये गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
7: आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में।

ये सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है कयामत से कयामत तक। आवाज़ उदित नारायण की है। गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने और धुन बनाई है आनंद मिलन ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, चिरिमिरी कुर्सिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, राम नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, अकलतरा से दिलीप चंदन, चौराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, बटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़िया, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, जगदीप विरिंदर, कुलदीप सीमू, एकमन दमन और अभिजोत, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जघेल, मोरस अनिल, अजीत आयुष जघेल और नंदनी जघेल, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, नैला बटसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद तिवारी, तंगौरी SAS नगर मोहाली से गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसबीर कौर, महीक प्रीत कौर और सहज प्रीत कौर, रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बिल्लू निषाद, तरुण और शनिका श्रीनजा, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रत्नामाला आरती और कुमकुम गुड़िया, महाराष्ट्र से सोपान तायड़े और विजया तायड़े, जीगांव विदर्भ से वसंत राव भोजने और PS नारकर, मोहल्ला पटियाला से मुकेश बित्ता और नीलम बित्ता, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मन्ना, यवतमाल से राहुल मनवर, सलरा विशाल, चेतना रोशनी मनवर और प्रियांशी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, बैठना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद और राजेश वर्मा, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण योगिता और पार्थ, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार और हैप्पी राय, जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया, नांदेड़ एकताल महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू और योगेश और राहुल साहू। तो आइए सुनते हैं इन सब के द्वारा पसंद किया गया फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत।

मैं हूना। लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गजनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, भाटापारा से बचकर।

कमल मोतीलाल यादव, सियाराम चौराम वर्मा, सूरज पारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलेकर, रत्नामाला आरती, कुमकुम और गुड़िया, कोलगांव जाफराबाद मराठावाड़ से सुधाकर राजे जाधव मुग्देश, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जय सचिव वाल्या, प्रथमेश देशमुख, सर्वदा प्रणाली हर्षिता और सानवी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार, बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गुंडानी। तो आइए सुनते हैं इन सबके द्वारा पसंद किया गया ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको हमारे आज और कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सबसे पहले हमारे आज के शेष कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनिएगा। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने, जिसका शेष भाग आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे। आज शाम 7:20 पर सुनिएगा ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ले हुआ है आर्थिक विकास। किसान वाणी आप सुनेंगे आज शाम 7:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा सूक्ष्म सिंचाई योजना। और श्री रघुराज सिंह गौतम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा बिलासपुर, जानकारी देंगे प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना पर। भेंट करता होंगे नंदू भैया। रजनीगंधा का आनंद लीजिएगा आज रात 8:15 पर। और विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आज 9:15 से रात 11 बजे तक। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष आकर्षण।

आइए अब आपको हमारे कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें। कल यानी रविवार सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खेती की बात सुनिएगा कल सुबह 6:30 पर। विषय होगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। वाचन स्वर होगा रूपेश कंवर का। रामचरित मानस गान का समय होगा कल सुबह 6:35 का और चिंतन का समय होगा 6:45 का। विषय होगा संभव और असंभव। वाचन स्वर होगा संज्ञा टंडन का। आज सुबह आप सुनेंगे कल सुबह 7:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ का समय होगा कल सुबह 7:30 का, जिसमें आप सुनेंगे सोशल मीडिया का हमारे आहार पर प्रभाव पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह से सुप्रिया भारतीयन की बातचीत। प्रायोजक होंगे जेआई फाउंडेशन और लीवर एंड गेस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। कल 7:40 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे और माटी के स्वर सुनेंगे कल 8:30 पर। आओ बच्चों आप सुनेंगे कल 10 बजे, जिसमें आप सुनेंगे तूफानों से हमारी रक्षा कैसे करते हैं मैग्रोव। सीए वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5 बजे, हमर हाथी हमर कोट। चित्रपट संगीत सुनिएगा कल शाम 5:05 पर। ईमेल करें, गीत सुनने का समय होगा कल शाम 5:45 का, 6:20 का और कल शाम 7 बजे का। कल शाम 6:05 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। कल शाम 6:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कानून की बात, जिसमें बीएनएस नए कानून के संबंध में जानकारी देंगे श्रीमती अश्लीन कौर बग्गा गोरख, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़। कल शाम 7:20 पर सुनिएगा ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा प्राकृतिक खेती और हमर जीवन साथ। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम आप मन के गीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे कल रात 8 बजे, जिसमें आप सुनेंगे शंकर महादेवन के गीत। रजनीगंधा प्रस्तुत करेंगे कल रात 8:15 पर। तो ये थे हमारे आज और कल के कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

0: शाम के 6:20 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला सौंपी अपन इस्तीफा। प्रदेश में सहायक शिक्षक के खाली पद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी लेकर ही मन की बात। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला अपन इस्तीफा सौंप दीस। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान हकीन कि पाछू 10 दिन ले छात्र मन के विरोध प्रदर्शन के बाद बने हालात ले दुखी हौ और यह निजी प्रतिष्ठा के विषय नो है। उमन यहू कहिन कि जंतर मंतर और जम्मो देश भर में बने हालात के लाभ राष्ट्र विरोधी ताकत मन झन उठा सके और कोनो घलो छात्र के भविष्य कानूनी झंझट में झन उलझे एखर सेती उमन प्रधानमंत्री ला अपन इस्तीफा सौंपे के निर्णय लीन। उमन ये बेरा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन विश्वास और सरलक सहयोग पर आभार जतावत कहिन कि राष्ट्र सेवा जिंदगी के सर्वोच्च प्राथमिकता है और एखर प्रति सदा समर्पित रही। श्री प्रधान बतायन कि नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सरकार हा सीबीआई ला जांच सौंपीस और परीक्षा ला रद्द कर दीस। सरकार हा पुनर्परीक्षा के नवा तिथि के घलो घोषणा करीस और यह बछर ले ये परीक्षा ला कंप्यूटर आधारित करे के निर्णय ले गए है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 जन अधिकारी मन ला बर्खास्त कर देगीस। मिले जानकारी ले कुछ एक अधिकारी मन के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्यवाही घलो करे जाही। यह परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के दिशा में बड़का कदम है। संगे संग पेपर लीक के मामला ऊपर होवत विवाद के सेती एजेंसी में करे जवैया बड़का बदलाव के हिस्सा घलो आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पेपर लीक मामला में सख्त कानून लाने के गोट कहत जारी करे गए अपन वीडियो संदेश ले मिले प्रतिक्रिया और सुझाव के सेती देश के युवा मन ला धन्यवाद देन है। श्री मोदी हा युवा मन के जबर समर्थन पर उनकर आभार घलो जतैन। बता दन कि प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश ला अब तक 30 करोड़ 30 लाख ले ज्यादा घाव देखे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा के सेती सरलक 6 दिन ले बंद वैष्णो देवी के यात्रा आज ले फिर शुरू होइस। अब ये रद्दला तीर्थयात्री मन पर सुरक्षित घोषित कर दे गए है। उन्हें तीर्थयात्री मन ला श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसी मन के निर्देश के पालन करे के सलाह दे गए है। प्रदेश में सहायक शिक्षक के खाली पद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल हा भर्ती परीक्षा पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए है जेमा 24 जुलाई ले 21 अगस्त तक आवेदन करे जा सकते। लिखित परीक्षा के संभावित तिथि 11 अक्टूबर तय करे गए है। संगे संग प्रदेश भर के 16 जिला में परीक्षा केंद्र बनाए जाही। ये भर्ती पर ज्यादा जानकारी कर्मचारी चयन मंडल के आधिकारिक वेबसाइट में देख सकत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात करही। मासिक रेडियो कार्यक्रम के 136वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगन मन ले अपन विचार साझा करही। ये कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के जम्मू नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप में करे जाही। एकर सोझी प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल में घलो होही। हिंदी प्रसारण के तुरते बाद आकाशवाणी हा क्षेत्रीय भाषा में घलो ये कार्यक्रम के प्रसारण करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़थन बाचे समाचार कोती। अभी मिले जानकारी के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी CJP हा आज अपन आंदोलन खत्म कर दीस। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के संग CJP प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष

घोषणा कहा। पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दीन सौरभ दास हकीन की जंतर मंतर में मौजूद जम्मू प्रदर्शनकारी मन अब अपन घर लौटे। वे आशुतोष राका बतें कि पाछू कुछ एक दिन में केंद्र सरकार ले तीन घाव गोट बात हुई। उमन कहीन कि हमार तीनों मांग ला मान ले गए है। एमा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सबो केस वापस और नीट पीड़ित ला 1 करोड़ रुपया मुआवजा शामिल है। प्रदेश में पहली घाव महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान के आयोजन 30 जुलाई के करे जाही। एक पेड़ माँ के नाम अभियान ले प्रेरित ये अभियान के उद्देश्य मातृशक्ति ला पर्यावरण संरक्षण ले जोड़ना है। बालोद जिला में रखे गए ये बड़का पौधारोपण कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना ले लाभान्वित माइलोगन मन शामिल हो। नारायणपुर जिला में ओरछा थाना इलाका के पंदगुंडा करसेनार के जंगल ले भारी मात्रा में माओवादी मन के लुकाए गए विस्फोटक जिनिस ला तलाशी अभियान के बेरा बरामद करेगी। उन्हें बीजापुर जिला के पीडिया मुतवंडी इलाका के हिरमागुंडा गांव के जंगल ले घलो सुरक्षा बल मन अब्बड़ अकन विस्फोटक जिनिस बरामद करीन। एमा आईईडी कॉर्डेक्स वायर डेटोनेटर गन पाउडर संचार उपकरण और रेडियो सेट के संग आने आने जिनिस शामिल है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने बड़का कार्रवाई करे है। एक ठन कार ले करीबन 38 किलो गांजा के संग तस्कर गिरफ्तार करी और जोन बिहार के कैमूर के रहैया बताएगी। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा में पुलिस ने आईएसआई स्लीपर सेल के एक सदस्य ला गिरफ्तार करे है। आरोपी ला 5 दिन की हिरासत में लेके पूछताछ करे के बाद जेल भेज देगी। पुलिस अधीक्षक विजय पांडे है बतायन कि पंजाब के रहैया आरोपी ला 20 जून के गिरफ्तार करे गे रहिस। एकर खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही करे जावत है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार के काली संझा एक ठन कार्यक्रम में तबियत बिगड़े के बाद अस्पताल में इलाज के बेरा निधन हो गए। मिले जानकारी ले प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार काली संझा विश्वविद्यालय में एक ठन आयोजित कार्यक्रम में गीत प्रस्तुत करत रही। तभी उनकर तबियत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जावत बेरा अस्पताल ले जाएगी फिर उमर ला नहीं बचाया जा सकी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर ढाले प्रस्तुत कार्यक्रम जिला के चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एक के संग्रह रिले करही और ये दारी के अंक मा बीजापुर जिला के गतिविधि के जानकारी दे जाही। और अब थोरकुन समाचार सार मा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल डहर ले आयोजित प्रयोगशाला परिचारक के खाली पद पर भर्ती परीक्षा के आयोजन काली 26 जुलाई के करे जाही। परीक्षा भिन्न 10 बजे ले मझनिया 12:15 बजे तक होगी। दुर्ग जिला के पुलगांव थाना इलाका के गनियारी पिपरछड़ी गांव में घटना होगी। शिवनाथ नदी में नहावत बेरा 2 जन युवक बोहागिन जेमा 1 जन के शव बरामद दूसर के तलाश करे जावत थे। बलौदा बाजार जिला के सकरी गांव के तीर एक ठन यात्री बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई जेमा 16 जन यात्री घायल हुई जेमा 3 जन के हालत गंभीर बताया जावत थे। महादेव सट्टा एप और मनी लॉन्ड्रिंग मामला में गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्गला ईडी 10 दिन के हिरासत के बाद आज रायपुर के विशेष अदालत में पेश करी जिहा ले ओला 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दे गए है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया थाना पुलिस देवगांव के तीर भारी मात्रा में कोडीन सिरप के संग 3 जन आरोपी ला गिरफ्तार करी। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला सौंपिन अपन इस्तीफा। प्रदेश में सहायक शिक्षक के खाली पद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली बिहनिया 11 बजे आकाशवाणी लेकर ही मन की बात। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें। ईमेल करें गीत सुनें में लीजिए सुनिए फिल्म मोहब्बते का ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है जतिन ललित ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है। बाग बहारा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, बडमेरा राज से बबलेश्वर पवार, डैनी और मनीष पवार, लांघन पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणि साहिल, भारती बघेल, टिकरीपारा से जगेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन, लचनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, अनुराग मोहन, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया आयान, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गार्वी और हिमाक्ष, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, टोरावाला जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी, ममना हमीरपुर बुलंद खंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांश विश्वकर्मा, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, गांव जाखोद से शंभुलाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक, पूजा खटक, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर और चीनू आसमा, छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, आरजू जूही इकबाल, इमरान और अहमद, धुरवा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देवी कुमार, नवीन और युवराज साहू, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी और शरद डोडवानी, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा, खंडवा मध्य प्रदेश से संजय, ममता और किट्टू, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद, भाटापारा से सोहनलाल जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, वैदेही जोशी और हंसिका जोशी का। ये सुनते हैं इन सबके द्वारा पसंद किया गया फिल्म मोहब्बतें का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने में, सुनेंगे और भी गीतों को। उससे पहले एक सूचना, श्रोताओं फोन करें। गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 सोमवार प्रातः 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनका नाम है आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा, क्रिएचर। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-2665592। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। ईमेल करें गीत सुने में। लीजिए सुनिए अगला गीत, लकी अली और राम्या के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म है कहो ना प्यार है। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है बिलाईगढ़ से खीकरांग देवांगन, रेनू रजनी प्रियंका देवांगन, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और आलोकिक चंसौलिया, पंजाब से विनोद यामल, सीमा लक्षिता, याशिका और विधा देवी, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत, मेहर नगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवारकर, सरिता प्रिंस और एकांश गवारकर, बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल, प्रियांश और भाव्या देवांगन, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई यामनी और उमा तिवारी, नरवेला महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला और विशाल नवारकर, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल मेहरा, कोनिका मेहरा, तेलंगाना से मोहम्मद बहरुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन,

से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूर्णा, राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जगेंद्र गजेंद्र जयंती, ममता मनीष, मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरी मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम। तो आइए सुनते हैं इन सबके द्वारा पसंद किया गया फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत।

घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे ईमेल करें गीत सुने, जिसका शेष भाग आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। रायपुर केंद्र
2: है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की बातचीत की। बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक रोकने के उपायों सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्राथमिकी पहले ही दर्ज की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा और उसकी प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आत्महत्या करने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और नियमों के अनुसार

0: उनके परिजनों को अधिकतम संभव मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि संगठन ने सद्भावना के आधार पर आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सहमत शर्तों को निर्धारित समय सीमा में लागू किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। नेशनल परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से 21 अगस्त तक किए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर तय की गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। अधिकारियों द्वारा मौसम की स्थिति की समीक्षा के बाद तीर्थ यात्रा फिर शुरू कर दी गई है। इस मार्ग को तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त किया गया था। तीर्थ यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में पहली बार महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान का आयोजन 30 जुलाई को किया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य मातृशक्ति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। बालोद जिले में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं के साथ साथ अन्य इच्छुक महिलाओं को निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर पौधे उपलब्ध करा रही हैं ताकि प्रत्येक महिला 30 जुलाई को अपने घर, आंगनबाड़ी अथवा उपयुक्त स्थान पर पौधरोपण कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर जिले में ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम पदगुंडा करसिनार में जंगल से सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की है। वहीं बीजापुर जिले के पीडिया और मुतवंडी क्षेत्र के हिरमगुंडा गांव के जंगल में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए 6 डंप बरामद किए हैं। इनमें IED, कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, गन पाउडर, संचार उपकरण, रेडियो सेट, इलेक्ट्रिक सहित अन्य सामग्री शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW की टीम ने धमतरी, बिलासपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 7 ठिकानों पर

छापा मारकर कई दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए हैं। इस दौरान कुछ दवा व्यापारियों से पूछताछ की गई है। ये घोटाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुए जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में पुलिस ने आईएसआई स्लीपर सेल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने बताया कि आरोपी पंजाब का रहने वाला है और उसे 20 जून को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार के सीक्रेट चैम्बर से करीब 38 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में बिहार के कैमूर निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा तस्करी में उपयोग की गई कार और एक मोबाइल फोन समेत 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार की कल शाम एक कार्यक्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार कल शाम विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गीत प्रस्तुत कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बीजापुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन कल 26 जुलाई को किया जाएगा। परीक्षा के लिए रायपुर जिले में 52 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक होगी। महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्ग को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 10 दिन की हिरासत के बाद आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिया गया है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियारी पीपरछेड़ स्थित शिवनाथ नदी में नहाने के दौरान 2 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। इनमें से 1 युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सकरी के पास रायपुर से बलौदाबाजार जा रही यात्री बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने देवगांव के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 103 नग कोडीन सिरप सहित 1 मोटरसाइकिल, 1 कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को दिया जाता है। वहीं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों और संस्थाओं से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। प्रदेश में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुनने में। लीजिए सुनिए अगला गीत, फिल्म है बेताब। आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की हैं।

शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है लूत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श और अतिका, सालार पहलगांव कश्मीर से परिजाद मिर्जादीन, राया रोड राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मण देवी, योगेश, संध्या, कीर्तिक, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, पैठन से सुरेश जाघव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल और सिया जाघव, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज नावेद हसन, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी, बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, जमनिया से एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल, गुमला झारखंड से नजमुल हौदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप और किरण ठाकुर, खरकेड़ा चौपसी से गोलू कांगड़े, सागर सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोत और तमन्ना कांगड़ा, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश और राजेश संघई, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत भारत और कमल सहानी, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी नीरज, शुभम और सौरव रावत, पंढर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरात तबस्सुम, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, खमरिया से सबिता खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बालौद से देवशंकर तामोरिया, अजय देवी, तुषार देवी, डॉली, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया और अल कबीर, मलौद पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, नवीन मैंडी, सौरव और सानिया शर्मा, नाभा पटियाला पंजाब से पी सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमारी, चंद्रकांता, शशिकांत प्रजापति, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, राजनंदगांव से बबलू साहू, जमुनिया देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, चेनहट्टी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बाड़खे, नान हनुमान बाड़खे और उत्तम जामदड़े। तो आइए सुनते हैं इन सबके द्वारा पसंद किया गया ये गीत।

प्रवीण पुजारी, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पांजू, योगिता श्रीवास, रचन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सीता कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनिनी, ऋतिका और बलवीर सिंह, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अंकिता येले, कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदर और पांडुरंगा कुम्भार, बुल्ढाना वाशिंगी से महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान छीपा और पूजा परिहार, मंडी डबावली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्ध पटेल, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, गुजरात से प्रवीण सोनी और जगदीश जोहरी, यवतमाल से जयराम सिंगरगढ़, दिशांत कुमार और अर्पिता, राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, समीम इरमान खान, इरफान और जीशान खान, सहारनपुर से जॉन डिकॉस्टा, रोजी पर्ल और विलियम डिकॉस्टा, नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भागश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, बटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, वीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, बाटापारा से अनीता साहू, वीना, नेहा, मोनिश साहू, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, नागपुर से प्रकाश रभाड़े, भारती जानवी, वैष्णवी और हर्षल, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुशनसीब अब्दुल हक और जियाउल हक डाबर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत, अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है दिलीप सेन समीर सेन ने। फिल्म है इतिहास। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गोंडा ने, कुराली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीता, सोनम वर्मा, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पू भाटिया, लोरमी चेचरी से कमलकांत मारावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मारावी, सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, अंशु सोनाली नारंग, राजकोट से जगदीश गुजराती।

ईमेल करें गीत सुने के आखिरी गीत में आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को फिल्म दे माफ़ कीजिएगा, ईमेल करें गीत सुने में आखिरी गीत आपने सुना फिल्म इतिहास से अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में, बोल समीर के थे और संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का था, और इसी गीत के साथ ईमेल करें गीत सुने से सुजाता राय को आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे ईमेल करें गीत सुने, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम में हमारे रेडियो सुनैया मीत मितान और बहनी मन के स्वागत है। झुकाओ अपन कजरी बहनी के, मैं आप प्रीत भरे राम राम जय जोहार। का हाल चाल भाई हमार संगवारी मन के? अभी तो भाई झमाझम बरसात के आनंद सब लेवत हन। संगी हुआ अषाढ़ के आखिरी आगे और सावन हर दरवाजा म खड़े है, मुहटा म देखा बस दो कदम बाँचे है आए म। ए मौसम म रिमझिम बरसत पानी और हरियर होवत खेत खार और माटी के भीनी भीनी खुशबू और किसान के चेहरा म झलकत मुस्कान। ये मौसम सिर्फ धरती ला नहीं मन ला घलो ताजा करते। जैसे बरसात के हर बूंद धरती ला नवा जीवन देते, वैसन है छोटे छोटे प्रयास मेहनत और एकजुटता परिवार और समाज के जिंदगी में भी खुशहाली के नवा रंग भर देते। आज ऐसन हेच एक पहल के बात करबो जेन हर हजारों गांव के महिला मन के सपना ला पंख दे है और हाथ ला काम दे है और संगे संग परिवार ला आर्थिक रूप से मजबूत बनाए बर काय जाना था। ये पहल के नाम है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। त संगी हुआ एकदम चेत करके सुने भर है आज के कार्यक्रम ला, काबर के एमा हम लाए हैं जानकारी के खजाना और ये खजाना के विषय है राष्ट्रीय आजीविका मिशन ले हुआ थे आर्थिक विकास। त संगी हुआ ए हर ऐसनहा योजना है जे हर गांव गांव के महिला मन के जिंदगी में नवा अंजोर ला है। एक ऐसनहा अभियान जे हजारों परिवार ला आत्मनिर्भर बनाए बर रद्दा खोले से। ए योजना के माध्यम ले महिला मन स्व सहायता समूह बना के बचत शुरू करके रोजगार व्यवसाय और आर्थिक विकास के कहानी लिखा थे। अतका जानकारी के खजाना भरे है आज के कार्यक्रम के हमर मोटरी माँ और ओला धीरे धीरे अपन गोठ बात के क्रम ला जारी रखबो और मोटरी ला छोड़बो, पर पहली सुनी संदेशाला।
1: जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: संगी हो संदेशा सुने के पहली बात करत रहे हैं आज के हमर बेरा के गोट के विषय में। तब बेरा के गोट के विषय हवे राष्ट्रीय आजीविका मिशन ले हुआ थे आर्थिक विकास। तो देखा भाई का कहे गए हमर सियान मन के द्वारा, मेहनत के माटी में सपना के बीज बोआओ। सियान मन कथें मेहनत के माटी में सपना के बीज बोआओ और हिम्मत के पानी देवाओ और फिर देखाओ कतका सुघर सुख के फसल लहलहाथे, तब फिर वो सुख के फसल ला काटाओ। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के मुख्य उद्देश्य भी यही कथे, काबर के एकर मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवार ला खास करके ग्रामीण महिला मन ला एकजुट करना, बचत के आदत डालना, बैंक से जोड़ना, प्रशिक्षण देना और रोजगार के अवसर देना। पहली गांव के बहुतेच महिला बहुते का सबे महिला मन घर के काम बूता तक ही सीमित रहें। आज वही महिला मन अपन समूह बना के सिलाई बुनाई करत हैं, कोनो बकरी पालन करत हैं, कोनो मुर्गी पालन करत हैं और गोबर ले जैविक खाद मशरूम उत्पादन ये सब कर बूता तो करते हैं। संगे संग साग भाजी के खेती और कोनो मसाला बनाए के उद्योग, अगरबत्ती बनाना, दोना पत्तल बनाना और दूसर ऐसा बहुत अकन छोटे छोटे

व्यवसाय करके अपन आमदनी ला बढ़ावा थे। तभे तो कथे बूंद बूंद मा बचत हो ही, का कहे हैं बूंद बूंद मा बचत हो ही, घड़ा एक दिन भर जाही। अब मेहनत के संग जुड़ जावा संगवारी हुआ, सुख समृद्धि तभे घर आही। तसंगी हो स्व सहायता समूह, ये जो हमर बहिनी मन के रथे ना, ओकर असली ताकत का ये जाना था? अरे नहीं, वो पैसा भर थोड़े असली ताकत होते, पैसा भर नहीं भाई, बल्कि एकर असली ताकत है एक दूसर के ऊपर भरोसा, एकता और सहयोग, ये हर होते असली ताकत। समूह के महिला मन हर महीना थोड़ थोड़ बचत करते, और जब कोनो बहनी मतलब खेती बर, इलाज बर या पढ़ाई करे बर जरूरत पड़ते ना पैसा के, तो फिर वही पैसा ला दे करके ओकर जो जरूरत रहते ओला पूरा करते, और यही सहयोग एक परिवार ला मजबूत बनाते। अब मजबूत परिवार ले मजबूत समाज बनते। आज राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम ले महिला मल्ला अलग अलग काम के प्रशिक्षण घलो मिला थे। कोनो सिलाई सीखा थे, कोनो डेयरी के व्यवसाय, कोनो बकरी पालन, तो कोनो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मशीन लगावा थे। दार दरे की मशीन, आटा चक्की के मशीन, मसाला पीसे के मशीन, ये सब के बूता भी करा थे। आओ तो आओ डिजिटल लेन देन के माध्यम से भी अपन जानकारी ला अपन व्यापार ला बढ़ावा थे। तो एक बार तो कहे गए, हाथ मा काम मन मा आस, हाथ मा काम मन मा आस, और यही चाहे विकास के विश्वास। संग चलबो संग मा बढ़बो, खुशहाली के दिया सब मिल के बारबो। तसंगी हो आज गांव के समूह मन अपन बनाए सामान ला हाट बाजार में बेचत हैं, कई जगह ऑनलाइन के माध्यम ले घलो सामान बिकत है। त समूह के महिला मन बैंक ले ऋण लेके समय में किस्त तक चुकावत हैं। एखर ले का होते ना, बैंक के भरोसा बढ़ते, और जरूरत पड़े मा फिर आर्थिक सहायता उमल दोबारा मिल जाते। तो संगी हो एक समय रहे जब महिला मन अपन बात कहे में कतका संकोच करें, एक शब्द मुँह ले नहीं निकलत रहे। आज वही महिला बहनी मन बैठक चलावा थे, बैंक जावा थे, सरकारी योजना के जानकारी देवा थे, और सरकारी योजना के लाभ भी लेवा थे, और दूसर महिला मन भी बूता करे बर प्रेरित करके घर के बाहर निकाला थे। तो आवा कहीं आत्मविश्वास के जोत जलावाओ, और डर के अंधियार ला भगावाओ। आत्मविश्वास के जोत जलावाओ, डर के अंधियार ला भगावाओ, और मेहनत के संग जे चलही फिर से सफलता ओकर संग में रही। ता संगी हो आर्थिक विकास के का मतलब हवे बतावा, तो दिन भर तो कहत हन आर्थिक विकास करा, आर्थिक विकास करा कहके। अरे आर्थिक विकास के मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, आर्थिक विकास के मतलब है बच्चा मल्ला बढ़िया पढ़ाई करवाना, परिवार के अच्छा इलाज करना, पौष्टिक आहार खाना, पौष्टिक भोजन रखना, साफ सुथरा स्वच्छ घर, और सम्मान के जिंदगी जीना है। तो याद रखा संगी हुआ, जब महिला आत्मनिर्भर बनी, जब महिला आत्मनिर्भर बनते तब फिर पूरा परिवार मजबूत बनते। राष्ट्रीय आजीविका मिशन आज हजारों महिला मन पर नया उम्मीद बन के सामने आए है। त अगर आपके गांव में स्व सहायता समूह है तो जरूर जुड़ाओ, और बचत करो, प्रशिक्षण लेवाओ, रोजगार शुरू कराओ, और अपन सपना है ओला सच कराओ। कथे छोटे छोटे कदम बढ़ाहा त सफलता खुदे चल के आही, और मेहनत के जे मान करही ओ हर जीवन भर मुस्काही। तो संगी हो आज जरूरत है हमला अपन गांव के हर महिला मल्ला आत्मनिर्भर बने बर प्रेरित करीन। याद रखा, जेन गांव के महिला मजबूत होही ओ गांव के विकास तेजी ले होही। त राष्ट्रीय आजीविका मिशन हम सब के जिंदगी में बदलाव लाए के एक मजबूत माध्यम बन गए। तसंगी हो देखा कार्यक्रम में हम जाने कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन कैसे महिला मल्ला रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता देके आर्थिक विकास के नवा रद्दा खोला थे। वो आखिरी में यही कही, वो गांव बढ़ी देश बढ़ी जब हर घर मुस्काही, और कहत कहत देखा मुस्कात मुस्कात चली किसानवाणी में, काबर के बेरा हर हो गए और दीदी हर इशारा करत है।

किसान वाणी कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत हमार मयारुक रेडियो श्रोता संगवारी मन के संगी हुआ। हम कार्यक्रम के माध्यम ले रोज आपन बर एक ऐसा जानकारी लाथन जिला सुन के हमार श्रोता संगवारी मन ला लाभ मिला और वो योजना के पूरा जानकारी जाना था। अही क्रम में आज हम बात करबो एक ऐसा योजना के जिन किसान भाई बहनी मन पर वरदान साबित हुआ थे। ये योजना के नाम है सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो संगवारी हो, आज के समय में पानी के बचत करना बहुत जरूरी है। बरसात के पानी कम हुआ थे, भूजल के स्तर घलो नीचे जावा थे और ऐसा स्थिति में खेत ला बचाए रखे बर सूक्ष्म सिंचाई एक बढ़िया उपाय आए। तो सूक्ष्म सिंचाई का है यूल बता दी। तो जौन ऐसी सूक्ष्म सिंचाई के मतलब होते फसल के जड़ तक जरूरत के मुताबिक पानी पहुँचाना। एमा मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई ये सब पद्धति आते और एकर से पानी के बर्बादी नहीं हुआ और पानी हर के बचत भी होते। तो कहे जाए थे बूंद बूंद पानी के रखा बनाओ किसान है ना, और कम पानी में भर जाही खेत मुस्काही धान और किसान दोनों मुस्काही। तो संगवारी हो सूक्ष्म सिंचाई अपना कई किस्म के फायदा मिलते। कैसे, पहली बात होते पानी के बचत होते। परंपरागत सिंचाई के तुलना में 30-60% तक पानी बचाए जा सकत है। फसल में जरूरत के मुताबिक पानी मिलते, एकर से पौधा स्वस्थ रहते और उपज में भी तको बढ़ोतरी होते और खेत में खरपतवार कम उगते। काबर के पूरा खेत नहीं भींजाए, सिर्फ पौधा के जड़ में पानी पहुँचते। और आगे के फायदा बताबो, किसान के मेहनत समय बिजली तीनों के बचत होते ये सूक्ष्म सिंचाई योजना में। तो संगी हो, आज के कार्यक्रम में हमन तो जाने सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में। अब पारी आ गए एक सुघर असन गीत सुने के। आवाज सुनिन गंगाबाई और संगवारी मन के स्वर में ये गीत ना।

0: देखा संगवारी हुआ, आषाढ़ के महीना में मस्त ओरियम पानी गिरा थे, वरा ररा रात के तता करके सुख घर गीत लस्वर धेरी ने गंगा बाई उखड़ संगवारी मन। संगी हुआ हम सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में बात चर्चा करत रहन गीत सुने के पहली, तक किसान मनला ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम लगाए बर आर्थिक सहायता देहे बर छोटे और सीमांत किसान मनला भी ज़्यादा अनुदान मिलते सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, जबकि दूसर किसान मनला घलो योजना ला के लाभ ले सकत हैं। अलग अलग समय में योजना के नियम और अनुदान के दर बदलत रहते, तेकर से अपन विकास खंड के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग ले ताजा जानकारी लेकर के ए योजना के लाभ लेवत रहो। और ये योजना खास करके सब्जी, फलदार बगीचा, गन्ना, फूल, मसाला और कई नगदी फसल पर बहुत लाभदायक माने जाते। संगी हुआ धान के अलावा दूसर फसल में घलो ये पद्धति अपनाए ले अच्छा परिणाम मिला थे। तभे तो कथे पानी बचाबो, खेती संवारबो और यही छे समय के बाद सूक्ष्म सिंचाई अपनाबो संगी खुशहाली रही दिन और रात। तो संगवारी हुआ आज खेत में नया तकनीक अपनाए के समय आगे है, जेन किसान पानी के सही उपयोग कर ही वही किसान हा भविष्य ला मजबूत बनाही। तो पानी हा प्रकृति के अमूल्य धन है, इला बचाना हम सबके जिम्मेदारी हवे। आप मन घलो सूक्ष्म सिंचाई योजना के लाभ लेवा और अपन नजदीकी के ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, केंद्र जनपद पंचायत कार्यालय में संपर्क करके अधिक से अधिक जानकारी लेवा और एकर लाभ भी उठावा और अपन देसी खेती ला अपनावा। तो जतका पानी बचाबो उतके भविष्य संवारबो, और कम पानी ज्यादा उपज, और यही छे सफल खेती के पहचान। तो सफल खेती करना है तो हर योजना के जानकारी लेहे बर रोज नियम से रेडियो भी सुनना है। अब पारी आ गए आज के कार्यक्रम में आगु कति भेंट बढ़े के, पारी है भेंट वार्ता के। तो आज भेंट वार्ता के विषय में पीएम फसल बीमा योजना एकर बारे में जानकारी लेके आए हैं। ए विषय के विशेषज्ञ हवें श्री रघुराज सिंह गौतम जी, जो उन्हें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा। अब एकर से सुखर गोट बात हमार नंदू भैया करत है, तो आवाज सुनी आज के भेंट वार्ता।
1: राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमन आप मन बर आनी बानी के जानकारी लेके आथन, जेकर लाभ हमर किसान भाई मनला हमन ला बढ़िया ले मिलत रही थे। ऐसने आज जौन जानकारी हमन आप मन बर लेके आए हवन, ओकर विषय हवे के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हवे। और सुघर जानकारी बताते पहुना मन श्रीमान रघुराज सिंह गौतम जी मन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो आप मन बिल्हा मा जिला बिलासपुर पड़ते। तो सर जी मन से हमन जुड़ा थन, जय जोहार सर जी।
2: जय जोहार सब किसान भाई मन, भी जय जोहार।
1: गोठ बात ला हमन शुरू करबो सर जी, और जानबो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जौन है ओहर का होते, किसान मन एला कैसे जाने, ये फसल बीमा योजना के लाभ कैसे लेवे, इहुला बताओ सर।
2: किसान भाई मल्ला, मैं बताना चाहूँ कि जो फसल बीमा योजना है ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए एक योजना है, जरा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से जिला बिलासपुर में कंपनी जो है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है करते। ये बीमा के जो लाभ है उठाए बर किसान मन जो जो फसल उमन के अधिसूचित क्षेत्र जिला कथे, तो उमन के गाँव अगर वो अधिसूचित क्षेत्र में आते
1: जी,
2: वो फसल के बीमा उमन के गाँव में हो ही
1: जी।
2: सामान्य रूप से देखे जाए तो हमारे यहाँ धान के लिए सभी क्षेत्र अधिसूचित है, जिसको जबका गांव है सब अधिसूचित है, चाहे वो सिंचित धान हो चाहे असिंचित धान हो
1: जी।
2: इसके अलावा जो फसल है धान के अलावा उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का और राहेर, रागी और सोयाबीन
1: जी,
2: तो उनके बीमा होते हैं
1: जी। बढ़िया जानकारी बताए हो सर जी। आओ जानबो हमन फसल बीमा योजना जो है ये हर काबर जरूरी होते, इहुला किसान भाई ला बताओ सर।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके कि फसल बीमा हमन काबर करेंगे। अधिकतर किसान मन के दिमाग में ये भ्रम रहते

0: फसल बीमा कराना मतलब पैसा मिलना।
1: जी
0: किसान भाई मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा कराना मतलब एक तरह से सुरक्षा के गारंटी है। आप मन जाना था कि खेती जो है ऊपर वाला के इमा बहुत बड़े रोल रहते कहना चाहिए, कभी भी मौसम कुछ भी हो जाते हैं। और आजकल के जो मौसम है वह बिल्कुल ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकन कि कब बदल जाएगी, कैसे हो जाएगी, कब पानी ज्यादा गिर जाएगी, कब सूखा पड़ जाएगी, कब ओला गिर जाएगी, ऐसे पता नहीं चला है। ओला सब ध्यान में रखते हुए खेती के नुकसान से बचे बर हर किसान ला बीमा कराना चाहिए। काबर कि एमा केवल और केवल 2% प्रीमियम राशि लगते, जतका के बीमा होते ओकर मात्र 2% प्रीमियम ला पटाएल पड़ते, ओकर एवज में बीमा हो जाते। जैसे हम अपन जान के फिकर बर बीमा कराथन उसमें अपन फसल के लिए भी बीमा कराना बहुत जरूरी है।
1: बढ़िया बढ़िया जानकारी बताते सर जी मन। आओ हमन आगू जानबो के जौन फसल बीमा योजना होते तो एमा कौन कौन फसल हर एकर अंतर्गत आते, किसान भाई मन ला बताओ सर।
0: हाँ जैसे मैं आप ला बतायन कि पहली भी कि धान हमन के जो मुख्य फसल है खरीफ मा, धान जो सिंचित धान है जेमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तेहू ला, जेमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है वह धान ला। ओकर अलावा उड़ीद लगाथन हमन, मूंग लगाथन, मूंगफली, कोदो कुटकी, जोंदरी, धान के अलावा फिर राहेर और रागी और सोयाबीन।
1: अच्छा
0: फसल मन के बीमा आपन करा सका था, उमर के अलग अलग प्रीमियम रेट है।
1: बढ़िया जानकारी बताया हो सर। आओ हमन जानबो किसान भाई मन फसल बीमा योजना के फायदा पाना चाहत हवे तो एकर बर जोन कागजात है आवेदन है ओला कौन प्रक्रिया ले गुजरे बर पड़ी इहुल बताओ सर।
0: हाँ देखा एमा जरूरी जो कागज है तेमा रेडी किसान होते, दो प्रकार के किसान है हमारे यहाँ। एक किसान ऐसे है जमन अपन सहकारी समिति से लेन देन करते हैं
1: जी,
0: जमन वहाँ से खातू उठाते हैं, बीज उठाते हैं, जमन ला हमारे रेडी किसान कथन उन्होंने समिति के सदस्य रहते हैं, है ना, धानो बेचते हैं वहाँ। और दूसरे किसान होते हैं जमन अरेडी किसान है, यानी उमन समिति से लेन देन नहीं करे
1: जी,
0: है ना, तो वो उमन किसान है। लेकिन
1: जी
0: आजकल का है आप मन किसान भाई मतलब सबने पता है कि हमारे यहाँ चलत है किसान पंजीयन एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक में पंजीयन सब किसान के होना चाहिए, चाहे वो अरेडी किसान है चाहे नहीं है, ये सबसे पहला जरूरत है कागज में। एग्रीस्टैक पंजीयन जरूर करा ले अपन, किसान कार्ड बनवा ले किसान नंबर मिल जाएगी मतलब। और जो रेडी किसान है जमन समिति से लेन देन करते हैं
1: जी,
0: एमन के बीमा समिति से अपने आप हो जाते हैं, मतलब कुछ करे की जरूरत नहीं है। उनके सब जो डिटेल रहते डाटा रहते वो समिति में रहते, तो ओमन के बीमा समिति के हो जाते ओमन के रकबा के हिसाब से। और ओमन के जो ऋण हुआ उसका पैसा होकर जो प्रीमियम रहते कट जाते, और अगर कोई नुकसान कल को होते तो पैसा ओमन के खाता में भी आ जाते। अब बात है जो मन अरिणी जो मन किसान मन लेन देन नहीं करे, ये मतलब जरूरी कागज है उनके, एकदम जो नवीनतम आधार कार्ड है तेला मतलब देना पड़ी है ना, लेके मतलब दिखाए बार लाना पड़ी, नवीनतम भूमि के प्रमाण पत्र B1 P2, बैंक के पासबुक के फोटो कापी जमा पहला पेज के जमा खाता नंबर IFSC कोड नाम पतक साफ साफ लिखे रहते तेकर कापी, फसल बुवाई के एक प्रमाण पत्र अथवा एक स्वप्रमाणित एक घोषणा पत्र रहते कि मैं यहाँ अतका जमीन में अतका एकड़ में ये वाला फसल लगाया हूँ। और एक चीज से किसान के आजकल वैध मोबाइल नंबर होकर मोबाइल नंबर जो रखा जो चालू है जो ओकर नाम से ओकर आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर है तो बहुत अच्छा है वो नंबर। सबसे आखिरी में जैसे जो बटाईदार या जो काश्तकार है जमन रेघा में लेते हैं DM लेते हैं कैन मांगन अगर करना चाहते हैं तो ओमन के लिए की फार्म आते ओला ओमन भर के दही, और लेकिन ओमन के एग्री स्टैक पंजीयन होना चाहिए किसान मन के, तो ओमन में वो जो फार्म रहते जेकर ओमन अधिया ले हैं तेकर रिकॉर्ड रहते मतलब जानकारी रहते ओमन के खुद के जानकारी रहते जिसे बाकी किसानों भरत है तो ओमन लोकर लाभ मिल जाते, ये कागज ओमन ला आवश्यक है
1: जी। बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। किसान भाई मन जौन हवे तो कौन कौन किसान भाई मन छोटे है कि बड़े हवे ओमन ये योजना के लाभ ले सकते इहुला बताओ सर।
0: हर प्रकार के किसान चाहे वो बड़े किसान हो चाहे मध्यम चाहे छोटे किसान, हर प्रकार के किसान है लाभ ले सकते है, कोई कर बंदिश नहीं है कि बड़े किसान है 40 एकड़ के किसान है तो अगर बीमा नहीं हुई ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान भाई चाहे छोटे हो चाहे बड़े
1: जी
0: सब के सब बीमा करा सकते हैं
1: जी।
0: हाँ
1: बढ़िया जानकारी बताया हवा हो। आओ जानबो हमन सर फसल हर खराब हो जाते तो ओमन जो बीमा के फायदा मिलते तो

0: ओकर बर का करे बर पड़थे?
1: देखा जैसे फसल खराब हो जाते ना तो तुरंत ओला नंबर एक टोल फ्री नंबर हवा है।
0: जी
1: टोल फ्री नंबर किसान भाई मन नोट कर सकते हैं 7065514447। एमा एमन टोल फ्री नंबर है, एमा व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। एक अलावा अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ला अपन पटवारी ला हम तुरंत खबर कर सकते हैं 72 घंटा के अंदर। जैसे नुकसान होते 72 घंटा के अंदर मैं खबर करना रहते। और नुकसान है यहाँ बहुत जरूरी है समझना कि जैसे मान लो मैं गांव यहाँ एक बीमा की इकाई है गांव, एक ग्राम होकर इकाई है। अब ग्राम इकाई के मतलब क्या होते कि अगर ग्राम पूरा गांव में अगर वो प्रकार के नुकसान हो गए 75% से ज्यादा वो नुकसान हो गए तो बीमा के उमा पात्रता बनते किसान मन के। जैसे कई किसान भाई मन कहते कि भाई मोरे भर खेत के नुकसान हो गए, कैसे जैसे नुकसान हो गए तो मोरे मैं बीजा बो रहे थे नहीं जामी तो ओकर लाभ नहीं मिला। लेकिन कोनो कारण से फसल नुकसान हो गए और पूरा गांव के 75% से ज्यादा हो गए नुकसान, चाहे तो कीड़ा की महामारी लग गए पूरा गांव के गांव चौपट हो गए तो मैं लाभ मिल जाते। एक अलावा ओकर आधार में जो प्राकृतिक आपदा आते तो ओकर कारण उपज में नुकसान होते तेकर आकलन हो जाते। जब फसल कटाई प्रयोग करते ना तो जो एवरेज उत्पादन आते उपज आते तेकर आधार पे वो तय होते कि कतका नुकसान होते कतका परसेंट वो हिसाब से बीमा फायदा मिलते। उसके बाद तीसरा है स्थानीय आपदा, जैसे मान लो करा गिर गए बढ़िया फसल कोटियाए खड़े है और हम सोचा था मस्त फसल हुई बढ़िया धान के बाली बन गए है और करा गिर गए अच्छा जम के मौसम बदली तो करा गिर के पटा गए पूरा खेत धान सूख गए खराब खत्म हो गए अपनी पाके धान है तो कर लाभ मिली। और बादल जैसे फट गए एकदम से अचानक पानी भयंकर गिर गए और ऊपर कारण पूरा बुहा गए एक तो ये। दूसरा आकाशीय बिजली के कारण जैसे अब खड़ी फसल सुखा गए धान बढ़िया पाक गए अब कटाई करे वाला हन लेकिन बादल पानी आई सा बिजली गिरी सा आगे लग गए जर के पूरा धान है तब होकर लाभ मिली। अब वो खेती कटे के बाद जैसे मान लो कि फसल कट गए फसल कटे के बाद आपके खेत में जैसे अब काट काट के रखे हैं आजकल तो बहुत ज्यादा हार्वेस्टर चलवा लेते हैं लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में अभी भी हाथ से काटते हैं और करपा रखे रहते हैं। करपा रखने के बाद फिर ओला उठा के दुहारते हैं और फिर मिसते हैं तो पोजना क्षेत्र में मान लो कटाई के 14 दिन के अंदर करपा मान लो रखे है और वो वहां करा गिर गए या तूफान में नुकसान हो गए या चक्रवाती बारिश बरसात हो गए मौसम बरसात में बुड़ गए करपा
0: जी
1: और सब पाखड़ हो गए खराब हो गए तो ओकर लाभ मिलते।
0: जी बढ़िया बढ़िया जानकारी बताते सर जी मन। संगवारी हो हमन आज की गोठ बात के विषय लाने हमन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और हमर बीच में पहुना मन हवाए रघुराज सिंह गौतम जी मन आप मन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो बिल्हा मा और गोठ बात ला हमन आगू बढ़ाथन। सर जी हमन जानबो के किसान भाई मन ला जोन बीमा प्रीमियम है ओला कतेक देहे ला पड़थे और किसान भाई मन ला जैसे बीमा राशि हर बेरा मा नहीं मिल पाते तो एकर गुहार कहाँ लगावे इहू ला बताओ सर।
1: हाँ देखा एवा जो हर फसल के हिसाब से बीमित राशि अलग अलग है प्रीमियम राशि अलग अलग है
0: जी।
1: और मैं सबसे पहले बता देता हूँ जिसका फसल है उनके बारी बारी बता देता हूँ। पहली उरीद है उनके जो बीमित राशि है प्रति हेक्टेयर 24,200 है यानी पूरा तरह नुकसान में 24,200 रुपया मिलते एक हेक्टेयर में यानी 2.5 एकड़ में और प्रीमियम राशि है 484 रुपया। मूंग के 24,200 एकड़ है 484 रुपए उम्र प्रीमियम पटायल पड़ी। मूंगफली में 46,200 रुपए बीमा होते प्रति हेक्टेयर 924 रुपए के प्रीमियम पटायल पड़ते। कोदो में 17,600 रुपए के बीमित राशि होते बीमा होते होकर 352 रुपए पटायल पड़ते।
0: अच्छा
1: कुटकी में 18,700 के बीमित राशि है एक हेक्टेयर में एक हेक्टेयर में प्रीमियम 374 रुपए है। जबकि मक्का जोंदरी में 39,600 रुपए के बीमित राशि हवे उसका के बीमा रखे 792 रुपया प्रति हेक्टेयर पटायल पड़ते। भाई आपके कंप्लेंट डालवा दी आप अपन पटवारी से भी संपर्क कर सकता था वो बोलते आपने मदद मिल जाते। एक वेबसाइट भी हवा है pmfby.gov.in/farmer ऐसा करके अपन वेबसाइट में जाके भी कंप्लेन कर सकता था कोई भी च्वाइस सेंटर में जाके कंप्लेन करवा सकता था कि हमारे नुकसान हो गए आपके जो

0: रसीद मिलती है आपके बीमा होने के बाद में, इसमें आपने जो नंबर रही बोला बताते हुए आपके जो कंप्लेन है दर्ज हो जाते हैं
1: जी।
0: बहुत सरल है,
1: बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया सर जी। किसान भाई मन ला आओ अपन तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप आओ संदेश बताओ सर जी।
0: मैं सब किसान भाई मन से विनती करता हूँ कि मौसम के ध्यान रखते हुए, और आप जैसे जानते हैं अल नीनो के प्रभाव है, मौसम कभी भी बदल सकते हैं, अभी ज्यादा पानी गिरा थे तो निश्चिंत मत रहा कि पानी गिरते रही, पानी कब रुक जाए पर कोई भरोसा नहीं है
1: जी।
0: है ना, तो ये मौसम के अनिश्चितता देखते हुए बीमा के 2% प्रीमियम पटाना कंजूसी नहीं करना चाहिए या कोई प्रकार के उमा सोच विचार नहीं करना चाहिए, और अपन फसल की सुरक्षा अपन इनकम के अपन आय के सुरक्षा के लिए बीमा जरूर करा लेना चाहिए। और जो आखिरी तिथि हमें वो 31 जुलाई है, 31 जुलाई 2026, उसका पहली अपन आखिरी डेट के इंतजार मत करा, कभी कभी सर्वर की समस्या रहते, कंप्यूटर की समस्या हो जाते, कभी लाइट की समस्या हो जाते, आखिरी डेट तक मत जाके पहली 31 जुलाई पहली ही अपन समिति में संपर्क कर लेवा, जेवन अरिणी किसान है कि भाई हमारा बीमा हो नहीं पता कर लेवा खरीख लेवा, और जेवन अरिणी किसान है तेवन तुरंत अपन पास के जो चॉइस सेंटर है वहां जाके या अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संपर्क करके अपन बीमा अवश्य रूप से करवा लेवा 31 जुलाई 2026 की पहली
1: जी।
0: और किसान भाई मन से अनुरोध है।
1: बड़ सुघर सुघर जानकारी बताया हो सर जी। संगवारी हो, आज के हमारे विषय रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और हमारे बीच में गोट बात बढ़िया से जानकारी परोसत रही पहुना मन श्रीमान रघुराज सिंह गौतम जी मन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हो बिल्हा मा जिला बिलासपुर पड़ते संगवारी हो। अतेक सुघर जानकारी लाभप्रद जानकारी अपन कीमती समय निकाल के सर जी मन हमला किसान भाई मनला परोसी सवय एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार सर जी।
0: जय जोहार सब किसान भाई मनला भी।
2: संगी हुआ अभी सुनत रहे भेंट वार्ता। भेंट वार्ता के क्रम में आज की विषय रही से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एकर जानकारी, और ये विषय के विशेषज्ञ रही हैं श्री रघुराज सिंह गौतम जी जो उन्हें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिल्हा, और इखर से गोट बात हमारे नंद कुमार यादव भाई करत रही हैं। अब पारी आ गए संदेशा सुने के।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
6: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: संगी हो संदेशा लसुनेन, अब चली मंडी कती। तब है मंडी माँ आज के भाव है धान सादा 2170 और अधिकतम 2220 रुपए कुंटल। सामान्य धान है 1825 और अधिकतम है ओकर मूल्य 2389 रुपए कुंटल। बारीक धान के कीमत हवा 2389 रुपए कुंटल और बासमती धान हवा 2010 और अधिकतम 2200 रुपए कुंटल। साग गेहूँ के बात करबो तो 2250 रुपया और अधिकतम हवा 2550 रुपए कुंटल। सरसों हवा 5100 रुपए न्यूनतम और अधिकतम 5500 रुपए कुंटल है। साग भाजी की बात करबो तो पताल हवा 2100 रुपए कुंटल अधिकतम 2200। करेला है 2500 अधिकतम 4000। बैंगन है 2500 और आलू 1000 रुपया और अधिकतम 2900 रुपये कुंटल। गोंदली के भाव हवा 1200 रुपये कुंटल और अधिकतम 1800 कुंटल। लौकी 3000 और अधिकतम 3500। रमकेरिया 1500 रुपये कुंटल आज हमला मिले है भाव। हरा धनिया 18000 रुपये कुंटल मिले है। मौसम के बाद जानकारी देवो तो अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस आज मौसम बताया गया है। किसान भाई मल्ला थोड़ा कंसम समय एक सुझाव दे दी। धान के रोपा लगैया किसान भाई मन चेत करिया, खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी रहे, जरूरत ले ज़्यादा पानी भर जही तो निकासी के व्यवस्था जरूर करो। अभी बरसात बहुत हुआ थे संगी हुआ तो ज़्यादा पानी गिरा थे तो खेत के मेड़ या नाली है ओकर सफाई करत रहो ताकि पानी हर खेत से आसानी से निकल सके। फसल में कीड़ा बीमारी लगी तो नियमित निगरानी ओकर करत रहो ताकि आपके फसल हर सुरक्षित रहे। पानी गिरते तब बिजली चमकत है या जगह जगह गाज गिरे के भी शिकायत आते तो आप मनचेत करो। बिजली चमका या तेज गरज बरस हुआ तो खेत में काम करे ले बचाओ और सुरक्षित जगह में खड़े हो। और मौसम के जानकारी कृषि विभाग के सलाह अनुसार खेती के बूता कामला करो। पशुपालन करैया संगवारी मन गोठान डेयरी पशु बाड़ा ला साफ सुथरा सूखा रखाओ। पानी जमे मत पावे तो एक काबर के अभी बरसात के समय में बीमारी के खतरा ज़्यादा रहते बरसात से। काबर के बरसात में होते मच्छर माछी और जोंक एकर प्रकोप बढ़ते था। एकरो रोकथाम बा नियमित सफाई करा और जरूरत पड़े तो पशु चिकित्सक से सलाह लेके ओकर दवाई के उपयोग भी करत रहो। देखा संगवारी हुआ गोट बात करत करत माँ बेरा है बुलक गए। दीदी हर हाथ ले इशारा करते हो गए ओ कजरी दीदी घर जाए के बेरा कहते तो संगी हुआ आज के कार्यक्रम कैसे लगे चिट्ठी पत्री में जरूर बताओ। और देवा आज के कार्यक्रम ले अपन कजरी दीदी ला विदा झोको माया प्रीत भरे राम राम जय जोहार। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक रही से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली
1: ये
0: केंद्र से रिले
1: आकाशवाणी है।
0: करेंगे इस
1: अब
0: सप्ताह
1: आप
0: संसद में।
1: विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह

दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर

पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा

विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4थे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस

पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

इस सप्ताह संसद में अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:15 होने को हैं। पेश है रजनीगंधा।

FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। पेश है रजनीगंधा।

रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुजाता राय का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बदलाव जीवन की प्रवृत्ति है। जैसे हम छोटे होते हैं, फिर किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। हम बीज बोते हैं, धीरे धीरे वो पौधे का रूप लेता है, फिर वृक्ष बनकर फूल और फल छाया देता है। वैसे ही हमारी धरा मौसम की अलग अलग

चादरें ओढ़ती हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी बरसात तो कभी बसंत। मौसम केवल सर्दी गर्मी बरसात का नाम नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का वह संगीत है जो हर दिन एक नई धुन सुनाता है। कभी धूप हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो कभी बारिश सुकून देती है, तो कभी ठंडी हवाएं जीवन को तरोताजगी से भर देती है।

श्रोताओं, कभी सोचा है आपने कि जीवन में अगर ये बदलाव ना हो तो सब कुछ कितना नीरस हो जाएगा? सोचिए, हमेशा अगर गर्मी ही रहती या हमेशा बारिश होती रहती तो क्या जीवन इतना सुंदर लगता? शायद नहीं। ठीक इसी तरह जीवन में भी सुख और दुख, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। यही परिवर्तन जीवन को अर्थ देते हैं। धूप या छांव हो, सफ़र चलता रहना चाहिए। धूप हो या छांव हो, सफ़र चलता रहना चाहिए। आंधियों में भी हौसला पलता रहना चाहिए। मौसम तो आते जाते हैं हर साल, इंसान का हौसला हर हाल में जलता रहना चाहिए।

श्रोताओं, हर मौसम हमें कुछ न कुछ सिखाता है। गर्मी का मौसम हमें धैर्य और मेहनत का पाठ पढ़ाता है। तपती धूप में किसान खेतों में मेहनत करता है, इसलिए गर्मी केवल कठिनाई का प्रतीक नहीं बल्कि परिश्रम का भी प्रतीक है। वैसे ही बरसात का मौसम आते ही धरती की प्यास बुझ जाती है, पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की बूंद हर किसी के चेहरे पर खुशी ले आती है। लेकिन बारिश हमें यह भी सिखाती है कि कठिन समय के बाद राहत अवश्य मिलती है। बारिश की हर बूंद यही पैगाम देती है, सूखी जमी को मुस्कान देती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो बड़ी, उम्मीद हर इंसान को नई उड़ान देती है।

श्रोताओं, सर्दी का मौसम हमें धैर्य और संयम सिखाती है। कोहरे से ढकी सुबह हमें याद दिलाती है कि जीवन में कभी कभी रास्ते साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल नहीं है। हमें बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। वैसे ही बसंत ऋतु नए सपने, नई शुरुआत और नई उम्मीदों का प्रतीक है। इस मौसम में पेड़ों पर नई पत्तियाँ आती हैं, फूल खिलते हैं और प्रकृति मुस्कुरा उठती है। बसंत हमें यह सिखाती है कि कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसके बाद खुशियों का समय अवश्य आता है। पतझड़ के बाद ही बसंत आया करता है, अंधेरे के बाद ही सवेरा हुआ करता है। कभी हार मत मानो, जीवन की राहों में हर संघर्ष के बाद सुनहरा कल हुआ करता है।

श्रोताओं, मौसम केवल बाहर का नहीं बदलता, हमारे मन का मौसम भी बदलता रहता है। कभी खुशी की धूप होती है तो कभी दुखों की बारिश, कभी उम्मीदों का बसंत होता है तो कभी निराशा की सर्दी। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा गुण यही है कि हमें हर मौसम को स्वीकार करना चाहिए। यदि केवल बारिश होती रहे तो धूप का महत्व कौन समझता, यदि केवल दिन ही होता तो रात की शांति का आनंद कौन जानता। इसलिए जीवन में बदलाव आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति की रक्षा। हम सभी जानते हैं कि आज मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका कारण और निवारण हम सभी जानते हैं। जरूरत है तो बस सजग होने की, ताकि मौसम का ये बदलाव हमारे लिए हितकारी हो, ना कि विनाशकारी। हर मौसम की अपनी एक कहानी होती है, कहीं धूप तो कहीं बारिश सुहानी होती है। जो मुस्कुरा के हर मौसम को अपना बना ले, जिंदगी उसी की सबसे प्यारी होती है।

0: और इसी के साथ रजनीगंधा से सुजाता राय को आज्ञा दीजिए। अभी आप आनंद ले रहे थे रजनीगंधा का। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। समाचारों का अनुप्रसारण थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।

0: और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है।

0: उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी

श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म संजू से। आवाज़ सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल शेखर अस्तित्व के और संगीत विक्रम मोन्ट्रोस का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: आज के फनकार
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।

एक ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: तुझको।
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थी। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
2: कुछ समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो

संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे, लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

रवि नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जीएस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है।

जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जीएस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संगदिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जीएस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जीएस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

0: 25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुनकर।
1: अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तर...

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

कहते हैं प्यार की शुरुआत अक्सर एक साधारण सी मुलाकात से होती है, एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी बात, और फिर धीरे धीरे दिल उस शख्स के आसपास अपनी दुनिया बसाने लगता है। कभी किसी बारिश भरी शाम में, कभी किसी सुनहरे सवेरे में, तो कभी भीड़ के बीच अचानक हुई मुलाकात में। प्यार चुपके से दिल का दरवाजा खटखटा देता है, और जब ये एहसास दस्तक देता है तो साधारण दिन भी खूबसूरत लगने लगता है। वो पहली मुलाकात का पल अपने साथ एक अलग ही एहसास लाता है। वो मुलाकात कुछ खास थी जब पहली बार मिले थे हम। क्या था उस लम्हे में कि धड़कनों ने तेज रफ्तार में आकर कह दिया,

0: सबके दिल ढूंढ रहा था जिस खास को, वो तुम हो, बस तुम। याद है तुम्हें वो चांद की ठंडी चमकती चांदनी रातें, जब बेहिसाब प्यार लुटाते थे हम एक दूसरे पर। तुम्हारा यूं एक टक देखना और कह उठना कि तुम एक परी सी दिखती हो, इस सारे जहां में बस तुम ही तुम दिखती हो, जिसे सारे दुख सुख कह सकूं, तुम वो एक हम सफर सी दिखती हो।
1: हम सफर

प्यार कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो तो चुपके से बिन कुछ कहे दिल के किसी कोने में उतर जाता है। पहले एक एहसास बनकर, फिर एक आदत बनकर, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बनकर। पता ही नहीं चलता कि कब किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, कब उसकी मुस्कान दिन की सबसे खूबसूरत वजह बन जाती है, और कब उसकी मौजूदगी से हर मौसम सुहाना लगने लगता है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण। उसकी मौजूदगी से मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कविता की तरह लगता है, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। जब कोई दिल के करीब होता है तो उसकी खुशियां और दुख अपने लगने लगते हैं, और उसके साथ भविष्य के सपने सजने लगते हैं।

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। किसी के इंतजार में वक्त का ठहर जाना, किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाना और बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेना, यही तो है प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा। ये वो एहसास है जिसमें दो दिल अलग होते हुए भी एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और खामोशियां भी कह उठती हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन का नाम तुम हो, क्योंकि अब हर धड़कन में तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। मेरे हर ख्वाब का मुकाम तुम हो, क्योंकि भविष्य की हर कल्पना में तुम्हारा साथ शामिल है और मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी है।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत, कोई ऐसा जिसके साथ जीवन जीने का अर्थ समझ आने लगता है, जिसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कहानी की तरह लगता है, जिसमें भावनाएं हैं, सपने हैं, इंतजार है और प्यार की वो गहराई है जिसे शब्द पूरी तरह

व्यक्त नहीं कर सकते। कभी-कभी ये डर भी लगता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए, क्योंकि जो चीज दिल के सबसे करीब होती है उसके खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर उसकी एक मुस्कान, उसका एक विश्वास भरा शब्द सारे डर मिटा देता है और दिल फिर से उम्मीदों के आसमान में बेपरवाह सा उड़ने लगता है। और जब जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि जैसे जिंदगी की हर राह, हर मोड़, हर संघर्ष सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए था, जैसे सारी दूरियां, सारे इंतजार और सारी अधूरी दुआएं बस एक उसके मिलने पर आकर पूरी हो गईं।

तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने अचानक मुझे अपना लिया हो, जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी खिड़की से धूप दबे पांव भीतर चली आई हो। उस पल एहसास हुआ कि कभी कभी एक व्यक्ति का मिल जाना पूरी दुनिया के मिल जाने जैसा होता है। तुम्हारे आने से पहले लोग तो बहुत थे लेकिन कोई अपना नहीं था। सपने तो बहुत थे लेकिन उन्हें साझा करने वाला कोई नहीं था। फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा और हर अधूरा एहसास पूरा होने लगा। अब खुशियां आने की वजह नहीं ढूंढती। तुम्हारी एक मुस्कान दिल को रोशनी से सराबोर कर देती है। तुम्हारी एक आवाज मन के सारे शोर को शांत कर देती है। तुम्हारा साथ ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे सफर के बाद मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई हो।

तुम्हारे साथ बिताया गया कोई भी पल साधारण नहीं होता। तुम्हारी बातों में एक ऐसा जादू है जो थके हुए मन को सुकून देता है, जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से सजाने का हौसला देता है। कभी कभी तो मन सोचता है कि आखिर प्यार इतना सुंदर क्यों होता है। शायद इसलिए कि वो हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी खामोशियों को समझता है, कोई है जो हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को पढ़ लेता है और हमारे हर सुख दुख को हमारे साथ बांट लेता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो मेरा बस यही जवाब होगा, तुम केवल मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम ही तो मेरी कहानी की खूबसूरती हो। तुम केवल मेरा सपना नहीं हो, तुम तो मेरी सपनों की ताबीर हो। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी और चीज की चाह नहीं रही, क्योंकि प्रेम का सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी अपने को पा लेने में होता है।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। रात के 11 बजने को हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को

0: मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।